0: Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मेरे पाकिस्तान टोरंटो सी एम आर 101.3 FM। क्योंकि मगरिब की अजान का वक्त अब थोड़ा पीछे जा रहा है, तो हमारा टॉक शो थोड़ा लेट शुरू हो जाता है, क्योंकि अजान भी देना ज़रूरी है। थोड़ा सा और आगे जाएगा तो फिर हम टॉक शो शुरू कर ले करेंगे, दरमियान में अजान देके फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जना पाकिस्तान वेमेन टीम ने जिम्बाब्वे वेमेन को दूसरी T20 में भी 67 रन से हरा दिया। तो इस तरह से जो तीन सीरीज़ है, तीन मैचों की, 2-0 की नाकाबिले शिरकत जो है इनको बढ़ोतरी हासिल हो गई है। सिलहट टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बयान दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट पाकिस्तान 104 रन से हार गया था। दो तब्दीलियाँ तो फॉर श्योर हैं, अब बाबर आजम आ रहे हैं, अब किसकी जगह आएंगे? इमाम अल हक को निकालेंगे, सऊद शकील को निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि किसको निकालें। अगर बाबर आजम आते हैं और इमाम अल हक को निकालते हैं, इमाम अल हक को निकालेंगे तो शान मसूद जो हैं वो ओपनर आएंगे, और उसके बाद ये सेकंड टू डाउन पे शायद बाबर आजम खेलेंगे। और ये भी देखने में आ रहा है कि शायद शाहिन शाफरीदी को भी ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को खिलाया जाए, या फिर हसन अली को ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को खिलाया जा सकता है। दो तीन तब्दीलियाँ बहरहाल फिर भी मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भी कोई एक अच्छी खबर नहीं है, उनके भी दो प्लेयर जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, और जो उनके ओपनर जो हैं, और अब ये देखना है कि उनको ज़ाहिर है फाइनल टेस्ट लेंगे, उसके बाद सूरत हाल पता चलेगी। और शादमान इस्लाम और महमूद हसन दोनों कह रहे हैं कि इंजरीज उनको हुई हैं। बारिश का भी इम्कान है अगले टेस्ट में, इसलिए पाकिस्तान टीम का ऐलान बिल्कुल मेखल खेल शुरू होने से पहले ही करेगा। अगर बारिश दरमियान में रहती है तो हो सकता है बारिश से ये टेस्ट जो है वो मुतासर हो जाए। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो, या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
4: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 4162063200। It's 416-206-3200. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabil Ashraf saab se raabta kijiye. 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 Pape Avenue। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
5: since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी किताबों से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aapke number 416-593-0003 liye chalenge aapko Pakistan senior journalist Bilal Zaman sab is waqt hamare sath maujood hua karte hain aapke calls lete hain kuch sawalat karte hain hamare sath maujood hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
3: जी वालेकुम सलाम
2: मिलान साहब कल भी हमने इसका जिक्र किया था वैसे हमने प्रोग्राम के दौरान कि ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यूएई का खुफिया दौरा किया है और यूएई के दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की है और इसराइल उनके क्योंकि सरकारी तौर पर उसने उन्होंने तस्दीक की है तो बात किस बात को दुरुस्त है वो माना जाए दौरा हुआ है तो उसके असरात क्या हैं नहीं हुआ है तो फिर इसके अफवाह के मकासद क्या हैं
3: जी देखें मुझे नहीं पता आपने मतलब खबर के हद तक ही उसको जो है ना वो डिस्कस किया या फिर जो है ना वो कोई अगर रियलिटी है इसकी जो कि बिल्कुल क्वेश्चनेबल बनती है कि एक तरफ से डिनायल आया है और दूसरी तरफ से उसकी तस्दीक
2: दोनों हुई तरफ से सरकारी तो, जो है डिनायल भी सरकारी है और तस्दीक भी सरकारी है
3: जी बिल्कुल तो ये मतलब एक बड़ा जो है ना वो डाउटफुल एक सिचुएशन बन जाती है तो हमें थोड़ा सा ना इसका एनालिसिस करने के लिए देखना पड़ेगा कि दौरान जंग जो है वो क्या मामलात रहे हमने देखा कि कुछ मवाले के ऊपर ऐसे जो है ना वो अटैक्स हुए मिसाइल अटैक्स हुए जिसको जो है ना वो ईरान की तरफ से डिनाई किया गया कि ये अटैक्स हमने जो है ना वो नहीं किए ईरान जंग के दौरान बहुत सारे ममालिक के खिलाफ इसराइल की कोशिश रही कि बदएतमादी पैदा की जाए और ये जो है इन ममालिक के मुखालिफ कह लें आप या इनके साथ जो है वो अमेरिका का जो है ना वो कशीदगी जो है ना वो इनके साथ हो जाए तो उस सिलसिले में जो है ना ये सारे अटैक्स वगैरह किए गए और खामोशी के साथ किए गए ईरान ने उसको डिनाई किया जो है ना वो पीछे पस मंजर यही था कि इन ममालिक की जो है ना वो आपस में मुखालिफत पैदा हो और उसके नतीजे में तो ये मुझे लगता है कि इसी सिलसिले की जो है ना वो कड़ी है कि यूएई के साथ इस खबर को जो है ना निकालने का मकसद यही है कि ईरान जो है और यूएई का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो मतलब कि क्रिएट हो ताकि अगर उनको ये बात जारी बात है कि जब आपको पता चलेगी कि नेतन्याहू ने जो है ना वो जंग के दौरान दौरा किया था और फिर उसके बाद हमने देखा कि यूएई की तरफ से जो है ना वो अटैक्स की भी खबरें अभी पिछले दिनों जो है ना वो एक गोग उन्होंने उसको भी जो है ना वो डिनाई किया लेकिन ये खबरें आई थी कि जी खुफिया तौर पर उन्होंने भी इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ देते हुए ईरान के ऊपर हमले किए हैं तो मेरे ख्याल से यही जो है ना वो वजह है कि एक जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि इस खबर में जो है ना कोई सदाकत होगी क्योंकि इतनी बड़ी खबर को कि जो है ना वो इसराइली वजीर आजम जंग के दौरान आपको याद होगा कि जंग के दौरान वो बहुत मतलब एक वो भी रहे
2: उनका तो पता था कि वो
3: उनका कोई जो है ना उनका बिल्कुल और वो उसमें जो है ना वो एक ये भी जरा इतला आई थी कि जो उनके दफ्तर पे हमला किया गया था उसमें वो जख्मी जो है ना वो हुए थे
2: बिल्कुल ठीक
3: तो उसके बाद जो है ना वो ये इस तरह का दौरा होना और खुफिया उसको रखना और ये कि किसी जराये से उसकी तस्दीक ना होना है किसी का पता ना चलना ये मैं उसके दौरान बात कर रहा हूँ ये जो है ना मुमकिन नहीं
2: सही जनाब फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमेशा फौज के तर्जुमान के तौर पर ही सामने आते हैं इस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं आजकल वैसे थोड़ा सा वो मेखाल गायब ही हैं कभी कभार ही आते हैं और गुफ्तगू पे जो उनकी कभी कभी बातें तो दुरुस्त भी साबित होती हैं क्योंकि शायद उनको इन्फॉर्मेशन उसकी होती है लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो हैं उनकी बातों पर हंसते भी हैं तनकीद भी करते हैं वो कहते हैं जी पिंकी ड्रग कोनी जो है उसके तमगा इम्तियाज़ का उन्होंने एक तंजिया तौर पर कहा है कि उसका मुतालबा किया है और कहते हैं कि जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा ये ट्वीट किया है बल्कि उन्होंने तो किस तरफ उनका इशारा है और क्या मुराद है उनके इस हवाले से
3: जी देखिए आपने बिल्कुल सही जो है ना वो अर्ज़ किया कि फैसल वाडा जो है ना इस वक्त गेट नंबर 4 के जिसमें शेख रशीद किसी ज़माने में तर्जुमा हुआ करते थे
2: वो वैसे गलत इन्फॉर्मेशन देते थे ये इनकी इन्फॉर्मेशन फैसल वाडा की फिर भी कुछ ज़्यादा सही होती है
3: कुछ बेहतर हाँ ज़्यादा सोर्सेज के जो है ना वो करीब वो लगता है कि वो खुद
2: जो है ना
3: वो
2: وہ خود ساختہ
3: ترجمان بنے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ انفارمیشن کافی حد تک جو ہے نا کسی سورس سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر مزید یہ بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ یہ سکینڈلز کی ابتدا ہے اور یہ جو پنکی کا ہے اس سے مزید جڑے ہوئے مزید سکینڈلز جو ہیں وہ بھی انقریب سامنے آئیں گے.
2: ویسے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت باتیں کی تھیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوا. ویسے ان کے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی پیش گوئیاں تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی,
3: وہ نہیں ہوئی, بالکل ایسی ہے. تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈراوا یا ایک ان کے نا منظر, ان کے منظر عام پر آنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, ورنہ اتنے عرصے سے خاموش تھے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ بھی. تو لیکن ان کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کس ٹائمنگ کے اوپر ان کا ٹویٹ کرنا. اور یہ پنکی حکمرانوں سے ان کی جو ہے نا وہ مراد یہی ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ دو نمبر تھی یا مطلب دو نمبر طریقے سے پیسے بنا رہی تھی اور غلط کام کر رہی تھی, تو اس طرح کی حکمران جو ہے مطلب جو غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہے, اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے پنکی حکمرانوں کے ساتھ.
2: صحیح. لیکن ابھی گورنمنٹ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جب بھی بات کرتے ہیں وہ تو حکومت کے حوالے سے بہت اچھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں گورنمنٹ اور آرمی جو ہے ایک پیج پہ, تو کیوں ضرورت پیش آتی ہے ان کو؟ یہ مطلب وہ خود چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بد اعتمادی بنی رہے ان کے تھرو, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں؟
3: جی دیکھیں, ابھی کچھ عرصے میں نا وہ کہتے ہیں کچھ معاملات بڑے کلیئر ہونے والے ہیں, ابھی دیکھنا عید تک اور عید کے بعد تک انتظار کرنا پڑے گا. وہی بات ہے کہ اگر یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے اور بجٹ سے پہلے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے, تو پھر تو بڑا کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا اور ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا اور نظام کو ایکسپوز کرنا, اور اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری پرانی باتیں کہ جی عمران خان صاحب کو جب ڈیل آفر کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بنی گالا میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ حکومت کے اوپر جتنی مرضی تنقید کر

0: थोड़ी सी जो है वो अकल तो शायद इस्तेमाल नहीं करना है, अकल तो ज़रूर होगी, शायद एक मौका सियासतदानों को दे दें कि वो मिलकर इकट्ठे हो जाएं कम से कम एक दफ़ा, वो तब वो भी रिएक्ट कर सकें। आई डोंट नो,
1: वो क्या कहते हैं अपना, वही बात आ जाती है कि मैंने ऐसा कहा ना कि अभी थोड़ा सा हमें टाइम देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि स्कैंडल
0: क्या होता
1: स्कैंडल
0: है?
1: के अंदर
0: ठीक है,
1: हाँ किस किन लोगों का नाम आते हैं। मुझे लगता है कि इसका स्कैंडल का जो ज्यादा फोकस है ना वो सिंध की साइड के ऊपर जो है ना वो
0: ठीक है।
1: रहेगा। जो पंजाब वाले हुक्मरान है वो तो पहले से ही साथ हैं, वो तो मेरे ख्याल से ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहे,
0: ठीक
1: तो
0: है।
1: यहाँ से रेजिस्टेंस आनी है 28वीं तरमीम की, उस तरफ ही जो है ना वो इसका फोकस लग रहा है।
0: अमरीका और चीन हरीफ नहीं है बल्कि शराकत दार होना चाहिए, चीनी सदर का यह बयान है। दोनों मालिक मिलकर ताल्लुकात की नई समत बढ़ाने पर तैयार हैं, शी जिनपिंग ने यह दावा किया है। इन बयानात से ट्रंप के दौरे को क्या कामयाब तसव्वुर किया जाए कि अमरीका और चीन हरीफ से हलीफ बन सकते हैं? ताइवान का मसला भी है, अबराए हुरमत से भी बात हो रही है। अगर तो वाकई ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल दुनिया के लिए एक और नई जो है जहत होगी, कुछ चेंजेस आ सकती हैं।
1: आ सकती हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि
0: ओके,
1: जिस तरह बिल्कुल आपने जो है ना वो सवाल के अंदर जिक्र किया, ताइवान का बड़ा कैटेगोरिक पोजीशन है अमेरिका की ताइवान के ऊपर, और ये पहले भी जो है ना वो बड़े मतलब एक दूसरे के करीब जंग के करीब ही जो है ना वो आ चुके थे ताइवान के मसले के ऊपर ही, जब अमरीका ने अपनी जो आबदोज है उसको जो है ना वो ताइवान के जो है ना वो मतलब ये जो वो सराउंडिंग इलाका है उसके अंदर जो है ना वो भेज दिया था, और फिर वो डिटेक्ट भी हो गई थी, और फिर चाइना ने भी अपना वॉरशिप है ना उधर भेज दिया, तो तब मामला जो है वो काफी एस्केलेट हो गया था और फिर अमेरिका ने एक स्टेप बैक लिया था। ये मेरे ख्याल से पिछले दौरे हुकूमत की बात है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले की जो बाइडेन की हुकूमत में,
0: ठीक है।
1: तो मेरे ख्याल से कि जो है ना वो एक मिसाल यहाँ पे जो है ना वो फिट बैठती है कि एक नियाम में जो है ना वो दो तलवारें नहीं रह सकती, दोनों जो है ना वो दोनों जो है ना मईशत तो मईशत के हवाले से जो है ना वो ताकत का मुजाहरा अपना करते रहते हैं। जो बयान है वो एक अच्छी कर्टसी के तौर पे कि जब आप किसी को होस्ट कर रहे होते हैं तो जारी बात है कि उसकी जो है ना वो कुछ वो होती है, तो चाइनीज जो है वो बयानात के हवाले से और इन मामला के बड़े मुख्तात रहते हैं, और वो इसको जो है ना मतलब एक बड़ा वो आप एक तरीके से जो है ना उसको जवाब देते हैं, वो बहुत मुंह फट नहीं है कि आपको मुंह पे जो है ना वो जवाब दे दिया और उसको वो कर दिया। वो देखेंगे कि यहाँ से जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या फीडबैक जो है ना वो देते हैं, किस तरीके से मामला को जो है ना वो लेते हैं। हाँ अगर तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही ईरान की सिचुएशन जो है वो किसी नुकरे लगना शुरू हो गई, तो फिर तो इसका मतलब है कि अमरीका और ईरान जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन अगर मामला जो है वो अमरीका और चीन और अगर मामला जो है ना वो जूं का तू ही जो है ना वो रहता है इस सिचुएशन में जो है ना कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर सारा जो इन्फ्लुएंस है और वो जितना ये सारा मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है वो चाइना की बैकिंग के साथ ही कर रहा है। आज की खबर आप देख लेंगे जितने चाइनीज जहाज थे गालबन एक पूरा ग्रुप जो है
0: एक हफ्ते के लिए उनको हाँ उन्होंने कहा कि गुजर जाएं, ठीक हो गया। अच्छा सर
1: ये बड़े क्लियर साइन है इन मामला के।
0: अच्छा अनमोल उर्फ पिंकी अल मारूफ कोकीन क्वीन के बाद अब कराची से नरगिस नामी चर्स कोकीन भी जो है गिरफ्तार हुई है, और मनशात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नरगिस उर्फ मलका का 3 रोज़ जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया गया है। पहली गिरफ्तारी का तसलसल नजर आता है आपको, और क्या फिर इदारों ने एक दफ़ा ये तय कर लिया है कि मुल्क से मनशात को जो है वो ख़त्म किया जाएगा और वादा जो है वो वफा करने का वक्त आ गया है?
1: हाँ जी बिल्कुल, देखें इसने अपना नाम मलका जो है ना वो रखा हुआ था, और ये भी जो है ना वो एक अच्छा बड़ा बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक अच्छा बड़ा नेटवर्क चला रही थी। मुझे बिल्कुल जो है ना तसलसल उसका लगता है उसकी कड़ी लगती है, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ बड़ा जो है वो पक रहा है सिंध वाली साइड के ऊपर। अब अनकरीब जो है ना वो मतलब देखें बड़ा ऑड है कि अचानक
0: उसने नाम लेने शुरू कर दिए हैं, उसने कुछ लोगों के कुछ आर्टिस्टों के नाम लिए हैं कुछ और लिए हैं सिलसिले,
1: वही मैं आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता अभी वो खुलेगा, अभी वो मामला वो ये ना सिर्फ एक सिग्नलिंग होती है। आपको याद होगा कि मतलब मैं अब कहना तो नहीं चाहता लेकिन चले रेफरेंस के तौर पे इमरान खान साहब के दौर में जो है ना वो राणा सनाउल्लाह का स्कैंडल जो है वो क्या था, मतलब वो आज तक उसका कोई सर पैर नहीं है, ना वो उस तरफ है ना वो इस तरफ है ना, मतलब कि वो अच्छा अगर वो नहीं थे तो फिर इतना स्ट्रांगली पकड़ा कैसे, और जिन्होंने पकड़ा उनको क्या सजा दी आपने, मतलब वो भी आर्मी के ही थे ना, जारी बात है उसको वही हेड कर रहे थे जो उस वक्त के जो डीजी नारकोटिक्स एग्जैक्टली तो मतलब ये कि वो ना ये आज तक पता नहीं चलता कि किस जो है ना, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये आने वाले जो दो हफ्ते हैं ईद का टाइम थोड़ा सा जरा नॉर्मल गुजरेगा,
0: उसके बाद
1: फौरन बाद हम देखेंगे कुछ मामला जो है वो।
0: اور آخر میں بتا دیجیے، عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی، امریکی وزیر خارجہ نے خوشخبری سنائی ہے اور وزیر خزانہ نے، اور ایران اپنے ہرمز کو کھول دے گا، اس کے بعد پٹرول کی قیمتیں ریکارڈ جو ہیں وہ

0: मामूल पर आ जाएंगी। ये दावा किस बुनियाद पर उन्होंने किया और क्या यकीन के साथ कही जा सकती है ये बात?
1: जी देखें, उन्होंने बेस डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को ही बनाया है और वो ये कहते हैं कि जी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस हो रही हैं और चाइना अगर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है तो और अपने हुरमत जो है वो खुल जाती है तो बहुत जल्द जो है वो प्राइसेस जो है ना वो मामूल पे आ जाएंगी। खैर इस हद तक तो उनके दावे में जो है वो दुरुस्त, मतलब ये दावा दुरुस्त है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई मुआहदे की और मुज़ाकरात की बात जो है ना शुरू होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो है वो ही काफ़ी होता है जो है ना प्राइसिस को नीचे लेकर आने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि वो इस हद से बाहर हो गई हैं कि उनको वापस आने में बहुत जो है ना वो टाइम जो है ना वो लगे, वो तो एक ट्वीट से ही जो है ना वो वापस नॉर्मल की तरफ वो आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ ये बात कि जी आया जो है ना वो हो जाएगा और क्या कहते हैं अपना कितनी जल्दी जो है ना वो हो जाता है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही जो है ना वो हो जाएगा, इसकी गारंटी जो है वो कोई नहीं।
0: ठीक अच्छा जनाब, आज एक हमारी प्रॉब्लम है फोन्स में, मुझे आईडी नज़र नहीं आ रही, मतलब सिंपल मुझे पता है कॉल्स आई हुई हैं तो जब आपको लगे हम मैं जिस तरह कॉल्स हैं उसी तरह से कॉल्स हैं वन बाई वन ले लेंगे तो जैसे ही आपको लगे कि आवाज़ बंद हो गई है, आपको सुनना बंद हो गया तो आप इसका मतलब ऑन एयर होंगे, तो ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा चैलेंज है, देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट कॉलर जो मुझे आईडी का नहीं पता, फर्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है, जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आप शुरू बात कर लीजिएगा। जी सर आप ऑन एयर है, बात कीजिए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम सर। जी जी
2: भट्टी साहब, देखें ट्रंप साहब ये जिस तरह की बड़के मारते थे ना चाइना के मुतल्लिक पूरी दुनिया में पहले के, यानी हमारे वही हरीफ हैं तो हमने उनको ये करना है, लेकिन जब वो उधर गए हैं तो वो उनकी तकारीर में या बातचीत में वो इतना काट जोर शोर वो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ देखें तो अब अमेरिका ने तो ये सबक दिया है ना जी कि माइट इज राइट, जो सुपर ताकतें हैं जिसका दिल करे जिसको मर्जी दबोच ले। लेकिन चाइना भी यूनान के बारे में जो बातें करता रहा है कि ये हाँ उसमें तो कोई शक नहीं कि वो उसकी की रियासत थी, उसके साथ उसका हिस्सा था, कि मैं भी भाई इसको नहीं छोड़ूंगा और कोई वक्त आएगा कि मैं भी बल्कि इस पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन वो भी आज तक ऐसा कर नहीं सका। तो लिहाजा ये बातें देखें भट्टी साहब, डिप्लोमेसी या जो बड़ी ताकतें होती है ना ये अपने इनके कवायद कानून और दो मुख्तलिफ होते हैं और ये दुनिया के छोटे ही मामले हैं कि पाकिस्तान ने या इंडिया ने या किसी और ने कर लिया तो उस पर सैंक्शन भी आ जाएंगी, इंसानी हकूक भी आ जाएंगे, सारी दुनिया के मामला उधर चले जाएंगे, ये बात तो हो गई खत्म। बाकी जंग मेरे ख्याल में अब जंग नहीं होगी, बस आपस में मामला कुछ ना कुछ तय कर ही लिए जाएंगे क्योंकि चाइना और रशिया भी थोड़ा बहुत अब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां से ही तेल शेल भी लेते हैं, तो लिहाजा बस हो गया जो भी उन्होंने कहा। लेकिन इसमें नुकसान वैसे ईरान का ही मेरे नजदीक ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें यह बड़ी बात भी है कि ईरान खड़ा भी रहा है, उसने बहादुरी और एक सबक भी दिया उम्मत मुस्लिमा को, लेकिन इनमें कोई दम हम नहीं है। बाकी फैसल वाडा साहब देखें, मैं आज भी कहता हूं और ये वक्त साबित करेगा कि मुस्लिम लीग नून ने जनाब हमारे जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है और फैसल वाडा इनको वोट दे के गलती की थी और ये वक्त बताएगा। बाकी रह गई उसने पिंकी को ही मकसद टारगेट किया है और ये किधर जाते हैं, मेरा ख्याल है इनको पंजाब के हवाले सीसीटीवी के हवाले किया जाए अब तमाम रिपोर्ट लेने के बाद।
0: थैंक यू लेंगे आपको, जैसे आवाज बंद हो आप ऑन एयर आ सकते हैं। जी सर आप ऑन एयर बात कीजिए।
3: कैसे हैं आप?
0: जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू।
3: अच्छा जी जनाब, बात यह है कि अभी ये जो चाइना का और अमेरिका की बात हुई है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की मामले से जिस पे बात हुई, क्योंकि चाइना को अपनी डेवलपमेंट के लिए ऑयल सप्लाई रेगुलर चाहिए, ठीक है, और अमेरिका को हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए तरकीब करते रहते हैं, हमारा जो सही पार्टनर है वो अमेरिकन ही है, क्योंकि अमेरिकन हमें इमदाद देता है, अमेरिका हमें ग्रांट देता है और कर्ज नहीं देता जैसे चाइना करता है, वो कर्ज देता है, तो हमारे जो करते धरते हैं उनको थोड़ा सा अब इनको क्या समझाना है, वो तो बड़े समझदार है,
0: ठीक हो गया,
3: उनको कोई नहीं समझा सकता। और आखिरी बात कहता रहूं, ये जो पिंकी और ये और वो है ना, ये सियासत चलती रहेगी,
0: सही,
3: और बस इसी तरह।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। जी सर आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी सर, जी सर आप बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं।
4: जनाब
0: पट्टी साहब,
4: की हाल है? ठीक
0: जी बिल्कुल सर।
4: पट्टी साहब गल ਜੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੱਭਾ
0: 16 ਮੁਕਦਮੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ
4: ਜੀ
0: ਹੁਣ 16 ਮੁਕਦਮੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
4: ਪਰ ਸਰ ਉਹ 500 ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ
4: ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
0: ਸਹੀ
4: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ
0: ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰ
4: ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ
0: ਠੀਕ
4: ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ
0: ਚਲੋ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਨ ਹੈ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਬਾਤ ਕੀਜੀ ਜੀ ਆਪ ਆਨ ਹੈ ਸਰ ਬਾਤ ਕੀਜੀ
5: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ
5: ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀਆਂ ਕਮ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
0: ਸਹੀ
5: ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਰਬ ਮੇਂ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਅਬ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਨਾ ਚਾਈਨਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੋ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੇ ਪੀਛੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹਮੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੋ UAE ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਤੋ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਜੋ ਰਸਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਤੋ ਕਿਸੀ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬ ਤੋ ਦੋ ਹੋ ਗਈ
0: ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਚਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਪ ਆਨ ਹੈ ਸਰ ਬਾਤ ਕੀਜੀ ਜੀ ਆਪ ਆਨ ਹੈ ਬਾਤ ਕੀਜੀ
6: ਬੱਟੇ ਸਾਹਿਬ
0: ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਰ
6: ਬੱਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਕਾ ਤੋ ਮਾਮਲਾ ਹੁਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਹਾਂ ਇਹ ਚਲਾਤੀ ਰਹੀ ਬਾਤ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਇਦਾਰੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ 28 ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹ
0: ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਬਿਲਾਸਾ ਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
6: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਆਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਾ ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਇਨ ਪੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਪਾਉਂ ਪੜਤੇ ਹੈ ਜਬ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਗਲੇ ਸੇ ਪਕੜਤੇ ਅਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਗਰ ਯਹੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ तो केपी के में तो वैसे ही डिस्टर्बेंस है बाकी बलूचिस्तान में भी डिस्टर्बेंस है सिंध की तरफ अब दूसरा एक तरमीम ये आना चाह रहे हैं कि अगर किसी सूबे में कन्नर राज लगाना है ना तो आही अदालत फैसला करेगी अरे भाई जब पार्लियामेंट मौजूद है मामला तय हो गए NFC अवार्ड तय हो गया पास है पूरे मुल्क में सिक्योरिटी आपके पास है कि ड्रग कहां से आ रहा है अफगानिस्तान से या इधर उधर से ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन करके किसी की जान मरोड़ के किसी के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा करके इस तरह से करके जो है ना मामले को करना चाह रहा है
0: सर थैंक यू सर बहुत शुक्रिया लास्ट कॉल अगर आप ऑनलाइन आना चाहें सर आप ऑनलाइन बात कीजिए हेलो अच्छा चलिए जी सालम सर जल्दी 30 सेकंड
7: किसी साहब को जो पकड़ा है तो सारा ये सारा अच्छा है ना तो कह रहे कि नकवी साहब को जो है ना मौसम नकवी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए
0: थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा शुजा भाई का वो मैसेज आया लेकिन उनकी शायद कॉल यहाँ पे थी नहीं तो चलिए जनाब दो में रखे गया हौसला नहीं हारना हौसला भी खोने की चीज ऑलवेज फॉलो योर हार्ट क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मौला

மலேசியா வாசுதேவன் பாடுகின்ற பாடல். மாப்பிள்ளை பாடல்.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज़ आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामुअलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलते हुए सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डावी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग।
2: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो। 11 बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा, खूबसूरत से गानों के साथ, बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेरो शायरी के साथ, हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट्स के साथ, गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s और ट्रेंडिंग मेलोडीज आपके साथ साथ चलती रहेंगी इस सफर में। नंबर टू रीचर्स 416-303-3639, 416-303-3639। बहुत खूबसूरत सी फ्राइडे की सुबह है। 12 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर, डबल डिजिट्स में प्लस में टेम्परेचर। और दोस्तों, इस सैटरडे संडे तो कहने ही क्या, मंडे को टेम्परेचर 25, संडे को 23, सैटरडे को 22। बहुत खूबसूरत सा आपको लॉन्ग वीकेंड मिलने वाला है, इंजॉय कीजिए। और कहते हैं ना कि फ्राइडे के दिन का थॉट है कि यू डोंट ऑलवेज नीड टू बी गेटिंग stuff done. Sometimes it's perfectly okay and absolutely necessary to shut down, kick back and do nothing. Enjoy karte hain Lovey Dovey show par Aamir aur Shivani ke saath.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
4: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday,

0: दिस इज लवी डवी शो. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके ज़िंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप ज़िंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं A to Z. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
1: Good morning. I'm well. How are you?
0: बिल्कुल ठीक ठाक. All good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना, उसमें आ जाता.
0: अच्छा,
1: है
0: ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे, या फिर आपके ऐड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग ज्यादा आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स. बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे, या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है, तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है.
0: Amazing.
1: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स देने में.
0: क्या बात है. तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके. 416-303-3639.

0: साहब, जिंदगी में हादसे हुए नहीं तो देखे ज़रूर होंगे आपने। हम रोड पे चलते फिरते, गाड़ियां दौड़ाते या फिर बाहर निकलते ही कुछ ऐसे मंज़र अक्सर देखते हैं जिनको देखते ही इंसान चौंक जाता है, हैरत ज़दा हो जाता है, परेशान हो जाता है, अजियत में चला जाता है। अप्रोचेस ज़िंदगी में हमेशा दो ही रही हैं। एक तो रिएक्टिव अप्रोच है, आपके साथ कोई मसला या हादसा हो जाता है, आप रिस्पॉन्स देते हैं। और रिस्पॉन्स कैसे होता है कि आपका हादसा हो गया, फिर आप नंबर ढूंढते फिरते हैं, किस से बात करें, किसके पास जाएं, किससे सलाह करें, किससे मशवरा करें। और ख़ुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। यू हैव टू मेक योर डिसीजंस इमीडिएटली। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास कोई ऐसा कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर हो जो सीधा उस शख्स को मिले, उस इंडिविजुअल को मिले जो आपके साथ डील करेगा गोइंग फॉरवर्ड। हालात ये हैं कि एक जगह से फाइल दूसरी जगह जाती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर आपकी फ़ाइल कहीं गायब भी हो जाती है, साला साल उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसका कुछ पता ही नहीं होता कहाँ गई है। तो ये शख्सियत जिसकी आपसे बात करवा रहे हैं, बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रखा है, पर्सनल इंजरी में मोर देन फुल टाइम है, और पूरे ओंटेरियो में एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक ही शख्सियत है जो पर्सनल इंजरी में फुल टाइम डायरेक्ट डील करती है। आपकी ज़ुबान बोलते हैं, आपको सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन दिलाते हैं, आज इनका पर्सनल नंबर भी आपको देंगे, कहीं भी हैं, किसी भी वक्त हादसा हो जाए डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं। सैयद एम रज़ा बैरिस्टर, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तुफैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। तुफैल भाई, जैसा आपने बताया अभी, सैयद लॉ एक एक्सक्लूसिव पर्सनल इंजरी लॉ फर्म है, और जिसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है। लास्ट मोर देन 13 ईयर्स से सिर्फ इसी सेगमेंट में हम स्पेशलाइज करते हैं। तो जैसा आपने बताया वो बिल्कुल सही है, वी आर मास्टर ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स। हमारा स्लोगन भी हमारा स्लोगन भी यही हैगा कि इंजरी टेकन सीरियसली। चाहे वो आपकी इंजरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, ब्रोकन बोन हो, स्पाइनल इंजरी हो, ब्रेन इंजरी हो, इंजरी टेकन सीरियसली, ये हमारा जो है भी स्लोगन हैगा। जिसको देखते हुए हमने जो है वो अपनी फर्म को, हमारी जो फर्म की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास जो है लाइसेंस पैरालीगल, लीगल असिस्टेंट्स आपकी फाइल पे काम करते हैं, और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपका जो है बेनिफिट्स वो क्विकली प्रोसेस हो, और आपको फौरी तौर पे वो सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो कि जिसके लिए जो है वो आपने हमें रिटेन किया हैगा, और आपको जिसकी ज़रूरत हैगी। इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनसे डील करना आसान नहीं होता हैगा, अगर आप खुद ही डायरेक्ट डील करने की कोशिश करेंगे, या जो है वो एक एक्सक्लूसिव पर्सनल इंजरी के अलावा आप जो है वो किसी और के साथ होते हैं, तो आपके साथ यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। उसका रीज़न ये हैगा कि इंश्योरेंस कंपनी के जो एडजस्टर हैं, दे आर ट्रेंड टू कट योर बेनिफिट्स, टू मिनिमाइज योर बेनिफिट्स, टू डिनाई योर बेनिफिट्स, ये उनका काम हैगा, और इसी के लिए उनको जो है वो हायर किया जाता है, उनको सैलरी मिलती रहेगी। अगर आप जो है वो उनसे चाहते हैं कि वो आपका क्लेम फेयरली डील करें और आपकी नीड्स को पूरा करें, तो आपको एक लॉयर चाहिए होता है जो उनका, अगर वो डिनाइल करने जा रहे हैं तो उनको चैलेंज कर सके, उनको ये बता सके कि ये जो डिनाइल का बेसिस है ये गलत हैगा। और अगर फर्ज किया कि फिर भी जो है वो दे परसिस्ट इन दैट, तो हम जो है वो ट्राइब्यूनल में जो है गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो ने एक ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं लाइसेंस अपील ट्राइब्यूनल, जहाँ पर जो है वो अगर इंश्योरर और क्लेमेंट के दरमियान में डिस्प्यूट हो तो वहाँ पर आपका क्लेम जो है वो फाइल किया जाता हैगा, उसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए, और फिर जो है एक एडजुडिकेटर अपॉइंट किया जाता हैगा, वो एडजुडिकेटर बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन कंप्लीट एविडेंस एक डिसीजन देता हैगा, या यह जो चीज़ डिनाई की गई थी वो रीजनेबल थी या नहीं थी। और उस डिनाइल की वजह से अक्सर औकात इंश्योरेंस कंपनीज पे जो है वो फाइन भी होते हैं। फाइन से मतलब ये हैगा कि जो क्लेमेंट है उसको स्पेशल अवार्ड मिलता हैगा। स्पेशल अवार्ड की वजह ये होती है कि अनरीजनेबल डिनायल, अनरीजनेबल डिनायल। तो ये सारे काम जो है ये करने के लिए यू नीड एन एक्सपर्ट इंजरी लॉ फर्म, और इसके साथ साथ जो आपका क्लेम हैगा अगेंस्ट एट फॉल्ट ड्राइवर जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, उसकी बेसिस जो है वो फ्रॉम द डे वन शुरू होती हैं। तो ये आप याद रखें फ्रॉम द डे वन इफ यू आर इन गुड हैंड्स, क्योंकि उसके लिए जो सारे स्टेप्स होते हैं, जो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो एविडेंस सारी कलेक्ट करनी होती हैगी, वो इंतहाई जरूरी है और वो काम फ्रॉम द डे वन शुरू हो जाता है। और यही काम हम करते हैं, यही वजह है कि हमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेटलमेंट जो है वो अपने क्लाइंट्स को दिलवाए हैं, और हम यही काम जो है वो करते हैं ताकि आपकी जिंदगी को जो है पुरसकून बनाया जा सके और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो कि इस एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गई है उसको रेस्टोर किया जा सके और आपकी फैमिली वेलबींग जो है उसकी टेक केयर की जा सके।
0: जी
1: तो लॉन्ग वीकेंड है आपके तमाम लिस्टर्स को जो है वो यू दे ऑल शुड हैव अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग वीकेंड एंड टू फेल बाय यू एज वेल। तो मेरी मतलब ये कि बस रिक्वेस्ट ये है कि ड्राइव सेफ, बी सेफ, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है कॉल सैयद लॉ, डायरेक्ट नंबर तुफैल भाई आप बताएंगे ताकि आपके लिस्टर हमारा नंबर नोट कर ले। थैंक यू।
0: ये नंबर आपके पास इसलिए होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत हाल हादसे के बाद ऐसी होती है कि यू डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम टू वेस्ट, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता ज़ाया करने के लिए, फौरन तुरंत जल्द अज जल्द इमिजिएटली आपको किसी से कॉन्टेक्ट करना होता है। आपकी ज़ुबान बोलते हैं, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, बात का कॉन्टेक्स्ट सब समझते हैं, तो इनसे बात कीजिए। सैयद अहमद रज़ा बैरिस्टर, ये रहा नंबर 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं, मेक अ नोट ऑफ इट, 416-937-5046। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद रज़ा बैरिस्टर, थैंक यू वेरी मच।
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
3: मेरी रूह में जो उतर सके वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, मेरी रूह में जो उतर सके वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो सराब हो न अजाब हो वो रिफाकतें मुझे चाहिए। उन्हीं सातों की तलाश है जो कैलेंडरों से उतर गईं, जो समय के साथ गुजर गईं वही फुर्सतें मुझे चाहिए। कहीं मिल सके तो समेट ला मेरे रोज़ और शब की कहानियाँ, जो गुबार वक्त में छुप गईं वो हिकायतें मुझे चाहिए। जो मेरी शबों के चराग थे, जो मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरज़ू, वही सूरतें मुझे चाहिए। मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो सराब हो न अजाब हो वो रिफाकतें मुझे चाहिए।

0: और सब बात हो रही है आज के दौर की। एक बात ध्यान में रखिए कि दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं आज के टाइम पर। दोनों में से एक चीज़ भी अगर आपके पास हो तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, आपको वो तकलीफ़ें नहीं झेलना पड़ती जो आम तौर पर लोग झेलते हैं, जिनका सामना लोग करते हैं। या तो आप बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी हो, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, और क्वालिफिकेशन भी किसी बेहतरीन सब्जेक्ट में हो। मान लीजिए आपने डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट किया है, आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं और दुनिया के बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं आप, लिखारी हैं, लेखक हैं आप, तब तो शायद आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं यहाँ वहाँ पढ़ा रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, या किसी बहुत बड़े इदारे के साथ वाबस्ता हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। आप कंप्यूटर का काम जानते हैं, आप रेनोवेशन का काम जानते हैं, आप बाल काटना अच्छे जानते हैं। हुनर किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा ही एक हुनर डिजिटल मीडिया भी है।
1: जी आमिर, बिल्कुल सही कहा आपने। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स 23 मई से शुरू हो रहा है और 23 मई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा है। और इसमें दोस्तों सिर्फ एक महीने का कोर्स है, एक महीने में भी पूरे 30 दिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 दिन आना है, जिसमें शामिल है सैटरडे संडे 1 बजे से 6 बजे तक, और सैटरडे संडे दोनों दिन 1 बजे से 6 बजे तक। 8 दिनों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, ज़िंदगी भर का स्किल सेट आपके पास होगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल ऑडियंसेस तक, लिसनर्स तक और कस्टमर्स तक आप पहुंचा सकेंगे। बेसिक से ये कोर्स शुरू होगा। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कवर करेंगे आप इन कोर्सेज में।
0: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। आपको अगर कंटेंट बनाना ठीक नहीं आता तो वो कभी वायरल नहीं हो सकता, कभी मशहूर नहीं हो सकता, फॉलोइंग कभी बढ़ नहीं सकती। तो पहला मरहला ये है कि हम आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं कि ये जो वीडियोस आप देखते हैं, ये जो पोस्टर्स आप देखते हैं, लीफलेट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हैं, फेसबुक पे आप कहानियाँ देखते हैं, पोस्ट्स देखते हैं, इनको बनाना कैसे है, हाउ टू क्रिएट ऑल दीज फिल्म्स, रील्स, पोस्टर्स, डिज़ाइन, आर्टवर्क, ये सब कैसे करना होगा। दूसरा मरहला फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इस कंटेंट को वायरल कैसे करना है, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है, कौन सी रील्स पॉपुलर होती हैं, किस बुनियाद पर होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, लाइटिंग का ध्यान कैसे रखा जाता है, पंच लाइन्स, टैग लाइन्स को कैसे देखा जाता है, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। यानी आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं और इसको बहुत पॉपुलर कर सकते हैं इस कोर्स के करने के बाद। आप इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होना चाहते हैं, आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं, ये कोर्स उन्हीं के लिए रखा गया है जो अपना बिजनेस खुद प्रमोट करना चाहते हैं या अच्छे स्टोरी टेलर, डिजिटल स्टोरी टेलर या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। ये रहेगा नंबर मिलाने के लिए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये आन खड़ी है 23 तारीख। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सकता है आप रजिस्टर कराइए। वीकेंड क्लासेस हैं, 23 को क्लासेस शुरू होंगी। आज 15 तारीख है तो 7-8 दिन ही बाकी रह गए। ये नंबर रहेगा 416-303-3639। वीकेंड यानी सैटरडे 1 टिल 6, संडे 1 टिल 6। 23 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन की क्लासेस। एक बार एक महीने का कोर्स करें, जिंदगी भर का हुनर सीखें। 416-303-3639।
1: 416-303-3639। और फ्राइडे का दिन है, जुमे की रात वाला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ मैं। और फ्राइडे है दोस्तों, और आप सभी उन लोगों के लिए एक अच्छा सा शाउट आउट जो अभी तक काम करने के आज शाम तक मूड में हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन याद रखिए आज फ्राइडे है, और आज जो मूड है ना वो काम से थोड़ा सा दोपहर में शाम तक शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। और ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, काम ज़रूरी है हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनों के लिए अच्छा सा वक्त निकालना और बहुत अच्छे से लम्हे अपनों के साथ गुजारना ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर टू कॉल 416-303-3639। आमिर और शिवानी के साथ दिस इज़ लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
7: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ,
8: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਟਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲ ਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474841000। 647-448-1000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ seva2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
9: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। फ्राइडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है और लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, आप भी ज़रूर करते होंगे कि वीकेंड के जो दिन हैं बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। एक तरफ जो 5 दिन हैं वो बीतते नहीं बीतते, और फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे भी बड़ा जल्दी निकल जाता है और सैटरडे संडे तो बड़ा जल्दी निकल ही जाता है। ऐसा लगता है कि टाइम इज़ फ्लाइंग। सैटरडे संडे में 24 घंटे नहीं, 4 घंटे भी नहीं है ऐसा लगता है। और ऐसा क्यों लगता है आमिर?
10: मुझे लगता है कि जो जो वक्त आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त में से बरकत ख़त्म हो रही है। एक वक्त था हम बैक होम में घंटों पहरों खुशगप्पियाँ लगाया करते थे दोस्तों के साथ बैठ के, और वक्त ठहरा सा रहता था। एक दिन में कितने ही काम हो जाते थे, सुबह सुबह जागते थे, वालिदैन के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, उसके बाद फिर स्कूल जाने का वक्त हो जाता था। स्कूल में भी एक एक पीरियड जो होता था एक सब्जेक्ट का, वो आधे पौने घंटे का होता था और वो गुजरता ही नहीं था कभी। केमिस्ट्री का पीरियड तो ऐसा होता था जैसे ठहर ही गया है, ये नहीं गुजरेगा किसी सूरत। उसके बाद फिर जाहिर है आधी छुट्टी और उसमें खेल कूद, और उसके बाद फिर अनदर 3-4 पीरियड्स अगैन। उसके बाद फिर घर जाते थे, फिर सो भी लेते थे, घंटा 2 घंटा सो लिया, उसके बाद फिर चाय वाय का टाइम हो जाता था, उसके बाद फिर बाहर चले जाते थे खेलने के लिए। इट यूज़ टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे, लॉट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉट्स ऑफ हॉबीज, इंटरेस्ट, नींद भी पूरी हो जाती थी, घर वाले भी खुश हो जाते थे, फिर होमवर्क के लिए मतलब ट्यूशन वगैरह भी कुछ बच्चे अकेडमीज का रुख भी करते थे शाम को, फिर रात को कोई ड्रामा फिल्म भी देख लेते थे। यानी अ डे यूज़ टू बी फुल ऑफ एक्टिविटीज़, फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वक्त में एक बरकत मौजूद थी, एक तरह की रहमत मौजूद थी। आज वो बरकत नहीं है। नफसा नफसी का आलम इसको कहा जा सकता है, भाग दौड़ कहा जा सकता है, एक रेस लगी हुई है और इस रेस में हर कोई दूसरे से सबकत ले जाना चाहता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड की याद रहती हैं, नाकाबिले फरामोश है, वो कभी भूल ही नहीं सकती। एक उस निज़ाम का ठहराव है, तहम्मुल और बर्दाश्त का एक एलिमेंट है कि आप रोड पे जा रहे हैं तो गिव वे सिस्टम है, लोग आपको रास्ता देंगे कि आप गुजर जाइए, और अगर आपने किसी को रास्ता दिया है तो वो आपका शुक्रिया अदा करेगा हाथ लहरा के। यानी ठहराव की बात हो रही है। उस वक्त ज़िंदगी में ठहराव बहुत था, दूसरों के लिए सोच विचार का जज्बा बहुत था। आज वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ता जा रहा है। दुनिया इतनी मादा परस्त हो गई है कि हमें ये एहसास या ख्याल नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है।
9: जी बिल्कुल सही, ये तो एक सीरियस नोट वाली बात थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़िंदगी के मानी बदल रहे हैं, ज़िंदगी के तौर तरीके बदल रहे हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, जाने अनजाने में ऐसी बातें और ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में हमें लगता है कि शायद वक्त बदल जाता, हम उसको रीराइट कर पाते और ऐसा नहीं शायद वैसा करते, तो चीज़ें ऐसी नहीं वैसी होती है ना, वैसी मतलब जैसा हम चाहते हैं और ऐसी मतलब जैसा हम नहीं चाहते लेकिन हो गई, राइट। पर यू नेवर नो, देयर इज़ नेवर टू लेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेवर टू लेट का फंडा हम सोचते सोचते ना बड़ा लेट कर देते हैं और इट्स रियली रियली रियली लेट देन। तो 416-303-3639, 416-303-3639, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, है ना। पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रह जाता, इसलिए हर लम्हा हर मोमेंट अपने आप में नायाब है, प्रेशियस है, बेशकीमती है, क्योंकि जो लम्हा गुजर गया वो फिर से हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा और इसको रीयूज़ भी नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट में भी नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आज हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमने ज़िंदगी इंजॉय नहीं की, कल हम आज वाली ज़िंदगी को भी ऐड करके 24 की जगह हम 26 घंटे इंजॉय कर लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। ये सेविंग मोड है ही नहीं, ये करंट अकाउंट है जो आप निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़ जाइए। 416-303-3639 फ्रॉम द मूवी सन ऑफ सरदार 2, मज़ेदार सा गाना फ्राइडे वाला।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: मम्मा, why don't you go to work now?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
6: कॉल सैयद एम रजा 416-937।

0: अजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: द लवी डवी शो ड्राइविंग यू होम अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो कनाडा मंडे टू फ्राइडे।
3: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। नंबर टू कॉल 416-303-3639। और बात कर रही हैं कुछ ऐसी मूवीज़ की। आमिर, आपने हिंदी मूवीज़ देखी होंगी तो, और कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि एक कल्ट मूवीज़ में जिनका नाम शामिल हो जाता है। कहना चाहिए कि अगर कोशिश होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक के तौर पे या किसी कोर्स के तौर पे या किसी एक छोटे से मॉड्यूल के तौर पे इन मूवीज़ का ज़रूर जिक्र किया जाए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो कि इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, जिसमें शामिल है मदर इंडिया, जिसमें शामिल है पाकीज़ा, कागज़ के फूल, गुरुदत्त की मूवी थी, और इसके बाद प्यासा, साहब बीवी और ग़ुलाम, और इसी के साथ शोले मूवी का नाम भी ज़रूर लिया जाता है। शोले के पीछे कितनी ही कहानियाँ हैं, कितनी बार उसको लिखा गया, फिर पलटा गया, फिर लिखा गया, फिर पलटा गया। और जब एंड टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई थी आमिर, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मूवी बिल्कुल फ्लॉप थी। थिएटर्स में और लोग गए नहीं थे, मतलब खाली खाली थिएटर्स पड़े हुए थे। अब जो फिल्म मेकर्स थे, रमेश सिप्पी, उनको बहुत टेंशन हुई। फिल्म के जो स्टार क्रू मेम्बर्स थे, जो स्टार कास्ट थी, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या हो गया जो लोग जा नहीं रहे। तो कुछ तब्दीलियाँ सजेस्ट की गई, और तब्दीलियाँ इम्प्लीमेंट करने से पहले ही खबर कि लॉन्ग लाइनअप के साथ ये जो लोग हैं वो हुजूम के तौर पर इस मूवी को देखने जा रहे हैं। शोले आपने कितनी बार देखी है? हमें देखी तो ज़रूर होगी, पर कितनी बार देखी है?
4: देखिए, आप की जो पहली बात थी बड़ी अच्छी और बड़ी बामानी बात थी। मुझे लगता है कि आज की फिल्म में स्टोरी यानी कहानी कहीं खो गई है। कहानी नहीं है, बाकी सब कुछ है फिल्म में। हालांकि फिल्म का बुनियादी मकसद स्टोरी टेलिंग है। इट्स अ स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस विद क्रिएटिविटी। ये सारा मकसद है फिल्म का। लेकिन बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, गुज़श्ता 4-5 साल से जो फिल्में बन रही हैं, जो फिल्म मेकिंग हो रही है, उसमें सतही किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। उसमें सब स्टैंडर्ड गैर मयारी जुमले बोले जाते हैं जो फैमिली में बैठ के सुनने वाले नहीं होते। उसमें मटेरियल इतना जानदार नहीं होता, उसकी कोई कहानी नहीं होती, उसका कोई सर पैर नहीं होता। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत थ्रिल गालिबन ज़रूर पैदा किया जाता है, लेकिन मैं फिल्म मेकर्स और जितने भी डिजिटल मीडिया स्टोरी टेलर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ पे सम अटेंशन टू द स्टोरी, पे सम अटेंशन टू क्रिएट सम गुड लाइंस इन द फिल्म। आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया, उन फिल्मों की लाइनें, उनके जुमले, उनके फिक्रे, उनके तासुरात, उनके डायलॉग्स, उनके एक्सप्रेशन, सब आज भी हमें याद हैं। वो घरों के मुहावरे बन गए हैं। आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, हम वो बातें अपनी गुफ्तगू में इनकॉर्पोरेट करते हैं जो उन फिल्मों के डायलॉग्स थे
3: जी।
4: लेकिन ये डायलॉग्स आपने गौर किया होगा कि पिछले 4-5 साल से बनने वाली फिल्मों में नापैद हैं, मौजूद ही नहीं हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फिल्म मेकर्स टू कम अप विद बेटर स्टोरीज।
3: क्या बात है, बिल्कुल सही है आपने कहा। और शोले का ही गाना आपके लिए। और क्या आप जानते हैं आमिर कि सलीम जावेद यानी सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की थी, और एक से एक कहानियाँ उन्होंने लिखी, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, और शोले की भी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। तो वो जब स्क्रिप्ट लिखा करते थे तो वो बताते थे कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, अगर विलेन के बारे में स्क्रिप्ट लिखी है तो ये विलेन इस स्क्रिप्ट के साथ जाएगा और ये विलेन इस स्क्रिप्ट के साथ नहीं जाएगा। तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो डैनी के लिए लिखी थी, जो अमजद खान बाद में किया था। अमजद खान नए थे उस वक्त, तो डैनी उस वक्त फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग कर रहे थे। अफगानिस्तान

में काबुल में, तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं अब चाहता हूँ उसका हिस्सा बनना लेकिन मैं नहीं बन सकता बिकॉज मैं कमिटेड हूँ दूसरी डेट्स के लिए। तो नए पर्सन के तौर पे अमजद खान का स्क्रीन टेस्ट लिया गया, उनकी आवाज़ काफ़ी पतली थी। तो सलीम जावेद ने कहा कि हमने जो इतने दमदार डायलॉग्स लिखे हैं वो इन पे तो नहीं जचेंगे, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। तो उनको किसी तरीके से समझाया गया। अब उस वक्त स्क्रिप्ट राइटर्स को भी समझाना पड़ता था कि प्लीज़ स्क्रिप्ट दे दीजिए, हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो इस लिहाजा अमजद खान को रखा गया। और ये वाला गाना था, एक लाइन थी उसमें, कितने आदमी थे ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 बार बोला गया ये लाइन, और उसके बाद फिल्म में किया गया। जैसे अभी आमिर ने कहा कि कितना मेहनत, कितना काम किया जाता था, एक एक लाइन को बार बार बोला जाता था। अब आप देखिए मुगले आजम में जो कोरस था, ए मोहब्बत जिंदाबाद, नौशाद साहब ने इसको लिखा था, उसमें 100 लोगों ने कोरस गाया था रफ़ी साहब के पीछे खड़े होकर। तो ये जो पेंस लिए जाते थे, और जया बच्चन कौन नहीं जानता उस वक्त, जया बच्चन ने एक विडो का रोल प्ले किया था, डॉटर इन लॉ थी, और उस वक्त अमिताभ बच्चन जो अमिताभ बच्चन की बड़ी बेटी है उस वक्त तो उनको कैरी कर रही थी। तो ऐसी कहानियां हैं। तो अभी भी किसी केबीसी में अमिताभ बच्चन से हेमा मालिनी ने कहा कि जब शोले थी तो उस वक्त आप एक बेटी के फादर थे, क्योंकि उस वक्त जया बच्चन श्वेता बच्चन को कैरी कर रही थी। तो कहानियां होती हैं। और महबूबा महबूबा गाना हेलन डांस कर रही हैं, अमजद खान है साथ में, और जलाल आगा के ड्रम्स, हु कुड मिस इट राइट। तो चलिए ये गाना आपके लिए, ओनली ऑन लवी डबी शो 416-303-3639।

0: साहब, गुलशन में फूल तभी खिलते हैं जब आप रातों की नींद गंवाते हैं, और ये फूल हर उस शय के लिए खिलेंगे जिसके लिए आपने मेहनत की, जिसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, जिसके लिए आपने कोई कुर्बानी दी, रातों की नींद की, दिन के चैन की, आप अपनी कन्वीनियंस में से निकले। हम जॉब्स करते हैं, सुबह 9 बजे जागते हैं, 5 बजे घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी अगर ऐसे ही गुजारेंगे तो उसी सर्कल में रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उसी क्लास में रहेंगे, उसी सोसाइटी में रहेंगे, उसी सोच के हामिल रहेंगे आप। लेकिन अगर आप 24 घंटे के दरवाज़े अपने लिए खोल देंगे तो आपके लिए मौके भी और पैदा होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपना कारोबार करने की, और बात जब अपना कारोबार करने की होती है तो एक बात इसमें बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है कि पहला कदम आप ही को उठाना है। इफ़ यू डोंट टेक द स्टेप, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स एट ऑल। एक कदम बढ़ाइए, इनिशिएटिव लीजिए। आपका ये पहला कदम आपके एक लंबे सफर की तरफ पहला इनिशिएटिव होगा। अपने बिजनेस की बात करें तो बहुत सी लिस्टिंग्स हैं इनके पास। गैस स्टेशंस की बात करें, ग्रोसरी स्टोर्स का जिक्र करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, ज्वेलरी और ग्लासेस की शॉप्स की बात करें, ही हैज़ गॉट मैनी मैनी लिस्टिंग्स। यहाँ ऑन एयर तो कुछ ही लिस्टिंग्स पे बात कर पाते हैं। कामयाब शख्सियत और आपको कामयाब बनाने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो आपकी कामयाबी की तरफ पहला जीना है। वेलकम करते हैं हसीब शेख को। हेलो,
1: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन, काइंड वर्ड्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपने हमेशा अच्छे अल्फाज से आगाज किया, बहुत मेहरबानी।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शेख साहब कि ये मैंने जिक्र किया है कन्वीनियंस से निकलने का, कंफर्ट जोन से निकलने का, कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं। वॉरेन बफेट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक वो भी है। मेरा ख्याल है पहले 15 में तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं आ जाता होगा, लेकिन बहरहाल पहले 10 में वॉरेन बफेट का नाम है।
1: बंदे का नाम भी लो, 11वें बंदे का नाम भी, अमर तो फैल है।
0: शुक्रिया बहुत बहुत, ऊपर वाला आपकी जुबान मुबारक करे, थैंक यू। तो बात यह है कि वॉरेन बफेट ने यह कहा है कि आप अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप को पैसा तब बनाना है जब आप सो रहे हों। यानी आप सो रहे हैं और लोग आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ऐसा कोई तरीका बताइए, ऐसा कोई बिजनेस बताइए कि हमारे भी पैसे ऐसे ही बन जाए।
1: जी, उस दिन जब आप मेरे पास तशरीफ लाए थे, आपने कहा था कि एक बंदे के लिए एक दिन में 24 घंटे होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो 240 घंटे नहीं हो सकते जब तक वो 10 मुलाजम नहीं रख लेता।
0: वाह,
1: या 10 बंदे उसके पास काम करने वाले होंगे तो उसका दिन तो खुद ही 240 घंटे का हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल सही।
1: और ये करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ये निकलने के लिए सोचो कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आप उसके 240 घंटे कर रहे हो, आपके लिए कोई नहीं कर रहा।
0: बहुत अच्छा।
1: और हम आपको चांस देते हैं कि आप अपनी ड्रीम्स को कम्प्लीट करने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम आपको आपकी कंफर्टेबिलिटी में, आपके फंडिंग के अंदर रह कर आपको बिजनेस प्रपोज भी करते हैं, आपको बिजनेस लेके भी देते हैं, और आपको बिजनेस लेके देने के बाद पूरा आपके साथ बैठ के कंसल्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से सक्सेसफुली आपने चलाना है।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है शेख साहब का, ये नंबर मिलाएंगे आप 647-988-4449। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, ये नंबर मिलाइएगा। बहुत सी लिस्टिंग्स हैं इनके पास, बहुत से बिजनेसेस हैं इनके पास। 647-988-4449। 4-9। शिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो, कि कुछ लोग ये समझते हैं कि कारोबार में आएंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सा पैसा चाहिए होगा। मान लीजिए एक सिनेरियो पे हम बात करते हैं कि आज के दौर में अगर किसी को $500,000 का बिजनेस लेना है, लेट्स से वो एक रेस्टोरेंट है, तो वो लेने के लिए कोई $1,50,000 उसके पास हो तो बाकी की रकम का कहीं इंतजाम हो जाता है कि बिजनेस ही उसकी किस्तें देता रहे? मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता शेख साहब से मुनकता हो गया है। हम कोशिश करेंगे शेख साहब को वापस लाइन पर लाने के लिए। शेख साहब का नंबर मैं आपको बता दूं, हसीब शेख, आप इनसे बात कर सकते हैं। कोई बिज़नेस करना चाहते हैं आप, कारोबार करना चाहते हैं, और इस एतबार से आपको इनसे बात करके इंतज़ाम कराने हैं, तो ये नंबर रहेगा इनका 6479884449। जी शिक साहब, हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर की, और एक सिनेरियो था कि किसी के पास $1,50,000 है तो वो क्या $500,000 तक का बिजनेस कर सकता है कि बाकी का जो वो कर्ज ले, बिजनेस खुद ही उसका कर्ज उतारता जाए?
1: गारंटीड।
0: अच्छा, है ऐसे कारोबार?
1: जी गारंटीड।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: एक है शर्त, ये है कि बिजनेस आपने करना है।
0: हाँ,
1: ये ना हो कि आपको जी मैं तो ले लिया तो मैं तो अपनी जॉब नहीं छोड़नी। आप अपनी जॉब ना छोड़े, आप अपनी जॉब ना छोड़े, लेकिन उसके साथ इसको पार्ट टाइम करें, स्पेयर टाइम पे ना करें। कुछ लोग स्पेयर टाइम पे करते हैं कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं चला जाऊंगा। भैया ये स्मॉल बिजनेस है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है, आप इसमें मल्टी मिलियन नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि आप नहीं भी जाओगे तो काम चलेगा। ये बिजनेस की सेंसिटिविटी है कि ये छोटे बिजनेस है, इसके ऊपर आपको कैनेडा स्मॉल बिजनेस लोन मिलता है टू ऑफसेट द ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है।
0: जी बिल्कुल सही।
1: इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रहा है, जो इस वक्त रिसेशन शुरू हो गया है, इकोनॉमी जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब है, कॉस्ट ऑफ लाइफ कितनी ऊपर चली गई है, लेकिन हमारी सैलरीज और हमारी इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो इसमें क्या हम इसी करंट सिनेरियो में रहते हैं तो हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं या प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं? अगर हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं तो कीप इट गोइंग, आप जो कर रहे हो करते जाओ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि डिजास्टर आ रहा है और हमारी कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो इसके साथ हमें कुछ करना है।
0: बिल्कुल सही।
1: आपका मुकद्दर, आपका नसीब, शेख हसीब आपको एक दफा कॉल करनी होगी, आपको एक दफा आना होगा।
0: बिल्कुल सही। शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई भी कारोबार लेने से पहले ड्यू डिलीजेंस क्या होती है, कैसे की जाती है, और आप इसमें क्या हेल्प करते हैं?
1: ड्यू डिलीजेंस सबसे पहले ये होता है जी, कोई भी बिजनेस है उसकी देखते हैं कि उसकी लोकेशन कैसी है, नंबर वन।
0: अच्छा,
1: नंबर दो जो है वो पंजाबी में कहते हैं किसी नु मां रास्ते किसी नु मां बादी। इसका मतलब ये है कि कई जगह लोकेशन अच्छी होती है लेकिन वो जो रन करने वाला है वो निकम्मा आदमी है, उसको प्रॉपर रन नहीं हो रहा।
0: जी जी जी।
1: तो अगर आप उसको प्रॉपर रन कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस बिजनेस इज फॉर यू। बहुत दफा ऐसी जगह होती है जो कि प्रॉपर नहीं है और उसको प्रोफेशनल बंदा कर रहा है, तो वहां पे हम आपको साफ कहेंगे दिस लोकेशन इज नॉट गुड फॉर यू। ये कॉम्पिटेंट बंदा नहीं कर सका तो आप ना करना, रिस्क है। हम आपको बताएंगे ड्यू डिलीजेंस में, हम आपके साथ बैठेंगे, आपको बताएंगे इसकी सेल क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसके लॉसेस क्या है, इसकी एवरीथिंग आपके सामने बैठ के करेंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कैसे करें, अपनी सेल को इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें।
0: बिल्कुल सही। यहां नंबर है 6479884449। शिक साहब, मैं अपने कारोबार के बारे में भी फिर आपको बता दूं थोड़ा सा, शेर की सूरत में बताना चाहता हूं कि तेरे बंदों से प्यार करते हैं हम, यही कारोबार करते हैं,
1: दिल जीत लेते हैं यही कारोबार करते हैं।
0: शेख साहब यू आर अ ग्रेट मैन, आपने बहुत से लोगों की मदद की है, बहुत से लोगों की हेल्प की है, मैं ज़ाती तौर पर ये बात जानता हूँ, और अपने सुनने वालों को पुरजोर अंदाज में ये कहना चाहता हूँ, शेख साहब से एक बार बात ज़रूर कीजिए, आपकी ज़िंदगी में छाई हुई मायूसियाँ एक नई उम्मीद में बदल जाएंगी। कारोबार करना है तो शेख हसीब से बात करनी है, ये रहा इनका नंबर 6479884449। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।
2: द लवी डवी शो ड्राइविंग यू होम, अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड, ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो कनाडा, मंडे टू फ्राइडे।
3: बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया, किसी ख्वाब सा कोई शख्स था जो सहर से पहले चला गया। हमें आसमां से गिला नहीं, तेरी रहमतों पे यकीन है, जहाँ जिंदगी ने शिकस्त थी किसी मौजज़े ने बचा लिया। किसी मेहरबान की दुआओं से ये सफ़र नसीब हुआ मुझे, जिन्हें रहबरी का गुरूर था उन्हें रास्तों ने मिटा दिया। सदा हंसते रहने का हौसला तेरी आरजू ने अता किया, बड़े गहरे जख्म थे वक्त ने जिन्हें रफ्ता रफ्ता भुला दिया। तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी, मगर ये जो एतबार वस्फ था कहीं दिल से दूर चला गया। कोई वक्त था कि ये नाम भी बड़ा मोतबर था जहान में, वो जो तेरे इश्क का दौर था हमें बाकमाल बना गया। बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया, वो जो तेरे इश्क का दौर था हमें बाकमाल बना गया।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।
4: जी बिल्कुल, और ये गाना आपके लिए जो हम प्ले करने वाले हैं, ये रूहानी कॉलेज की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। और रूहानी कॉलेज एक ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे सच जो सपने होते हैं वो सच में सच होते हैं। आमिर, देखिए सपने देखना हर किसी का हक है, हर किसी की हॉबी भी होती है, और कुछ लोग बचपन से सपने देखते हैं, कुछ किसी को देख के सपने देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, बहुत अच्छी केयर मिलती है, बहुत अच्छा टच मिलता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी एक डॉक्टर बने। या कोई बच्चा जाता है, बेटी या बेटा जाता है, उसको डॉक्टर को देख के लगता है कि मैं तो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। फिर वो सपने लेके घर पे आता है और पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, एक्सपेंस के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं, लेकिन एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये सवाल आप लेकर आते हैं और जवाब के तौर पर एक बढ़िया कमाई वाला शानदार करियर अपने साथ लेके जाते हैं, है ना आमिर?
5: बिल्कुल, आपने कहा कि कुछ लोग सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग ख्वाबों में ही रहते हैं, वो हकीकत की तरफ जाते ही नहीं। मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है कि सपनों की दुनिया से, ख्वाबों की दुनिया से निकलिए, हकीकत की तरफ आइए, रियलिटी की तरफ आइए, एक्चुअल वर्ल्ड की तरफ आइए। और आजकल दुनिया ये कह रही है कि कुछ ऐसा सीख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं हुनर की बात कर रहा था, मिसाल के तौर पर मसाज थेरेपिस्ट, कहने में, बोलने में, सुनने में ये आम सा प्रोफेशन लगता है, लेकिन इस कदर डिमांड है इसकी मार्केट में, लोग कम हैं, और जिन लोगों को मसाज की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है।
4: जी,
5: डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, थेरेपिस्ट ढूंढने निकलें तो नहीं मिलते हैं। इसलिए मसाज थेरेपिस्ट का ये कोर्स कीजिए, और मैं आपको बता दूं महीने का $20,000 भी बना सकते हैं आप ये कोर्स करने के।
4: बिल्कुल आमिर, आपने सही कहा, और मैंने खुद देखा है। रूहानी कॉलेज में एक बार मैं विजिट करने गई थी आमिर, तो उसमें मैंने खुद देखा था कि एक नया पास आउट स्टूडेंट, तो मैंने ओम जी को अपने हाथ से जो चेक काटते हुए देखा था, इट वाज, अगर मैं रफली फिगर की बात करूँ, 17,000-18,000 का वो चेक था। और ये शुरुआत की बात थी, और दो दो तीन तीन महीने की वेटिंग होती है, डिमांड है इस करियर की बहुत ज़्यादा, और मेडिकल प्रोफेशन के तो कहना ही क्या। तो इन सब की जानकारी के साथ ऑलवेज अ प्लेजर टू वेलकम ओम वर्मा जी, ओनर ऑफ रूहानी कॉलेज। ओम जी, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
6: थैंक यू शिवानी जी एंड आमिर जी, रियली अप्रिशिएट कि आपने हमें टाइम दिया।
4: प्लेजर।
6: जी जी
4: जी। तो अभी जैसे आमिर जिक्र कर रहे थे कि सपने सपने ही रह जाएं, क्योंकि कभी कभी तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस तरफ बढ़ते ही नहीं बढ़ते आगे नहीं, हाँ। सोचते हैं सपनों को लेके शायद ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके रहते तो बिल्कुल भी नहीं, है ना?
6: जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर बनने का सपना है बहुत सबका होता है, बट जो एक जो पाथवे है ना, दैट्स नॉट इजी, क्योंकि 10 से लोग लगता है कि 10-12 ईयर के बाद में क्या होगा, पहले हमने 12th करना है, उसके बाद में 4 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, फिर एमकैट, उसके बाद इंटरव्यू, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है। मतलब कि 12th के बाद में 5-6 ईयर आपके ऐसे जाते हैं जिसमें कोई सर्टेनिटी है ही नहीं कि आप सिलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और वैसे भी देखो कोई बच्चा है अगर आफ्टर 12 लाइक 4 to 5 ईयर यूनिवर्सिटी में जाता है उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है देन उसको तो फिर आईटी में भी नहीं जा सकता कोई और उसमें भी नहीं जा सकता लाइक कॉमर्स में आईटी क्योंकि उसने पढ़ाई मेडिकल है। तो एक बहुत बड़े चैलेंज है हमारी सोसाइटी में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि जो आफ्टर 12th ग्रेड के बाद में डायरेक्टली दे कैन कम टू अस एंड सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम है प्री मेडिकल का और उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं कोई अनसर्टेनिटी नहीं गारंटेड एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज में चाहे जो भी उनकी पसंद का होता है लाइक यूएस के अंदर है बहामास में है कैरिबियंस में है तो कहीं भी वो हमारा ऑलरेडी अग्रीमेंट है सारा कुछ ऑलरेडी पेपर है तो एक पाथवे खुल जाता है और पूरी की पूरी गाइडेंस हम शुरू से लेकर अंत तक क्योंकि हमने पर्सनली विजिट किया है हर कॉलेज को जाकर देखा है वहाँ पे लाइक जो यहाँ पे रेसिडेंसी से कैसे बच्चे निकलते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी तो एवरीथिंग हमने पूरा देखा हुआ सोचा क्योंकि पेरेंट्स के लिए इट्स नॉट इजी कि गो टू डिफरेंट कॉलेज क्या है उनके पास में क्या नहीं है तो हमने सारा कुछ किया हुआ आई कैन गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन सिर्फ आके पता करें कि व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हाट इज बेटर और कैसे 4 साल पहले कर सकते हैं। जी
4: जी देखिए टाइम आजकल बड़ी सब कुछ है इंसान के पास टाइम नहीं है और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक कम से कम टाइम में जो टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और सपने जल्दी पूरे हों उनकी जो पैसा लगाया है वो जल्दी वापस आए कमाई के तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो आमिर ने मसाज थेरेपिस्ट की बात की जैसे मैंने भी जिक्र किया कि जो एक अच्छी पेइंग जॉब है ये तो ये कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि ये सुनने के बाद तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि इसमें करियर बनाएं तो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं हमारे लिसनर्स। ओम जी
6: जी जी जी सोनी जी इसमें क्या होता है कि एक नॉलेज होती है ना नॉलेज की कमी होती है हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने हेल्थ केयर में पढ़ाई नहीं की मेडिकल की पढ़ाई नहीं की तो हम उस बारे में सोचते ही नहीं कि हम हेल्थ केयर में जा भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे कनाडा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइक इवन यू आर इन द कॉमर्स आर्ट साइंस कुछ भी पढ़ाओ अपने सिर्फ 12th ग्रेड पास होना चाहिए देन यू कैन ज्वाइन हेल्थ केयर। और इससे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है कि जस्ट आफ्टर 12th ग्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का आरडी का प्रोग्राम हमारे पास है वो भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन्स की 4 से 5 दिन आपको ऑनलाइन करना है और ओनली 1 डे आपको इन पर्सन आना है इन बिगिनिंग लास्ट में तो थोड़ा ज्यादा आना पड़ता है। और इसमें देखो कि क्लासेज भी हमारी मॉर्निंग 8 o'clock से रात के 12 बजे तक होती है तो जो भी शिफ्ट होती है किसी मान लो कोई मॉर्निंग कर रहा है कोई आफ्टरनून कर रहा है कोई नाइट कर रहा है तो सबके लिए जैसा भी उनको सुटेबल होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोई मोस्टली हमारे क्लासेज 7 to 9 और 9 to 11 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं रात की जो 9 से 11 साढ़े 11 होती है तो उसमें क्योंकि सब लोग फ्री होते हैं और हमने हर तरीके से बैच कर रखा है कि किसी को भी टाइम की वजह से प्रॉब्लम ना हो और उसको एकोमोडेट कर पाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों को एक सर्व कर पाए उनकी एक ड्रीम है क्योंकि आपको पता है कि इस सेक्टर में सिर्फ एक आरएमटी की पढ़ाई नहीं है रेसिडेंट मसाज थेरेपी पढ़ाई नहीं है इसके अलावा आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं लाइक आफ्टर यू कैन बिकम ऑस्टियोपैथ वो भी एक सर्व का है एक्यूपंक्चरिस्ट आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं पूरा का पूरा एक करियर है पूरा पूरा एक लाइफ की सेटलमेंट है कि ऐसा नहीं कि आपने ये कर लिया उसके बाद क्या होगा पूरी की पूरी फुल एक इनकम पोटेंशियल है लोगों की सर्विस कर रहे हैं आपको दिल में भी एक अच्छा लगता है कि सर्विंग टू कम्युनिटी किसी की हेल्प कर रहे हैं
4: बिल्कुल सही
6: तो एक अलग ही स्पिरिचुअल भी देखें तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो काम करके अंदर से एक आती है कि हमने कुछ अच्छा किया किसी के लिए।
5: सवाल यहाँ ये है कि ये कितने अरसे का कोर्स है कितना टाइम लगाना पड़ेगा मसाज थेरेपिस्ट के कोर्स पे और क्या कोई हेल्प गवर्नमेंट की हेल्प फाइनेंस के एतबार से मिल सकती है?
6: जी बिल्कुल 1 ईयर का है और बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में फाइनेंस के। और अमित जी मैं बताऊं कि अगर किसी की जॉब चली गई बहुत सारे लोगों को नई जॉब जा रही है
5: जी
6: तो इफ दे आर इन द ईआई अगर ईआई पे कोई जाता है तो उसके लिए 100% फ्री है
5: एक
6: नहीं करना और वो भी ग्रांट है ग्रांट मीन्स आपको पे भी नहीं करना है वापस।
5: वेरी नाइस बहुत अच्छा
4: क्या बात है, बस नंबर यही है 9057312555, बड़े आसान से 10 नंबर के फासले पर ये आपका इंतज़ार कर रहा है। ये फ्लरिशिंग करियर, डॉक्टर बनने का सपना या फिर मसाज थेरेपिस्ट का या और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, बस जगह एक ही होनी चाहिए आपके लिए जाने की, 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 21 इन ब्रैम्पटन, या नंबर टू कॉल 9057312555, दैट्स 9057312555। जी ओम, कुछ आप जिक्र?
5: जी जी बिल्कुल ओम जी, आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लासेस की कन्वीनियंस क्या रहेगी, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग जॉब्स करते हैं, तो उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए होती है, तो किस टाइम पे इनरोल करा सकते हैं या क्लासेस कंडक्ट होती?
6: जी जी, हमारे पास 7 डेज, शायद हमारा पल्ला कॉलेज है, 7 डेज ओपन होता है। तो हमें हर मॉर्निंग 8 o'clock से 8 AM मॉर्निंग से हमारी क्लासेस चालू हो जाती हैं।
5: ठीक है,
6: और अगर जो आ सकते हैं क्लास में तो आ जाएं, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन है। उसके बाद भी जो मान लो कि दोनों भी नहीं कर सकते, उनकी जॉब है कुछ ऐसा है, तो हमारे पास जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो हमारी वेबसाइट पे होती है, उसकी क्रेडेंशियल मिल जाती है, और उसके अलावा टीचर हमेशा आपके पास अवेलेबल होते, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी उनसे पूछ सकते हैं। और इसमें एक और भी हमने कर रखा है, सुबह 8 o'clock से रात की 11-12 बजे तक, जो भी टाइम जिसको सुटेबल करता है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को, और बाकी बैच में अपना जो कुछ छूट गया, कुछ ऐसा हो गया तो अपना ज्वाइन कर सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: फ्लेक्सिबिलिटी है। जी जी,
5: बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
6: थैंक यू
4: जी।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए, किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 30 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
4: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है, इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना रहे, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिज़ाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के अतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
4: जी, 416-303-3639।
5: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
7: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
0: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
1: साहब, बात की जाए एक बेहतरीन और मिसाली घर की। बाहर से तज़ीनो आराइश हो घर की, अंदर से इंटीरियर डिज़ाइनिंग कमाल की हो घर की। आप घर के अंदर जाएं, फर्नीचर भी ठीक ही रखा हो, बड़ा वाजबी सा, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, लेकिन उसमें अप्लाइंसेस ठीक ना लगे हों, बात बात पे कभी फ्रिज में कोई नुक्स पड़ जाए, कभी चूल्हा आपका ख़राब हो जाए, कभी डिश वॉशर में कोई मसला आ जाए, कभी वॉशिंग मशीन ठीक से काम ना कर रही हो, तो यकीन मानिए कि वो खूबसूरत सा घर जो बाहर से देखने में कमाल का और हैरत अंगेज लगता है और आपका दिल खुश हो जाता है घर को देख के, अंदर जाते ही अप्लायंसेस इस्तेमाल करते ही आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। याद रखिए, आप थके हारे घर आएँ, काम काज निपटा के अपने घर का रुख करें, घर में आते ही आपको अगर ये पता चले कि आपका फ्रिज ही ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें जो सब्जियां रखी थी वो भी ख़राब हो गई, घर में जो ग्रोसरी का सामान रखा था वो भी ख़राब हो गया है, खाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है, तो आपका एक कामयाब दिन मायूसी में, नाउमीदी में और परेशानी में बदल जाएगा। बात कहने का और करने का मकसद ये है कि आप 1.5-2 मिलियन का घर लेने के बाद उसके अंदर आप नाकिस गैर मयारी अप्लाइंसेस रखेंगे तो ज़िंदगी का सुकून तबाह हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कार की बॉडी पर $500,000 लगा दें और उसके अंदर जो इंजन रखा है वो $1,500 का हो। इट डज़ नॉट मेक सेंस। सो कोशिश कीजिए अप्लाइंसेस ऐसी जगह से ख़रीदिए जहां शफाफियत, जहां प्राइस, जहां क्वालिटी, जहां मयार, जहां फाइनेंशियल अरेंजमेंट सबसे बढ़के और मिसाली हो और वो अपनी मिसाल आप हो। जगह बता रहे हैं आपको, जाना आपने है, बात आपने करनी है, सामान वहीं से लीजिएगा अप्लायंसेस का। वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट स्टोर्स डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स। सलीम भाई, वेलकम करते हैं आपको।
8: आमिर भाई, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल जितनी तारीफ है सर, डिटेल आप डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कर लेते हैं, माशाल्लाह, मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं इसका।
1: आप पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, तो मैकेनिक्स की बात की जाए या बैक एंड पे क्या चल रहा होता है मशीनों के उसकी बात की जाए, तो आपसे बेहतर ना कोई जानता है और ना ही इस कारोबार में कोई और शख्सियत मैंने पाई है जो आपके हम पल्ला हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसे आप इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो।
8: वेरी राइट। ये देखिए, उसमें जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक तो बेनिफिशियल बात यह है कि मेरा पूरा स्टाफ ट्रेंड है, मैंने उनको खुद ट्रेन किया है कि आपने वो बड़े या दाएं बाएं वाले स्टोरों की तरह नहीं बेचबाज करनी कि जनाब जो भी क्रैप है बस आप उसको थमा दें। नहीं, first analyze the need of the client, suggest something which is right for them
1: ji,
8: and give them 2 or 3 options, theek hai, aur unko ek reason dein ki acha ye cheez aapke liye ye benefit ho sakti hai, isse aapke ghar ki value mein ye izafa ho sakta hai aur ye aapki basement ke liye, you don't need to spend high end money, you can work with these things. aur teesri cheez jo most important hai ki jo generally hum public ke sath share nahi karte, ki we always give feedback to the manufacturer also. सो बींग इंजीनियर, मैं ये नहीं कि मैं कोई यहाँ पर कोई फ्रिज स्टोव ही बिक रहे हैं चीज़ों के साथ, ये लोग आते हैं और चीज़ें ले जाते हैं। नहीं, वी गिव फीडबैक टू आर मैन्युफैक्चर, जिसमें सैमसंग भी है, हम बॉश को भी करते हैं, किचन एड लोगों को भी करते हैं, एंड वी सजेस्ट दैम दैट व्हाट चेंजेस कैन बी मेड। उसका फायदा क्या होता है कि जब तक एक फीडबैक नहीं जाती मैन्युफैक्चरर को, तो वो जो हमें जैसे हमारे देसी कुकिंग के अंदर या साउथ एशियन कुकिंग के अंदर जो मिडिल ईस्टर्न कुकिंग के अंदर और जो हमारे बाकी जो लोग हैं उनकी कुकिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं
1: जी.
8: अब हमने उनको जब कम्युनिकेट किया, लिटरली यू विल नॉट बिलीव कि दे मेड दोस चेंजेस एंड दे लाइक इट. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उनका एक डिफरेंट रिलेशन है. And whenever they are like their head office meeting and they always mention that we got this feedback from Dixie Electronics in Mississauga and the gentleman told us to modify this thing to this to this thing. And those things finally transpire into the model changes, their design changes. And best of all, hum unko ye bhi batate hain ki isme value add karne se aapka fayda kya hoga ki you can make a product which is right for the client. तो ये जो है ना, जो आपने इंजीनियरिंग की बात की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है
1: जी.
8: और इनको डिफाइन और ये चीजों की डिजाइनिंग में, और तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट फंड. बट देन यू नो वी केम इनटू द बिजनेस, रिटेल बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा बिल्डर के साथ काम करते हैं और हमारे रिटेल क्लाइंट्स. अब चूंकि इतना बड़ा शोरूम आपको रखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब बिल्डर आता है तो ही वॉन्ट टू सी एवरीथिंग डिस्प्लेड ऑन दैट पार्ट.
1: यस, यू आर राइट.
8: और सेकेंडली उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट जो एडवांटेज है कि हमारे रिटेल क्लाइंट्स को बहुत चीजें सस्ती मिल जाती हैं एज कम्पेयर. जैसे पिछले दिनों हमने कैनमोर, जो कि सबसे पुराना और ओल्डेस्ट कंपनी है इन दी अप्लायंस सेक्टर, तो हमने मतलब वी गॉट ऑलमोस्ट कोई 20-30 कंटेनर जो है उनकी प्रोडक्ट के, तो वी लाइन देम अप फॉर द ईयर. इतने ज्यादा ऑर्डर करने का एडवांटेज क्या है आमिर भाई, कि आपको वो जो प्राइस आमतौर पे मिलेगी ना से $800 फॉर अ स्टोर, वी कैन गेट इट वे चीपर देन दैट फॉर अ बिल्डर प्राइस.
1: वाओ, वेरी नाइस.
8: और हम फिर अपने क्लाइंट के साथ जो है ना उनको हेल्प आउट करते हैं.
1: बिल्कुल ठीक.
8: और वो हमारी जो प्राइस होती है, जैसे मैं बताऊं कि इस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड के ऊपर हमने कैनमोर की 36 इंच की फ्रिज काउंटर डेप्थ उसको 947 पे बेच रहे. एंड देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट इन द एंटायर कनाडा व्हिच कैन बीट दैट प्राइस.
1: राइट,
8: 36 इंच की फ्रिज 947.
1: वाओ,
8: 30 इंच का स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, इस वीकेंड के ऊपर हम सिर्फ बेच रहे हैं 599. तो उसके जो कंपैटिबल हैं जितने भी, लिटरली दे आर अबाउट 899 to 999 द मार्केट. Dishwashers you can get only for 387.
1: Wow, stainless steel, very nice.
8: Stainless steel out. इसी तरह जो over the range microwave चाहिए होते हैं वो हमारे पास तकरीबन को 237 से 247 के बीच में. वॉशर डायर किसी को चाहिए, जैसे वो आपने बेसमेंट के लिए लेना होता है तो वहाँ पे दो तरह के चलते हैं. एक तो साइड बाई साइड भी लोग रहते हैं, साइड बाई साइड वॉशर आपको मिल जाएगा 488 का ड्रायर मिल जाएगा. तो मैं ये थोड़ी चीजें इसलिए आपसे कर रहा हूँ, बाकी आपको पता है कि सोनी के वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर इन जीटीए. आपने कहीं से भी कोई सोनी का टीवी बाय करना, जस्ट यू नीड टू गिव अस अ कॉल बिफोर बाइंग इट. यू डोंट हैव टू टेल के व्हाट प्राइस यू आर गेटिंग, वी विल गिव यू द बेस्ट प्राइस. ये हम वो करते ही नहीं है लोगों के साथ धंधा ऐसे कि नहीं कि भाई पहले तुम प्राइस बताओ फिर मैं उसको $10 छोड़ दूंगा. नहीं, हम नहीं करते. वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. I give you this price, that's the best price, and I guarantee that my price is the lowest in the whole city. Usme Sony hai, Samsung hai, LG ke OLED TVs most popular hain. So what I plan to say is ke hamare paas jaise Napoleon ke barbecue, you will not believe, we are almost sold out. Hamare shayad 3-4 jo hain wo container se baki rahe hain. Aur Napoleon ko main kyun support karta hu, I want to tell my listeners ke I always support a business which has a manufacturing plant right here in Ontario.
1: Very nice.
8: Uski reason pata kya hai Amar bhai, ki agar hum inko support nahi karenge to hamare bachchon ko kal job.
1: Bilkul sahi, bahut kamal ki baat.
8: Milenge.
1: Bahut achhi baat
8: hai. Outside country matlab koi India se hai, China se hai, Pakistan se hai. You understand that they need that product too, you know, to compete in the market. But if I can get a better source and more durable source like jo Kenmore hai, Napoleon ki, to Napoleon ki fireplaces hain, Napoleon ke barbecue, all kinds. Main Napoleon ke un barbecues ko support karta hun jo yahan par all made in Barrie, north of jo bhi GTA ka aata hai. Phir hamare paas basement ke packages hain, washer dryer maine aapko bata di. Main purpose jo main aapse baat karne ka wo ye hai कि वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस।
1: वाह, बहुत अच्छा, बहुत कमाल की बात।
8: यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लेने की नहीं होती, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आता है। हम लोगों को फाइनेंस भी कर रहे हैं, जैसे अभी मई के अंदर फ्लेक्सिटी वाले जो हैं वो आपको 6 मंथ्स की नो पेमेंट, नो इंटरेस्ट, नो एडमिन फीस, कोई चक्कर नहीं है, वो दे आर गिविंग टिल द एंड ऑफ द मंथ।
1: बिल्कुल सही।
8: देखिए, आप कोई भी चीज बाय करें, हमारे ऑलमोस्ट 40-45% क्लाइंट हैं, दे गो फॉर फाइनेंसिंग। अगर 6 महीने के लिए मिल रहे हैं, दैट्स ओके, व्हाई दे हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड्स।
1: बिल्कुल ठीक।
8: इसलिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है, नहीं भी जरूरत, स्टिल यू कैन डू इट, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। और उसके बाद बेस्ट प्राइसेस मिल रही हैं। वी आर हियर इन, यू नो, एट दिस लोकेशन फॉर लास्ट 23 ईयर्स।
1: बिल्कुल ठीक,
8: उसी जगह पर हैं हम, कोई वो नहीं करते कि जो आज यहाँ पे हैं कल परसों उधर चले गए परसों, नहीं, वी डू बिजनेस ऑनेस्टली फेयरली। और उसका एडवांटेज हमें यह है कि पिछले दिनों हमने अपने इंटरनल कैलकुलेशन की थी कि एवरी सेकेंड हाउस मिसिसागा है समथिंग फ्रॉम डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स।
1: वेरी नाइस, बहुत अच्छा,
8: जो एक ब्लेसिंग है। वी हैव सो मच ट्रस्ट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, every second house has something from Dixie Electronics.
1: Very nice.
8: हो,
1: बहुत अच्छा।
8: Small appliances हो, major appliances हो, ठीक है ना? तो ये एक, आप देखें इतना trust develop होना,
1: बहुत बड़ी बात।
8: That's a small business.
1: बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है मैं 5 साल का था जब आपने स्टोर खोला था सलीम भाई।
8: जी बिल्कुल।
1: I remember going there.
8: Yes, yes. बिल्कुल ठीक है। और सलीम भाई को 65 के है।
1: लगते नहीं है वैसे आप।
8: नहीं, मैंने आप बालों को ना वो वाइट कर दिया।
1: एक कामयाब बिजनेस है आपका। मैं एक ही आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की कि किसी भी बिजनेस या किसी भी कारोबार की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर दूसरे घर में आप कहते हैं डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो इसमें तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता होगा प्राइस के एतबार से।
8: देखिए, बात सैक्रीफाइस नहीं, मैं बल्कि ये कहूंगा दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। सैक्रीफाइस तो डिफरेंट होता है ना, कि आप यू आर गिविंग समथिंग, आई ओ इट टू द सोसाइटी।
1: अरे वाह, बड़ी अच्छी सोच है ये, कमाल की सोच।
8: उस सेंस में नहीं सोचता कि मैं, मेरे पास बहुत सारे एजुकेशनल मार्शल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोग आते हैं एंड वी सपोर्ट देम। मुझे पता है कि व्हाट एजुकेशन हैज इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग।
1: या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
8: वी केम फ्रॉम अ हंबल बैकग्राउंड, एक बहुत ही स्मॉल टाउन से, आपको पता है कहाँ से, कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पे। ये बात है कि एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर पर्सन।
1: यस,
8: अल्लाह के नबी ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना
1: पड़े।
8: थी ये नहीं था कि हमने उस चीजों को कोई पता नहीं किया कि सुखा आपका पर लगाना, नहीं, दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन।
1: बेटर पर्सन, वेरी नाइस।
8: एंड यू अंडरस्टैंड दी फीलिंग एंड यू नो सफरिंग्स ऑफ अदर्स आल्सो।
1: बिल्कुल ठीक।
8: वांट टू मेक यू नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे।
1: बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात। आपने जाना है डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स, कमाल की जगह है। अपनाइयत है, मोहब्बत है, खुलूस है, चाहत है, अच्छी प्राइसिंग है, लो प्राइस है, मार्केट से कंपेयर करके देख लीजिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, कमाल की ऑफर्स हैं। ये नंबर मिलाएंगे आप और डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स ही जाएंगे आप। ये मिसिसागा के बहुत ही मेन एरिया में है, दैट इज द मेन थिंग अबाउट डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स, द थिंग लव द मोस्ट अबाउट इट। मैं पहले चौधरी साहब का डायरेक्ट नंबर आपको दे दूं, उसके बाद फिर डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर होगा 416-904-7575। और ये जो नंबर मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ये आपने बस सेव कर लेना है, अभी के भी डायल कीजिए। कमाल की लॉन्ग वीकेंड की ऑफर्स हैं, जरूर लीजिएगा, जाइएगा जरूर, विजिट जरूर कीजिएगा। 905-625-5900 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 905-625-5900। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू।
8: थैंक यू, आपने चाय का तस्कर नहीं किया कि वो चाय भी पीते हैं। नहीं, वो उसके बगैर मेरा नहीं चल रहा।
1: देखिए चौधरी साहब, वो जिक्र बड़ा लंबा हो जाएगा और चाय के साथ और भी बड़े लवाजमात थे, तो वो मेरा ख्याल है वंडरफुल कप ऑफ टी इंडीड, और उसमें ढेर सारी आपकी चाहत शामिल होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
8: थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।

0: लवी डवी शो पर वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। 4163033639 अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।
1: यहाँ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी आपने कैसी गुजारी है, इसके उतार चढ़ाव, इसके नशेब व फराज कैसे रहे हैं। ये कहानी एक तरफ है, आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा रहा है ये मामला भी एक तरफ है। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि आपने अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में पीछे क्या छोड़ा है। क्या ईंटों से बने कुछ मकान ही छोड़ के जा रहे हैं आप? क्या बैंक में रखे कुछ पैसे ही छोड़ के जा रहे हैं आप? या फिर आपने अपने पीछे तरबियत छोड़ी है, तालीम छोड़ी है, ज़र्फ छोड़ा है, ज़ौक छोड़ा है, कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो रहती दुनिया तक कायम रहे? कोई किताब छोड़ी है, कोई रिसर्च पेपर छोड़ा है, कोई तहकीक छोड़ी है, कोई तजरीद छोड़ी है, कोई बात छोड़ी है, गुफ्तगू का कोई उनवान छोड़ा है, शेर का कोई हिस्सा छोड़ा है, कोई कता रुबाई छोड़ी है? आप इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन आपने पीछे वालों के लिए क्या छोड़ा है ये बात बहुत अहम है। दौलत थी आपके पास, कहीं कोई छोटा पानी का नलका लगवाया है, कहीं कोई छोटी सी नहर बहवा दी है आपने, या फिर किसी के लिए छत का इंतज़ाम किया है, किसी यतीम बच्चे को पालने के लिए मदद की है, किसी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप इस दुनिया के लिए छोड़ के क्या जाएंगे ये बहुत अहम है। अपना ध्यान रखिएगा। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर को इजाज़त दीजिए। Have a wonderful day ahead. And hey, you, I...

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: झुमका।
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माई मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Seals and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वेयर योर कार गेट्स अ केयर.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
3: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर. आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहाँ न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। और आज है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का बॉलीवुड फ्राइडे और लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे वीकेंड का आगाज भी हो चुका है। एंड आज आपकी रिक्वेस्ट हम एक एक करके प्ले करते रहेंगे ऑल द वे टिल 2 पीएम। स्पॉन्सर्स के मैसेजेस, द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग एंड डॉन वैली नॉर्थ हांडे। याद रखें, डॉन वैली नॉर्थ हांडे, जहां पर आपको हांडे की गाड़ियों पर जबरदस्त डील्स मिलती है ऑलवेज। बाहर का तापमान रहेगा तकरीबन 20 से 21 डिग्री मैक्सिमम टुडे, एंड इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल सनी डे। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माधुरी दीक्षित का बर्थडे, एंड माधुरी दीक्षित के रिक्वेस्ट को भी हम प्ले करते रहेंगे वन आफ्टर अनदर। और बाकी की जितनी आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट है, वी विल प्ले देम ऑल्सो। और लॉन्ग वीकेंड पर मंडे का शो एज ऑलवेज रहेगा विदाउट द न्यूज़, ओनली अ म्यूजिकल शो ऑन मंडे, द लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे वीकेंड। आपके परिवार के साथ हम मिलकर करेंगे सेलिब्रेट। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। 12:15 की हमारी हेडलाइंस भी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही छोटी सी यहाँ पे ब्रेक भी लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्पॉन्सर्स के कुछ मैसेजेस, खासकर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर सुल्तान जी ने विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की अमेजिंग डील्स का आगाज कर दिया है। सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज। पहुँच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर। टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी आपको ऑफर कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग डील्स। और सुनते रहिए साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल तैयार है। लेते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक और आते हैं बहुत ही जल्द वापस।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda.
5: He's breaking through the midfield.
6: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
7: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive, चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर जर्नी को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
0: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
2: The headlines are brought to you by Win Lifetime Trading, Brampton TV and Appliances, Don Valley North Hyundai, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। शुरू करते हैं ताजा तरीन हेडलाइंस। मालदीव्स में हुई स्कूबा डाइविंग ट्रेजेडी में 5 इटालियंस मारे गए। ट्रंप को उम्मीद है कि यूएस चाइना टाइज आगे भी ज्यादा बेहतर होंगे। यूएस ज्यूरी ने 2019 बोइंग 737 मैक्स क्रैश के विक्टिम्स की फैमिली को $49.5 मिलियन अवार्ड किए। हवाई में एक व्यक्ति को रेस्ट किया गया आफ्टर वीडियो शोज ही हर्ल्ड रॉक एट इंडेंजर्ड सील। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि यूएस पॉलिसी ऑन ताइवान अनचेंज्ड ही रहेगी। अगर चाइना ने ताइवान को टेक ओवर करने की के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, इट वुड बी अ टेरेबल मिस्टेक दे मेक। यूएस के न्यू मैक्सिको में स्मॉल मेडिकल प्लेन के क्रैश होने से 4 लोग मारे गए। डेडली बी स्वार्म अटैक ने से बचाते वक्त अपने 3 साल की बच्ची को मैक्सिकन जज की हुई मौत। लेबनान और इसराइल ने यूएस में पीस टॉक्स होल्ड की एज सीज फायर नियर्स एंड। ट्रंप का कहना है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वादा किया चाइना वोंट आर्म ईरान, ऑफर टू हेल्प ओपन हॉर्मुज स्ट्रेट। ब्रिक्स मीट में ईरान ने यूएस के बुली करने के खिलाफ यूनिटी की मांग की। लोकल समाचारों में ब्रैम्पटन पार्किंग लॉट में टो ट्रक शॉट एट, जांच शुरू हुई। डेटा के अनुसार टोरंटो की एक स्ट्रीट पर स्पीडिंग अप मोर देन 200% फॉलोइंग स्पीड कैमरा रिमूवल। वॉन में डेडली डबल शूटिंग के विक्टिम्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने 218 जॉब कट्स का ऐलान किया। मिसागा हिट एंड रन मामले में ड्राइवर इन हिज 70s इज वांटेड एंड ओंटारियो टू एक्सपैंड जेल कैपेसिटी बाय 2500 बेड्स ओवर 10 ईयर्स। भारतीय समाचारों में नोएडा प्रोटेस्ट के अक्यूज्ड को फॉरेन देशों से 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा मिले थे, पुलिस इन्फॉर्म्स। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पीएम के साथ दिल्ली में की मुलाकात, डिस्कस किया यूक्रेन और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मध्य प्रदेश की फायर क्रैकर फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से 3 लोग मारे गए, 23 हुए जख्मी। फारूक अब्दुल्ला ने आरएसएस लीडर के पाकिस्तान बयान का स्वागत किया है, ये भी कहा कि ये सही वक्त है टू इनिशिएट टॉक्स विद पाकिस्तान एज वॉर्स कैनॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। पीएम मोदी की फॉरेक्स अपील पर इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागरिया कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस शुड बी अलाउड टू राइज। उत्तराखंड फाइल्स चार्जशीट इन द फर्स्ट ट्रिपल तलाक केस अंडर यूनिफॉर्म कोड। और वीडी सतीशन टू बी स्वॉर्न इन एज केरला चीफ मिनिस्टर ऑन May 18th। केंद्र ने इंडियन फ्लैग्ड वेसल पर ओमान के पास हुए अटैक को स्लैम करते हुए कहा दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। पीएम मोदी का कहना है कि विद इंडिया एज चेयर ब्रिक्स टू वर्क ऑन मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। सीनियर कोलकाता कॉप को एक्सटॉर्शन केस में अरेस्ट किया गया, ईडी से भाग रहा था। एंड पोस्ट पोल वायलेंस क्लेम्स पर हाईकोर्ट ने बंगाल से कहा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु पेज ऑन एक्स, जिसके 4 लाख फॉलोअर्स थे, हैज नाउ क्रॉस्ड ओवर 2 मिलियन। एंड हरियाणा की एक महिला का पहले हुआ मर्डर, बॉडी बर्नड इन हिमाचल टू हाइड एविडेंस। पाकिस्तान की खबरों से प्राइम मिनिस्टर शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और अजरबैजान ब्रदरली नेशंस हैं, दोनों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गवर्नमेंट ने पीपीपी को कॉन्टैक्ट नहीं किया है ओवर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने कैम्ब्रिज एग्जाम लीक्स को लेकर इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। पीटीआई लीडर्स को फिर से इमरान खान के साथ नहीं मिलने दिया गया, सीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने कहा सिविल सर्वेंट्स के एसेट डिक्लेरेशंस टू बी मेड पब्लिक इन रिडैक्टेड फॉर्म, मीनिंग इन क्लियर फॉर्म। और दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल पर प्रेसिडेंट जरदारी ने मिलिट्री अवार्ड्स कन्फर किए। और अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को किया अप्रोच अगेंस्ट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ इमरान खान। PM Sharif کہتے ہیں کہ یو ایس ایران کی ٹیمپرری سیز فائر جاری ہے مگر پاکستان کی اکانومی پر اس کا اسٹرین نظر آتا ہے. یو ایس ایران ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان ہر طرح سے اپنے پازیٹیو کردار نبھائے گا. پاکستان آسٹریلیا او ڈی آئی سیریز کی فزیکل ٹکٹس کی سیل اگلے ہفتے سے ہونے والی ہے شروع. اسپورٹس جگت سے آئی پی ایل میں بیڈ پرفارمنس کے چلتے ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے پورے کوچنگ اسٹاف کو سیک کیا جائے گا. پنجاب ورسز ممبئی انڈینز کے میچ میں تلک ورما سلامز اور ہسٹورک 75 ناٹ آؤٹ, ممبئی انڈین کو جیت حاصل ہوئی. بالی ووڈ خبروں سے عالیہ بھٹ نے کانز 2026 میں ٹرول ہونے کے بعد ہٹ پیک کیا اور کہا جسٹ چل. مونی راؤ نے پتی سورج نامبیار سے سیپریشن کو کنفرم کیا اور کہا گیو اس پرائیویسی ان دیز ہارڈ ٹائمز. مونی راؤ نے 4 سال کی شادی سے سیپریشن کو لے کر یہ بھی کہا وی ول چیریش آر فرینڈشپ. تھری ایڈیٹ سیکول ٹو فیچر ٹائم جمپ اینڈ نیو اسٹوری لائن ٹوسٹ. عامر خان نے فلم پر کام شروع کر دیا ہے. راجا شیوا جی نے باکس آفس پر زوردار کمائی کو جاری رکھا ہے. فلم کلیکٹس اوور 76 کروڑ روپیز ایٹ دا باکس آفس. اور ایکٹر رندیپ ہوڈا کہتے ہیں کہ ماڈرن فلمز میں بورنگ ایکشن ہوتا ہے وداؤٹ اینی ایموشن. یہ تھی ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کی تازہ ترین ہیڈ لائنس.
3: Genesis Markham. یہاں ملے لگژری کا فرسٹ کلاس ایکسپیرینس ود اے سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیلرشپ اور آپ کی اپنی لینگویج میں ایکسپرٹ سروس. لیز کریں بیوٹیفلی ڈیزائنڈ 2026 G70 صرف 1.9% سے, یا لیز کریں 2026 GV70 صرف 4.9% سے. آج ہی بک کریں ٹیسٹ ڈرائیو. وزٹ genesismarkham.ca لوکیٹڈ ایٹ Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16th तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: 10 meter. Bas inna ko yaad rakho. Tuhanu upparon langdiyan bijli diyan power lines to katto kat 10 meter dur rehna chahida hai. Ontario vich bijli to hon wali mautan da ik pramukh karan power lines han. Ate bina chhue vi tuhadi maut da karan ban sakdiyan han. Jekar tusi bahar kaam kar rahe ho ta upparon langdiyan power lines wal dhyan diyo. Apne aap nu ate apne upkarna nu inna to katto kat 10 meter दूर रखो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों सुनेहा esasafe.com/stop-look-live ते होर जानो।
0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्योकेयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 Cotral Boulevard, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। याद रखें, जब द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग। यू कैन वॉक इन, मेक अपॉइंटमेंट्स एंड फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है। दवाई आपको शिप कर दी जाएगी। 6477602779 6477602779 is the number for Kavya Homeo Care. Meeta ji, aapka swagat hai.
3: थैंक यू सनी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो।
0: आज इस स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक पर करेंगे बातचीत?
3: थैंक यू सनी जी। सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन किड्स, अमंग किड्स, छोटे बच्चों में। तो यहाँ पे किड्स की बात करें तो खास करके पेरेंट्स को, घर वालों को ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपके चाइल्ड को कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर टाइम इसका पता नहीं चलता है कि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम। आमतौर पर बच्चा कह के हम सारा निग्लेक्ट कर देते हैं इस कंडीशन को। सो बच्चों में भी एडल्ट की तरह मेंटल हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, बट जो छोटे किड्स हैं तो वो उसको डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं। कि चाइल्ड को अगर डिप्रेशन है तो वो एडल्ट्स की तरह सैड रहना या यू नो रोना उसकी बजाय ज्यादा इरिटेबिलिटी बताएगा कि चिढ़ रहा है, छोटी हर छोटी बात में वो चिढ़ रहा है। सो चिल्ड्रन में जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं उसमें से कुछ एक हम आज देखते हैं, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कि जब ये बच्चा ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है तो उसके नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हर छोटी बात में डरता रहता है, घर में अकेले नहीं रहना, कोई डार्क कमरा है तो वहां पे नहीं जाएगा, कोई एनिमल का डर है, तो ये सारी चीजों के साथ उसको एंग्जाइटी होने लगती है। अब एंजाइटी को आप नहीं पहचानते हो कि इसको ये इश्यू है, तो आगे जाके फिर क्या होगा कि रिपीटेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कुछ पहले हादसा हुआ था तो वो उसके माइंड से अभी तक जा नहीं रहा है। सोशल फोबिया है, स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, या कई बार छोटे बच्चों में भी पैनिक अटैक्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ADHD, जिसमें क्या होगा कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, होता है ये बच्चा, डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाना एंड हाइपर एक्टिविटी, तो ये चीज़ें ADHD वाले बच्चों में देखने को मिलती है। और ऐसे बच्चों को फोकस करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि घर पे भी प्रॉब्लम, स्कूल में भी प्रॉब्लम, और कहीं भी जाएगा तो उसके साथ फोकस करना वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। टिक के एक जगह पे बैठ नहीं सकता, तो ऐसे में उसके माइलस्टोन्स भी डिले होते जाते हैं, जैसे स्पीच डिले पाया जाता है इन बच्चों में, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कई बार ऑटिज्म जिसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जिसका पता भी अर्ली चाइल्डहुड में यूजली बिफोर द एज 3 पता चल जाता है कि इसके सिम्टम्स या सीवियरिटी भी वेरी करते हैं, कि कुछ एक बच्चे होते हैं तो वो माइल्ड फॉर्म में होता है, इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो कुछ एक बच्चों में मॉडरेट टू सीवियर ये होता है। और ऐसे में ये बच्चे को कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में दूसरे लोगों से प्रॉब्लम आती है। सो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और फिर ईटिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, मोटे हो जाने के डर से, वेट बढ़ जाएगा वो डर से बच्चे खाना अवॉइड करते हैं, अगर कुछ खा भी लिया तो उसके बाद वॉमिट कर देते हैं, या फिर कई बार ऑपोजिट कंडीशन होती है कि पूरा दिन वो खाते रहते हैं, और ये जो है कई बार सीरियस हेल्थ कंसर्न बन जाता है क्योंकि पूरा दिन खाने के साथ वेट के बारे में ये सोचते रहना या खाने के बारे में सोचते रहना, तो ऑब्वियसली ये उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि बाइपोलर या डिप्रेशन, तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सट्रीम मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, मोर सीवियर देन नॉर्मल मूड स्विंग्स, के जिस करके उसको सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, जिसमें रियलिटी में रहने की बजाय वो अपनी ही दुनिया में रहता है, और जो कंडीशन रियल में है ही नहीं वो सोच सोच के डरता रहता है, सफर करता है, और टीनेज से लेके 20s में ये कंडीशन कॉमन है। और इस तरह के डिसऑर्डर के साथ मूड स्विंग से लेके कोई भी चीज का डर या पैनिक अटैक्स हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर उसका हो जाना, या फिर दूसरों को हर्ट करना, सेल्फ हार्म, या फिर आप कह लें कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वेट लॉस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, स्पीच प्रॉब्लम्स, सो ये वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो है पाए जाते हैं। अब ऐसे में जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उतना जल्दी उसका बेनिफिट मिलेगा। सो इस तरह के कोई भी कंसर्न के लिए वी डू हैव ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी, एंड इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप जो है मिल सकते हैं अगर प्रॉपर एज में स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो ऑल ओवर कैनेडा अमेरिका में मेडिकेशन जो है हम मेल करते हैं, शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसका कवरेज भी प्रोवाइड करती है, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अपनी प्रिस्क्रिप्शन रीफिल करवानी हो, या जैसे कोल्ड फ्लू, एक्यूट कोई कंप्लेन हो गई, स्टमक फ्लू हो गया, छोटे बच्चों में टीडिंग वगैरह की मेडिकेशन, 1 week 2 weeks की मेडिसिन भी आके आप जरूर ले सकते हैं। एंड लोकेशन है हमारी एयरपोर्ट कॉटरेल की कॉर्नर पे, 10 Cottrell Boulevard पे, Unit 104 इन ब्रैम्पटन। मंडे टू सैटरडे रेगुलर आवर्स है क्लिनिक के, सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक।
0: बिल्कुल दोस्तों, बता दें काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाकोझा जी, 10 Cottrell Boulevard, Unit 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। इसका मेजर इंटरसेक्शन नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड है। क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 days a week, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। वॉक इन भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं, एंड खासकर जो हमारे लिसनर्स काफी दूर रहते हैं, आप फोन पर कंसल्टेशन करें, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। 6477602779, 6477602779। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया,
3: थैंक यू सो मच।
4: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar. also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com. Wood by Nave और Denison Street, Markham पर.
2: Doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Ja.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने 2000 से 6000 डॉलर US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum 2000 to 6000 डॉलर आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040.
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. दिस इज बॉलीवुड फ्राइडे और बॉलीवुड फ्राइडे पर हम माधुरी दीक्षित का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और माधुरी के सुपर हिट गीतों से आपको एंटरटेन कर रहे हैं. आपकी जितनी रिक्वेस्ट आ रही है, आई एम गोइंग टू प्ले देम वन आफ्टर अनदर ऑल द वे टिल 2 PM. और जहां पर माधुरी दीक्षित की बात करते हैं, करियर शुरू हुआ था अबोध व्हेन शी वाज अ टीनेजर, और उसके बाद एक फिल्म आई थी उनकी हिफाजत विद अनिल कपूर विच डिड नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन तेजाब ने सब कुछ बदल दिया. बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मिला आफ्टर तेजाब, एंड दैट वाज माधुरी दीक्षित. देन शी डिड हिट आफ्टर हिट, ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर. इनफैक्ट 90s के वक्त में ऐसा भी एक टाइम आ गया था जहां पर माधुरी दीक्षित वाज कमांडिंग एंड डिमांडिंग मोर मनी देन सम ऑफ द बिगेस्ट सुपर स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री. फिर उसके बाद शादी हुई, चले जाती हैं डेनवर कोलोराडो, और फिर वापसी करती है माधुरी दीक्षित इन 2007 विद आजा नचले. एक प्यारी सी फिल्म, प्यारा सा गीत आपके लिए बिल्कुल हमने लाइनअप कर दिया है. बाकी रिक्वेस्ट जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे प्ले करते रहेंगे. और सुनते रहिए साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो ऑन CMR 101.3 FM 12 to 2 PM मंडे टू फ्राइडे. एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी राइट बैक.
5: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
4: वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
5: वेलकम माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी। एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं। देयर ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर इज 9054502828। और देखते हैं कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की क्या धमाकेदार डील्स लेकर पहुंचे सुल्तान जी। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर सुल्तान जी, आपका स्वागत है।
6: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
5: सुल्तान जी। सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की।
6: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया, क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस, जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं। तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो है ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 9

0: 999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से, 55 इंच सिर्फ 399 में या 65 इंच सिर्फ 699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828 हमारा नंबर है, या BramptonAppliances.com, ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 905-450-2828 जी।
1: जी 905-450-2828 जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं। अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं। जी सुल्तान जी
0: बिल्कुल जी, बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है, मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का तो $5,000 वाला $29.99 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक, $2,000 आप थ्री पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 मंथ में पे करना है। अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज वो भी 48 इंच का या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव, बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर, $16,000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9,900 में, 9,900 में मिलेगा 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ये प्लैटिनम सीरीज है, प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2,500 वाला ओनली 1799 में। इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी। विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें, बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी 905-450-2828। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला 1099 में पेयर मिल जाएगा वॉशर ड्रायर दोनों। और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं वो भी निंजा क्रिस्पी, निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त, प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी, हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में, जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशंस हैं, जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828 जी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
0: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देन के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना, वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040, दैट इज 6476280040।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है। प्लीज डोंट वॉक इन। 9052061008। इस सेगमेंट को ध्यान से सुने। बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। मोहम्मद साहब आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सनी जी, हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी। जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है। देखें, हर बंदा चाहता है कि वो ईजी वे से पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो। देखिए, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है। अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें हम, इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो और उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते। ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है। और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है। और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट। और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर। देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा। अब वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते।
0: Exactly.
1: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं। आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं। देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते। तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें, माइंड ब्लोइंग. अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए. तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें. यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. हमारा फोन नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी.
0: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है. और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा. फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम. 905-206-1008, 905-206-1008. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अप्रिशिएट,
0: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. 905-206-1008.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा and won by Vaughan Mills.
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
4: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
5: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
4: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
6: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। Clear Optical by Varun Kanda।
7: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street,
8: Markham पर। Doing business your way।
7: Member of Wayne's Auto Group।
9: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे Day 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
2: Doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्गेज दी लोड़ है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो,
4: तब फिक्र क्यों कर दे हो। नीलम सिद्धोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
3: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
4: इना कुल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
3: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
4: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धोव नो
3: 6477398710, license number M200034504.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Dr. Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info. एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से. अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें. कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन. 647-866-1086 राज जोशी, नाम ही काफी है.
4: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट पॉल सिक्योरिटी.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.

0: 女子。
1: Welcome my friends, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं Brampton TV and Appliances 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chinkusi and Brampton TV Appliance Laundry के सुल्तान जी हमारे साथ हैं. They're open 7 days a week, 11 a.m. to 7 p.m. and the number is 905-450-2828 और देखते हैं कि Victoria Day long weekend की क्या धमाकेदार deals लेकर पहुंचे सुल्तान जी. सबसे पहले TV section की ओर सुल्तान जी आपका स्वागत है.
2: Thank you very much जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की.
2: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं. तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो हैं ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 999. सिर्फ 999 में आप 85 इंच का सैमसंग टीवी ले सकते हैं जिसकी रेगुलर $1800 प्राइस थी. सेल पे भी ये 1399 का बिकता है लेकिन 999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. 55 इंच सिर्फ 399 में या 65 इंच सिर्फ 699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905-450-2828 हमारा नंबर है या BramptonAppliances.com, ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 905-450-2828 जी
1: 905-450-2828 जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं. अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं. जी सुल्तान जी.
2: बिल्कुल जी, बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है, मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का तो $5000 वाला 2999 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक. $2000 आप थ्री पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 months में पे करना है. अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज वो भी 48 इंच का या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है. हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव, बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटरटॉप फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर $16000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9900 में 9900 में मिलेगा 6 months नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर एनर्जी सेवर एनर्जी स्टार ये प्लैटिनम सीरीज है, प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2500 वाला ओनली 1799 में. इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी. विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें, बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी 905-450-2828. टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1700 वाला 1099 में पेयर मिल जाएगा वॉशर ड्रायर दोनों. और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं वो भी निंजा क्रिस्पी, निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त, प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी, हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में, जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशन है. जरूर विजिट करें 801 Govade Drive West, just east of Chinkuzi on Govade Aji, Brampton TV and Appliances, 905-450-2828, 905-450-2828.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी.
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी. 905-450-2828, Brampton TV and Appliances.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: एक और कहानी मेरी जुबानी। जंगल में गर्मी के मौसम में एक शेर अपने गुफा से निकला क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। उसको सामने एक खरगोश दिखा, उसने तुरंत उसको अपने पंजे में कैद कर लिया। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ सोचा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। इसी बीच शेर को थोड़ी दूर में भागता हुआ एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही शेर का दिल गदगद हो गया और उसने तुरंत खरगोश को छोड़ के हिरन के पीछे भागने लगा। आहट पाते ही हिरन तुरंत घने जंगल में गायब हो गया। इसी बीच खरगोश भी वहां से भाग चुका था। वापस आकर खरगोश को वहां ना पाने पर शेर को काफी अफसोस हुआ। कहानी की सीख यह है दोस्तों, जितना अपने पास में हो उससे संतुष्ट होना चाहिए। दूर की चीजों के पीछे भागने से अपनी चीजें भी कई बार खो जाती हैं। Stay blessed. Life I refuse to give up.
2: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: Skylake Immigration।
2: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which serve 30-plus locations. Se serve karte hai, 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
3: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
4: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लियावे।
3: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
5: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
2: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. बेस्ट साउथ एशियन क्लोदिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोदिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. मैं मोबाइल हूं दोस्तों, जी हां मैं मोबाइल हूं। मैं आपका बचपन चुरा लूंगा, आपकी जवानी भी चुरा लूंगा। आप जल्दी ही बूढ़े हो जाओगे, इसलिए मेरा इस्तेमाल सोच समझ के करना दोस्तों। मेरे फायदे तो हैं मगर नुकसान भी। ना आपके पास खेलने का टाइम छोड़ूंगा, ना आपके पास कसरत करने का, यहां तक कि आपकी कार्यक्षमता भी आधी कर दूंगा। आप काम कम करेंगे, मुझे ज्यादा देखेंगे। मेरा उपयोग दोस्तों सावधानी से करना। मैं आपको उन लोगों से दूर कर दूंगा जो आपके बहुत करीबी हैं। जैसे जैसे आपको मेरी लत लग जाएगी, वैसे वैसे आप पर मैं हावी होता जाऊंगा। मैं मोबाइल हूं दोस्तों, सबसे पहले आपकी आंखें खराब कर दूंगा, फिर आपकी नींद चुरा लूंगा, धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य खराब कर दूंगा। मैं आपको पूरी तरह निठल

की मंडे यानी नेक्स्ट वीक मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
0: ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया। आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा पूरे 4 बजे तक बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ, और आपके फ्राइडे को सही मायने में फैंटास्टिक फ्राइडे बनाया जाएगा। और पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब थोड़ा वक्त है रिलैक्स करने का, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वक्त है, क्योंकि अब जो है मंडे को भी छुट्टी है, तो हम सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं और ज़रा ज़्यादा ही वीकेंड मोड में आ चुके हैं। और आज का जो वाइब है दैट इज़ एब्सोल्युटली सिंपल, लेस स्ट्रेस, मोर म्यूज़िक एंड मोर स्माइल्स। और कहते हैं कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी अपने आप में खूबसूरत बन जाती है। टेंशन को थोड़ा साइड में रखिए दोस्तों, नॉन स्टॉप मस्ती के लिए तैयार रहिए और शुरुआत करते हैं आज के शो की धमाकेदार गाने के साथ। एक बार फिर से आज कुछ अलग ही स्टाइल रहेगा, क्योंकि आज बर्थडे है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। मस्ती की रेलगाड़ी पर एंजॉय।

0: दोस्तों, माधुरी दीक्षित अपने आप में सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, एक एरा है, एक फीलिंग है, एक इंस्पिरेशन है, और उनकी एलिगेंस, ग्रेस एंड पॉजिटिविटी उनको ट्रूली टाइमलेस बनाते हैं। तो आज उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। कोई भी गाना अगर आप इंजॉय करना चाहें उन पर फिल्माया गया, देन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 4165930055। और इसके अलावा किसी अपने तक कोई भी मैसेज आप पहुँचाना चाहें, किसी का स्पेशल डे है सेलिब्रेट करना चाहें, डू गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर। इसके साथ साथ हम थोड़ी देर में आपको आज का टॉपिक भी बताएंगे, उसके लिए भी आप लोगों का आज हमें फिर से चाहिए पूरा पूरा साथ, और उस टॉपिक के बारे में भी आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करेंगे इसी स्टूडियो के नंबर पर 4165930055। फ्राइडे मे 15th है आज तारीख, और देखिए व्हाट अ वंडरफुल वेदर आउटसाइड टू सेलिब्रेट द लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड। 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, सनशाइन बाहर है, बादल बहुत थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। आज का हाईएस्ट 20 डिग्री जा सकता है 3 बजे, और आज का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो जा सकता है रात के 11 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी दोस्तों, तो तैयार हैं क्या आप लोग आज का शो इन्जॉय करने के लिए? आई एम श्योर यस। तो बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें, बहुत सारे डील्स और बहुत सारे मेहमानों के साथ हम हुए हैं हाजिर। एक बार फिर से दीजिए एक बार फिर से शालिनी का साथ। आप सीधे हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं 4165697812 4165697812। गुड आफ्टरनून
1: शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी, स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: Jamming as much variety into your workday as possible.
5: Radio Resync complete.
6: Hit music.
7: Hit after hot hit.
8: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20.26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.

दोस्तों, शादी का सीज़न हो, फैमिली फंक्शन हो या घर की महफिल हो, ये एक ऐसा गाना है जो हर सेलिब्रेशन की जान बन जाता है और बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड वेडिंग सॉन्ग का अब जो है नंबर आया है, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। और ये गाना हम इसीलिए आज बजा रहे हैं, वैसे भी बजाते हैं लेकिन आज ऐसे भी बजा रहे हैं क्योंकि आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है। और ये जो गाने हैं इसमें माधुरी का डांस सिर्फ डांस नहीं है, परफॉर्मेंस आर्ट है और हर मूव अपने आप में एक स्टोरी बन जाता है और हज़ारों लाखों दिलों की धड़कन है माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड में डांस एक्सप्रेशन और ग्रेस को नई पहचान दी उन्होंने, एक ऐसा नाम जो 90s की हार्टबीट था और आज भी उतना ही प्यार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का आज बर्थडे है और इनका सफ़र शुरू हुआ था एक बहुत ही छोटे से रोल से, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो एक ट्रेंड कथक डांसर हैं और यही ट्रेनिंग उनकी हर परफॉर्मेंस में साफ नज़र आती है, हर मूव में परफेक्शन, हर एक्सप्रेशन में इमोशन। शुरुआत में लोगों की तरह उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, उस फिल्म के बारे में भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, आपकी नजर।

0: जी दोस्तों, धक धक क्वीन माधुरी दीक्षित का आज बर्थडे है और ये बहुत प्यारा सा गाना आप ही की फरमाइश पर हमने आपकी नजर किया मस्ती की रेलगाड़ी पर सीएमआर एफएम 101.3। और फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन हो और हम डील्स नहीं लें मिडा फर्नीचर से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो चलिए, पवन जी ने कल प्रॉमिस किया था कि आज की डील्स कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल होंगी लॉन्ग वीकेंड के चलते, तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। पवन जी वेलकम, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मैंने कल कहा था कि हमारी डील्स वाव करने वाली होती हैं।
0: yes.
1: और ये सारा उसका क्रेडिट जाता है आप बहन भाइयों को, मैं तो कुछ भी नहीं था, मतलब आपने कहते ने वही नाम भी दिया, काम भी दिया, रोटी रोजी भी दी, साथ भी दिया, तो सबसे बड़ी बात मैं इमोशनल हो जाता हूँ, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बड़ों का प्यार मिला, छोटों का। जब कोई छोटी बच्ची आके कहती है ना, अंकल मैंने तो खुद से लेना है, अंकल आपका रेडियो सुनती हूँ, आप बुलाते हैं, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, या कोई बड़ा भाई आके बड़ी बहन कहती है देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैंने डिस्काउंट भी लेना है, पर आई कोई बात नहीं भाई, तुम कमाओ भी सही, हमें क्वालिटी अच्छी दो, तो वो प्यार पाके ना आप, मतलब संसार की हर चीज उसके आगे फीकी है जब आपको ये प्यार मिलता है। तो उसका प्यार देखो, प्यार में प्यार जब मिलता है, जब आप पानी डाल रहे हो किसी पौधे को और पौधा हरा रह रहा है और ग्रो कर रहा है, तो देखो वो पानी की सब ताकत है ना, तो आपका प्यार रूपी वो जो पानी है हमें वो आप दे रहे हैं, और हमारा वो जो पौधा सूखा था उसे हरा भी हुआ और ग्रो भी हुआ, और एक से पांच लोकेशन तक हम पहुंचे। चलते हैं प्रॉमिस की तरफ। अभी मैंने लैपटॉप पे डाला जब आपकी कॉल आई।
0: अच्छा।
1: ओल्टन, हेलो
0: जी पवन जी, आप ऑन एयर हैं?
1: ओल्टन सोफा हमने डाला है
0: जी,
1: ओल्टन सोफा हमारे आपके लिए हमने डाला।
0: ओके।
1: आप गूगल करेंगे, 9 पिक्चरें आपके सामने आती हैं।
0: ओके।
1: तो हमारा स्टोर आप सबसे कम प्राइस आती है, ये है आपका प्लान।
0: ओह नाइस।
1: 99 का लगा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है कि अमंग तक हो सकता है 50 स्टोरों पे लगा हुआ हो, लेकिन अमंग वो जो 10 स्टोरों के नाम आपके सामने आते हैं उसमें मिड्डा फर्नीचर का जो सोफा है वो आपका वो चला जाता है, आपके वो नीचे चले जाते हैं, तो हमारी प्राइस कम है। और जो अभी आपने धक धक माधुरी दीक्षित का जन्मदिन कहा ना, तो फिर हमने ये भी है, एक गाना मैंने उनका सुना हुआ है, राज की बात बताएं, है ना ऐसा एक गाना?
0: हाँ।
1: एक एक फिल्म में राज की बात
0: राज
1: बताएं,
0: की बात बताएं कि उनका
1: बोला या। तो हम वो राज की बात क्या बता रहा हूँ कि जो वेबसाइट पे जो भी प्राइस लगी हुई है उससे भी हम कम कर देते हैं जब स्टोर पे आप आते हैं। तो ये देखो गाने के साथ कैसे रेलिवेंट हो गया है, तो डील भी है, बाजार से कंपैरिजन भी है, और राज की बात भी है कि इन स्टोर आपको और सस्ता भी कर देते हैं। चाहे हमें कैनेडियन मेड सोफा लव सिटी 899 का लगाया हुआ है, ब्रांड नेम फर्नीचर आपके लिए दे रहे हैं, मैट्रेस पे 4 महीने की स्लीप गारंटी और 365 दिन की स्लीप गारंटी दे रहे हैं, सॉलिड वुड का आपको फर्नीचर दे रहे हैं, मेपल वुड का फर्नीचर दे रहे हैं, मेपल वुड की डाइनिंग टेबल दे रहे हैं, आपके घर में अच्छे फर्नीचर की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्राइस पॉइंट वाला चाहिए हमारे पास भी है, 299 का सेक्शनल बाजार में 399 का मिलता है, उसमें भी हम कम करते हैं, लेकिन हमारे जो आप कस्टमर है मिड टू हाई एंड आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको बाजार से अच्छा फर्नीचर चाहिए, बाजार से डिफरेंट फर्नीचर चाहिए, बाजार से प्राइस कम चाहिए, तो मिड्डा फर्नीचर पे आए, आप अपने स्टोर पे आए, 416-901-2810 हमारा नंबर है, और मिड्डा MIDHA furniture.com पे जाके भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगले लिंक में फिर और बहुत सारी डील भी आपको बता दी जाएंगी।
0: थैंक
1: यू वेरी मच जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे हम और फिर जुड़ेंगे। मिड्डा furniture.com दोस्तों विजिट करें, 416-901-2810 डेफिनेटली धक धक करने लगा। लेट्स हियर इट। पवन जी आप क्या गाना गाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं?
1: नहीं, मैंने तो सिर्फ वही जहाँ आपने माधुरी जी का नाम लिया और मुझे वो याद आ गया, तो वो मैंने कहा राज की बात वैसे ही बताता था कि हम प्राइस थोड़ी सी कम कर लेते हैं बहन भाइयों वाली, तो जस्ट इस एक कोइंसिडेंस है कि आज उनका जन्मदिन भी है,
0: बात है।
1: बहुत कहते हैं ना उम्दा अदाकार है,
0: बिल्कुल
1: मतलब अपने ब्यूटी क्वीन है, पर्सनैलिटी है, समाज के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत अच्छी फिल्में दी हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे तो फिर आपने याद करा तो आई विश हर एज ए हैप्पी बर्थडे एज वेल, और उनके फैंस को भी बहुत बहुत मुबारक है। ये प्यार यही तो है, यही तो प्यार ही तो बना रहना
0: सही
1: चाहिए।
0: बात है।
1: तो थैंक यू वेरी मच.
0: डेफिनेटली थैंक यू सो मच पवन जी. और माधुरी दीक्षित का अगला गाना सुपर हिट गाना जरूर आपकी नजर हम आपकी करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3. और चलिए आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा अप्रोप्रिएट है इस लॉन्ग वीकेंड को देखते हुए. और ये जो टॉपिक है वो आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. जी हाँ, टॉपिक सुनने से पहले यश विंडोज़ एंड डोर्स के बारे में ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज़ एंड डोर्स ऑल ओवर ओंटारियो सर्विसेज देते हैं. खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ख़ुद ही इनकी जो टीम है वो प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. कोई मिडल मैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक. ग्रेट लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है. इसके अलावा अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शंस देख रहे हैं तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही अच्छी है. ग्रोइंग टीम के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं. यश विंडोज़ एंड डोर्स 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600. और इसके साथ साथ दोस्तों देओल ट्रैवल से आप ज़रूर बात करें और इसी लॉन्ग वीकेंड में आप जो है अपनी टिकट्स बुक करा लें, क्योंकि मई के महीने में दो बहुत ही बढ़िया डील्स लगी हुई हैं. एक तो टोरंटो से दिल्ली या टोरंटो से मुंबई $820 में वन वे, और दूसरी जो है अमृतसर जा सकते हैं आप वन वे मई के महीने में 960 में दो बैग्स के साथ. नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है, लिमिटेड सीट्स 1490. एंड टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सितंबर से अक्टूबर तक राउंड ट्रिप लगा है $1540 दो बैग्स के साथ. लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है. एटोबिको ब्रैम्पटन दो लोकेशन से सर्व करते हैं देओल ट्रैवल आपको 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. ऑल राइट, सो आज का टॉपिक है कि लॉन्ग वीकेंड की जब भी हम बात करते हैं तो लॉन्ग वीकेंड में आप क्या करना पसंद करते हैं, या मैं कहूँ कि सबसे डेंजरस सेंटेंस कौन सा होता है लॉन्ग वीकेंड का. चलो बस 5 मिनट के लिए लेट लेते हैं और फिर आँख खुलती है 4 घंटे बाद. क्या ये स्टेटमेंट होता है? आपसे मेरा सवाल ये है कि सबसे लेज़ी हैबिट क्या होती है लॉन्ग वीकेंड में हम लोगों की? लेट उठना, सेम कपड़ों में पूरा दिन निकालना, एक्स्ट्रा खाना खाना, या पूरे दिन रील्स चलाना? आपका ऑनेस्ट आंसर चाहिए हमें. कौन सी ऐसी लेज़ी हैबिट है जिससे आप भी खुद घबराते हैं कि ये लेज़ी हैबिट मेरे में नहीं आए, लेकिन फिर वो आ ही जाती है? तो टेल मी अबाउट ऑनेस्टली दैट वन लेज़ी हैबिट दैट यू वांट टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स बट यू एंड अप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, स्पेशली लॉन्ग वीकेंड पर. तो ज़रूर बताइएगा. हमारी लाइन्स आर ओपन नाउ 416-593-0055. छोटा सा टाइनी सा ब्रेक और उसके बाद चलते हैं आज की खबरों की तरफ. Stay tuned.
2: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई 4 लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा.
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने.
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ. ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही. मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810. Midda Furniture.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: पूजा पाठ।
1: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
2: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक छत के नीचे।
1: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
2: और विजिट पूजाहट.com।
0: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
1: जय श्री राम।
3: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 4378296023। इट्स 4378296023। मास्टर धनिक महाराज।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
2: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE दौरे पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन का चीन दौरा पूरा कर वापस रवाना हो गए। उन्होंने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अंतिम दौर की बातचीत की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। उधर भारत में मौसम विभाग ने बताया, मॉनसून केरलम में 26 मई को दस्तक दे सकता है। आमतौर पर भारत में मॉनसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है। देश में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए। प्रमुख शहरों में CNG भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। नए दाम आज 15 मई से ही लागू। और उधर एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट द सरयू में जमीन खरीदी।
3: दोस्तों अब नजर डालते हैं आज की ताज़ा लोकल खबरों की तरफ। मिसिसागा से इस वक्त की बड़ी ट्रैफिक अपडेट। OPP के अनुसार हाईवे 403 के ईस्ट बाउंड लेन्स मेविस रोड और ह्यूरेंटेरियो स्ट्रीट के बीच बंद कर दिए गए हैं। एक डंप ट्रक ने ह्यूरेंटेरियो ओवरपास को टक्कर मारी है। फुटेज में ट्रक का बेड ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजिशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। एडिशनल लेन क्लोजर्स की भी संभावना है। फिलहाल इंजरीज की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ड्राइवर्स को एरिया अवॉइड करने की सलाह दी गई है। टोरंटो ने कल रात ग्लोबल स्पॉटलाइट कैप्चर कर लिया। ड्रेक ने एक साथ 3 एल्बम्स आइसमैन, हबीबटी और मेड ऑफ ऑनर सरप्राइजली ड्रॉप कर दिए हैं। CN टावर के आसपास फैंस की भारी भीड़ नजर आई। वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े। स्ट्रीम में टोरंटो के लैंडमार्क्स जैसे सिटी हॉल, ब्रास रेल, सोटो सोटो और UFT स्कारब्रो भी नजर आए। पॉलिटिशियंस से लेकर एथलीट्स तक हर तरफ इस रिलीज की चर्चा रही। एक हेल्थ अपडेट। ओंटारियो में हैंटा वायरस सिचुएशन पर नजर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओंटारियो अब 10 एसिम्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग कर रहा है। 3 हाई रिस्क ट्रैवलर्स स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहेंगे। 7 लो रिस्क कॉन्टैक्ट नेगेटिव आने पर आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग जारी रहेगी। और ये आउटब्रेक एक क्रूज शिप से जुड़ा हुआ है जहाँ पहले ही कई केसेस सामने आ चुके हैं। टोरंटो पुलिस सर्विस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि तरह तरह के रेसिज्म के एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस सर्विसेज बोर्ड ने इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन की मांग की है। उधर फॉर्मर होमसाइड डिटेक्टिव ने दावा किया है कि उन्होंने फोर्स में एंटी ब्लैक रेसिज्म देखा है, ओपनली उन्होंने कहा, और साथ ही विसल ब्लोअर्स को बैकस्लैश जो है झेलना पड़ता था। इस मामले ने पुलिसिंग कल्चर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दे दें अंत में वेदर अपडेट। आज टोरंटो में मौसम रहेगा शानदार, क्लियर स्काई के साथ, हाई ऑफ 20 डिग्रीज, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर रह सकता है रात के 11 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आउटडोर प्लान्स के लिए है आज का दिन अ परफेक्ट डे। सुनते रहिए शालिनी को 4 बजे तक CMR FM 101.3 पर। गुड आफ्टरनून।
1: News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
3: 01484-0157।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
3: जी दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन इन दिस आफ्टरनून सर राइड ऑन CMR FM 101.3। मैं हूँ शालिनी, आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और अब जो है लॉन्ग वीकेंड की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। लॉन्ग वीकेंड मीन्स एंटरटेनिंग आर ओन पीपल, ब्रिंगिंग देम होम, और समटाइम्स दे जॉइन अस इन आर ऑफिस एज वेल। और अब तो मौसम भी खुल रहा है, अब तो एंटरटेनमेंट ज़रा ज़्यादा होगा। तो भाई आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है किसी भी आइडिया की कमी नहीं है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ और डोर्स आप तक पहुँचाए जाते हैं। यश विंडोज़ एंड डोर्स और ऑल ओवर ऑन्टारियो सर्विसेज देते हैं एक्सेप्शनली ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट्स आपकी नज़र किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर बता दूं, 416-732-3600, 416-732-3600। हमारे साथ धर्म जी जुड़ने जा रहे हैं। धर्म जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
4: एकदम कुशल मंगल। मैं आपको और सारा श्रोताओं को झुककर नमस्कार करता हूँ।
3: नमस्कार आपको भी धर्म जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और धर्म जी, मैं चाहूंगी कि अब जो लॉन्ग वीकेंड है इसमें हमारे लिसनर्स अच्छे अच्छे प्लान्स बना रहे हैं, तो उनके प्लान में नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए यश विंडोज एंड डोर्स को कॉल करने की और अपने घर या ऑफिस को ब्यूटीफाई करने की। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सर्विसेज के हवाले से?
4: पहले तो मैं आपको सब सारा श्रोताओं को बताऊं कि हम सैटरडे भी खुले हैं, संडे भी खुले हैं, मंडे भी खुले हैं। खाली अपॉइंटमेंट बना के आना पड़ता है। बाकी हमारी फैक्ट्री पर आ सकते हैं, विजिट करने के लिए कॉल कर सकते हैं। अक्रॉस ऑन्टारियो में आपको विंडो डोर की जरूरत है, जस्ट कॉल अस और हम आपके पास पहुंच जाएंगे और फ्री एस्टिमेट देंगे।
3: अच्छा ठीक है, दैट्स वंडरफुल। तो एस्टिमेट धर्म जी बिल्कुल फ्री होता है और जाकर आप दे सकते हैं। मतलब आपकी जो टीम है, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या चाहे प्रोजेक्ट बड़ा हो, या पूरे घर की विंडोज एंड डोर्स कराने हो, या एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो, दो तीन विंडोज या डोर्स कराने हो,
4: आप एक विंडो बाय करने जाते हो या एक ग्लास बाय करने जाते हो, 1000 विंडो आपके लिए हमारे लिए इतने ही सेम रिस्पेक्टेड हो।
3: क्या बात है,
4: कोई चेंज नहीं।
3: वंडरफुल, यश विंडोज एंड डोर से धर्म जी की आवाज। दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारे शो पर मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। और अब जो असली बात है बैतरम जी की, बड़ी ख़ास है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं। हम हमेशा बात करते हैं, मैं रोज़ाना जैसे लिसनर्स तक पहुंचाती हूँ कि क्या बढ़िया स्टाइल है, क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, और इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी है। मैं चाहूँगी आप अपने लफ्ज़ों में बताएं हाउ योर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
4: और फर्स्ट ऑफ ऑल, यश विंडोज एंड डोर 2012 से विंडो एंड डोर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
3: जी।
4: ऑन्टारियो में पहली कंपनी ऐसी है जो 95% रिटेल करती है। रिटेल का मतलब ये होता है कि घर घर जाके विंडो बेचती है।
3: नाइस, क्या
4: और
3: बात।
4: 5% ही होलसेल करती है। बाकी की सारी कंपनियां, बाकी की 95% कंपनियां ऐसी हैं जो 95% होलसेल करती है और 5% रिटेल करती है। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। जो जो होलसेल वाली कंपनियां होती है वो एस पर जो होलसेलर्स होते हैं 11,000 डीलर, वो डीलर के हिसाब से अपनी विंडो बनाती हैं कि मेरे कस्टमर ने इतने ही पैसे पे किए हैं तो मेरी विंडो इसी तरह की ही बनाओ। हमारे वहाँ ये सारे चक्कर नहीं चलते।
3: क्या बात है,
4: इसलिए हमारी विंडो की फ्रेम की वारंटी 30 साल है। ग्लास की वारंटी अकेली ऐसी कंपनी है जो ग्लास लोई 366 बाय डिफॉल्ट दे रही है।
3: नाइस।
4: बाकी ये ग्लास लेने के लिए आपको दूसरी कंपनी में अपग्रेड ऑप्शन लेना पड़ता है।
3: अच्छा।
4: तीसरी चीज है कि जो मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम है, जो छोटा बच्चा या सीनियर इजीली खोल पाएंगे, बंद कर पाएंगे, और वो भी 1-2 साल या 5 साल की वारंटी नहीं है, उसमें भी पूरी 30-year वारंटी विद द लेबर है।
3: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। और आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है धर्म जी, तो कोई मिडल मैन भी नहीं रहता, सीधे आपके इंस्टॉलर्स आकर इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी नहीं होता कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि यहाँ से ले आए और वो इंस्टॉल करने आए, तो इंस्टॉलर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है।
4: हमारे अक्रॉस ऑन्टारियो में 34 इंस्टॉलर्स हैं हमारे।
3: क्या बात है,
4: इसमें रिटेल एंड होलसेल, रिटेल एंड इसमें जो कमर्शियल होते हैं, और जो हमारा एवरीडे कस्टम हाउस होता है, तो कस्टम हाउस के लिए हमने अलग अलग इंस्टॉलर की टीम रखी हुई है। रिटेल के लिए हमने अलग इंस्टॉलर की टीम्स रखी हुई है, तो वो अक्रॉस ऑन्टारियो में हमारे इंस्टॉलर विंडो जो हम बनाते हैं, हमारे सारे सर्टिफाइड इंस्टॉलर विंडो इंस्टॉल करते हैं।
3: क्या बात है, वंडरफुल। तो अब धर्म जी, अगर कोई आपकी ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा बनना चाहे, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहे आपको ज्वाइन करके, तो व्हाट आर द ऑप्शंस?
4: बहुत अच्छी बात कही आपने मैडम कि पूरे ऑन्टारियो में फ्रेंचाइजी ऑप्शन खुल चुकी है। okay. अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस मैन बनना चाहते हो या बिजनेस वुमन बनना चाहते हो, आपको विंडो में सेल्स के सिवा कुछ नहीं करना, न तो आपको मेजरमेंट लेनी है, न तो आपको इंस्टॉलेशन करनी है, न तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको आपके टाउन के अंदर ही रहना है जहाँ आपका शोरूम होगा, और वो शोरूम को आपको हैंडल करना है और पूरे आपके टाउन का सारा सेल्स करना है। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना, इवन दो आपको 90% तक नेट प्रॉफिट का आप हिस्सा बनने बन सकते हो आप।
3: लुक एट दैट, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट बिजनेस सेंस। तो दोस्तों, आई एम श्योर यू आर रेडी टू टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी, और आप धर्म जी से बात कर लीजिए राइट अवे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे इनकी सारी फ्रेंचाइजेज जा रही हैं। यश विंडोज एंड डोर्स, 416-732-3600, 416-732-3600। धर्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड।
4: यू टू मैम, थैंक यू वेरी मच,
3: बाय बाय।

0: जी दोस्तों, और माधुरी दीक्षित का बर्थडे है आज, और ये गाना आपकी नज़र किया। और वो जो फिल्म के बारे में मैं बता रही थी ना, उस फिल्म का नाम था तेजाब। ये वो फिल्म थी जिसने रात और रात माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बना दिया, और हर तरफ जो है उन्हीं के चर्चे होने लगे। तो आज बर्थडे है धक धक गर्ल का, और इनको हम डेडिकेट कर रहे हैं आज काफ़ी सारे गाने। और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ दोस्तों कि इनके गानों में एक तरह की मस्ती होती है, रोमांस होता है, टीजिंग होती है, फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिलीज़ भी बहुत सारी इन्वॉल्व रहती हैं, और फैमिली ओरिएंटेड फिल्में, फैमिली ओरिएंटेड जो हैं ये जो है गाने, फिल्में, डांस, सब कुछ एक साथ नज़र आता है माधुरी दीक्षित के जो भी एक्ट करती हैं, जो भी डांस करती हैं। तो यू कैन वॉच विद द होल फैमिली। सो वेल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों शो में, और अगला गाना बहुत जल्दी इन पर फिल्माया गया, आपकी नज़र करते हैं। फिलहाल बता दें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। घर हो या बिजनेस, आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आप कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम है, बिल्कुल फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। अपनी आउटडोर स्पेस को बहुत ज़्यादा सुंदर, सेफ एंड फंक्शनल आप बना सकते हैं। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790। और भाई, अब जब लॉन्ग वीकेंड आया है तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सनशाइन में भी आराम से जा सकें, और हम मूवीज़ भी घर में आराम से देख सकें, और अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी लाएं, और सबसे पहले अपने लिए गिफ्ट लेकर आएं। और जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम जब भी फैमिली की बात करते हैं तो हम कोई भी चीज़ लाते हैं अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, राइट? तो आप अगर जाते हैं, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है कैनडा ऑप्टिकल, तमाम लोकेशंस हैं, हर तरफ जहाँ भी नज़र घुमाते हैं वहाँ पे कैनडा ऑप्टिकल की लोकेशन नज़र आती है। वहाँ पर जाइए और मस्ती की रेलगाड़ी का नाम लीजिए। वंडरफुल सी डील आप अपने और अपने अपनों के लिए लेकर आ सकते हैं इस लॉन्ग वीकेंड। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वन एंड ओनली अश्विनी कैंडा जी। अश्विनी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन आपका एक और शुक्रिया कि इतने प्यारे ढंग से आप हमारा मैसेज सब तक पहुंचाते हैं।
0: थैंक यू।
1: पीपल कम एंड टेल अस दैट शालिनी जी का प्रोग्राम सुनकर आए हैं, उनका एंजॉय करते हैं जब भी सुनते हैं। सो दिस मेक्स मी फील वेरी गुड दैट वी आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री।
0: हाउ नाइस अश्विनी जी, एंड दैट्स व्हाई वी फील वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन बोर्ड। और आपसे जब भी बातचीत होती है, एक तरह के स्टाइल आइकॉन हैं आप खुद अपने आप में। और जब कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज लोगों को दे रहे हैं तो आप में खुद भी थोड़ा बहुत स्टाइल होना चाहिए। अगर आप में स्टाइल नहीं है तो आप वो चीज लोग क्यों लेंगे आपसे? तो फर्स्ट दे लुक एट यू, दे गेट इम्प्रेस्ड, एंड देन दे गो फॉर ग्लासेस।
1: थैंक यू शालिनी जी। अगेन देखिए, हमारे पास हर तरह की प्रमोशंस तो चलती रहती हैं। ये लॉन्ग वीकेंड भी है, और बताना चाहूंगा कि इफ यू आर एनीबॉडी लुकिंग फॉर कार्टियर ग्लासेस, कस्टमाइज्ड लेंसेज, diamond cut design lenses, if somebody looking for chrome heart, the top of the line, looking for Chanel, Bulgari, Prada, Dita, Burberry, as a top brands, if you're looking for meta glasses, jo ki Ray-Ban ke bhi hain, Oakley wale bhi banate hain, we've got them all in stock. Aiye, take a look at the collection we have. We have all these brands available within our company. You could save lots of money for yourself because we have so many specials happening. Uske saath saath dekhiye lenses hain hamare paas. Chahe aapko Nikon ke lens chahiye, aapko Zeiss ka chahiye, Essilor chahiye product. ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जहाँ पे ये लेंसेज वगैरह मिलते हैं, क्वालिटी के लेंस की मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एंड वी आर फुली ऑथराइज्ड डीलर फॉर ऑल दिस। KHT हाई डेफिनेशन ब्रांड जो हमारा कांडा ऑप्टिकल का इन हाउस ब्रांड है, टोटल सक्सेस स्टोरी है।
0: क्या बात?
1: वो सारा के सारा आपको कांडा ऑप्टिकल के हर लोकेशन पे मिलेगा विद फुल गारंटी, वारंटी के साथ, दैट यू विल बी 200% सुपर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। दिस इज समथिंग, बहुत खुशी होती है कहते हुए, अनाउंस करते हुए कि इतना अच्छा सक्सेस रेट हमें मिलता है जब हम अपने क्लासेस हमारा ब्रांड के लोग लेके जाते हैं. दे लव इट.
0: क्या बात है.
1: एंड दिस इज हाउ वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट. शालिनी जी आप तो हमारे लैब में भी आए हैं.
0: राइट.
1: यू सी हाउ आवर employees, like the people working together.
0: That's right.
1: They have long time experience. We don't have people, when they join us, they don't go in and out all the time. We have people working with me from last 30 years, 35 years.
0: Kya baat hai?
1: Technician, opticians, doctors, reception staff, frame stylists. This is the complete package what we have in-house.
0: Kya baat hai?
1: So, isme kya hai ki when you come in, everybody work together to produce the best of the best for you. जब आपको glasses मिलते हैं, you know you got the best results because everybody puts their effort to make it happen nice.
0: क्या बात है, wonderful. अश्विनी जी मैंने पूरा process देखा है आपकी lab में जाकर. मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा कि glasses को कैसे बनाया जाता है, कैसे आप lenses को you know उसमें डाला जाता है frames में, और किस तरह से उनको cleaning होती है. वो सारा process I've gone through and that was simply adorable and very very nice and appreciate your efforts that you're doing for the community.
1: बिल्कुल. और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम ऑल्सो इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट 1980 से. सो देखिए अभी तो काफी देर हो गई है. तो दिस इज अ लॉन्ग टाइम इन दिस बिजनेस. लकीली मैं ये लकी हूँ कि मेरे पास जो मेरे साथ टीम है वो भी इतना ही एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं.
0: दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट्स शो यू देन. अमेजिंग
1: जी. तो सभी से विनती है, इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, आई एग्जामिनेशन, किसी भी तरह की आई रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो कांडा ऑप्टिकल को जरूर याद रखिए. 416-922-5263. शालिनी जी दिस इज अवर मेन नंबर. इस नंबर पे जब आप डायल करते हैं यू हैव एन ऑप्शन टू कनेक्ट विद एनी ऑफ कांडा ऑप्टिकल लोकेशन.
0: ब्यूटीफुल.
1: तो वहां से आप जहां पे भी उसका बटन दबाएंगे, इट टेक्स यू टू दैट लोकेशन डायरेक्ट. यू कैन स्पीक टू देम, बुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, विद अ फ्रेम स्टाइलिस्ट, विद एनीबॉडी यू लाइक टू स्पीक टू. And meet with.
0: Wonderful. So, well, dosto, 416-922-CANDA, 922-5263 is the number, or the visit the website candaoptical.com. Ashwini ji, bahut bahut shukriya aapse judne ke liye. All the very best.
1: Thank you. Bye.
2: Sean Express. Simply good.

दोस्तों, मोहब्बत वो एहसास है जो शब्दों में नहीं आता। मोहब्बत वो एहसास है जो शब्दों में नहीं आता। दिल चुप रहता है मगर सब कह जाता है। और हम चलते हैं आपको लेकर फिल्म प्रेम रोग की तरफ। राज कपूर ने इस फिल्म में इमोशनल रियलिज्म को ब्यूटीफुली दिखाया था। म्यूज़िक और पोएट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। मोहब्बत है क्या चीज़, आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर।

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
4: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
7: दोस्तों चलते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज बुलेटिन की तरफ, और यहाँ पर बता दें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ रिमूवल एंड एक्सक्लूजन के लिए आपको नंबर नोट करना है वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल का। इको फ्रेंडली और सेफ ट्रीटमेंट्स देते हैं, लाइसेंस्ड एंड इंश्योर्ड हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। घर और बिजनेस को पेस्ट फ्री आप रख सकते हैं। अयान काशिफ जी से राइट अवे बात करें, 6479664355 6479664355।
8: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।

आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। खुर्शीद रिजवी साहब के इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, बैठक हुई। दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन किए गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन का चीन दौरा पूरा कर वापस रवाना हो गए। उन्होंने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

0: से अंतिम दौर की बातचीत की। दोनों नेताओं की यह बैठक बीजिंग के झोंगना नहाई परिसर में हुई। इसे चीन के शीर्ष नेतृत्व का सबसे सुरक्षित और गोपनीय सत्ता केंद्र माना जाता है। बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से अमेरिका और चीन दोनों को फायदा होगा। ट्रंप ने कहा, हमने कुछ शानदार समझौते किए हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मूज को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसलिए उसकी भी दिलचस्पी है कि हॉर्मूज खुला रहे। उन्होंने कहा, जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहे। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, एक और मौका देखते देखते आपके पास तक पहुंच चुका है विन लाइफ टाइम के फ्री सेमिनार में भाग लेने का। एंड दिस इज़ हैपनिंग टुमारो सैटरडे दोपहर 1 बजे। आप सारा हफ्ता सुनते हैं विन लाइफ टाइम, किस किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलता है, किस किस तरह से वहां पर ट्रेडिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद डिसीजन आपको लेना होता है सैटरडे। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे और द नंबर टू कॉल टू बुक योर absolutely free, no obligation seats for tomorrow's seminar is 9052061008. Hamare saath chune ja rahe hain very experienced trader and trainer from Win Lifetime, Rafi ji. Rafi ji, good afternoon. How are you?
2: Good, very well. Good afternoon to you and your listeners, ji.
1: Thank you so much, Rafi ji. To kaisa raha, aapne wind up kiya is hafte ko trading mein, to kitna fruitful raha ye hafta?
2: Absolutely, great questions. As usual, सब कुछ transparent है. आज के सारे record, actually इस पूरे week के सारे record और results हमारे YouTube के channel पे upload हो चुके हैं.
1: Okay.
2: आज के भी and excuse me, all week was very green.
1: Wonderful. अच्छा, क्या बात है. तो green होना चाहिए. You know, पैसे का color भी green होता है और trading में भी जब हमें हरा हरा नजर आता है तो लगता है कि everything is garden. So that's amazing. तो Rafi ji, ये बताएं कि अगर कोई हमारा लिसनर ये काम करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस और कौन कौन सी ऐसी स्किल सेट है जो आप देखते हैं नए स्टूडेंट्स में?
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए, ग्रीड कंट्रोल है, रिवेंज ना हो, टेक्निकल हम नहीं केयर करते. टेक्निकल कोई भी सीख सकता है. जिस तरह हम देखते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करने की स्किल चाहिए होती है, टेक्निकली तो हर कोई सीख सकता है. कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, कोई कैपिटल नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए. सिर्फ आए, देखें, सॉफ्टवेयर सीख लें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें.
1: वंडरफुल. और कल का जो सेमिनार है राफी जी, यूजुअली कितना वक्त तक चलता है आपका सेमिनार? लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और ये भी कि अगर वो वीकेंड में ना आ सके तो डू दे हैव अनदर ऑप्शन टू कम ड्यूरिंग द वीकडेज?
2: ड्यूरिंग द वीकेंड मंडे टू फ्राइडे 9 AM टिल 2 PM दे कैन कम लुक एट इट. सेमिनार तो नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
2: वीकेंड पे 1 PM सैटरडे को सेमिनार दोनों लोकेशन पे स्टार्ट हो जाता है. 3-4 hours चलता है मैक्सिमम. मैं तो उस वक्त तक रहता हूँ जब तक आपके आखिरी क्वेश्चन ना पूरी हो जाए.
1: क्या बात है. अंत में ये भी बता दें कि क्या इसके लिए कोई फंडिंग अपनी तरफ से इन्वेस्ट करनी होती है?
2: नहीं जी, ट्रेडिंग 2023 के बाद कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है. डायनामिक्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनी सारे का सारा कैपिटल वो प्रोवाइड करती हैं. आप उनके सर्टिफाइड ट्रेडर बन जाते हो, तो अपने जेब से पैसे ट्रेडिंग में नहीं डालने, बिल्कुल भी नहीं.
1: वंडरफुल. तो भाई हर तरफ से आप सेफ एंड साउंड हो चुके हैं और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड नेम है फॉर द लास्ट 18 years इन आवर कम्युनिटी. winlifetime.com इज द वेबसाइट. नंबर इज 9052061008. बहुत बहुत शुक्रिया राफी जी. हैव अ फैंटास्टिक लॉन्ग वीकेंड. टेक केयर.
2: थैंक यू जी. टेक केयर.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. भारत में किस तरह से तपती चिलचिलाती धूप और गर्मी के दिनों में बेसब्र होकर इंतजार किया जाता है मानसून का, तो बड़ी खबर आज भारत से सबसे पहली मानसून को लेकर ही है. मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून केरलम में 26 मई को दस्तक दे सकता है. ये जल्दी आ रहा है मानसून, क्योंकि आमतौर पर 1 जून के आसपास मानसून केरल पहुंचता है, फिर देश के दूसरे हिस्सों को कवर करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ता है. पिछले साल मानसून 24 मई को आया था. सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश पिछले साल हुई थी और इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून मेहरबान होगा. प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। सभी जज कारपूल करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़ा 50% स्टाफ भी घर से काम करेगा। सोमवार और शुक्रवार जो हैं वो मिसलेनियस डे यानी जो दिन पहले से तय नहीं होते पर लिस्ट मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा कोर्ट के अन्य वर्किंग डे में भी सुनवाई ऑनलाइन ही की जाएगी। भारत में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए। करीब 2 साल बाद दामों में बढ़ोतरी की गई। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार ने तंज कसते हुए कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। चुनाव खत्म हो गए, मोदी की वसूली शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना गया। हाईकोर्ट ने कहा, ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ कूच की आज कोशिश की। किसान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली के YPS चौक पर जुटे जहां से उनका चंडीगढ़ की ओर बढ़ने का कार्यक्रम था। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट पर रही। पुलिस ने चौक से चंडीगढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को सील कर दिया। इसके अलावा आने जाने वाली बाकी सड़कों पर भी भारी बैरिकेडिंग की गई थी। और अब खबर बॉलीवुड से। एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट द सरयू में जमीन खरीदी है। ये प्रोजेक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की आधिकारिक घोषणा के अनुसार ये डील 3 करोड़ से ज्यादा में हुई है। खरीदी गई जमीन का कुल क्षेत्रफल 2134 वर्ग फीट है। अमिताभ बच्चन के बाद द सरयू में निवेश करने वाले रणबीर कपूर दूसरे बड़े एक्टर हैं। द सरयू 75 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इस प्रोजेक्ट में ग्रैंड क्लब हाउस, 35 से ज्यादा लाइफस्टाइल सुविधाएं और द लीला होटल्स का 5 एकड़ में बना हुआ शुद्ध शाकाहारी लग्जरी होटल भी शामिल है। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। और यहाँ पर मैन एंड वुमन इन ब्लैक है, मैं कह रही थी मैन इन ब्लैक, तो बाय चांस हम दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड हैं आज। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हैशटैग होम्स के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड राहुल कश्यप जी। राहुल जी, ग्रेट टू सी यू,
7: हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
1: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। और हर तरफ जो है हैशटैग होम जो है ना, एक तो नाम बहुत अच्छा है, ट्रेंड कर रहा है। जो भी प्रोजेक्ट लोगों को चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट का, और अब तो मार्केट इज ओपनिंग अप एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि चलो फाइनली अब जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली पैसा बहुत ज्यादा होल्ड भी किया हुआ था। पीपल वर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट ना, अब दे आर यू नो हैप्पी टू इन्वेस्ट। तो लेट्स हियर इट सबसे पहले कि मार्केट कितना प्रॉमिसिंग है।
7: Well, firstly, I would say the biggest news that happened, and I'm so happy to say it happened on my birthday, May 12th.
1: Wow!
7: So that day,
1: jo hum,
7: thank you so much. Jo hum itne dinon se baat kar rahe the ki HST rebate, you know, milega, it's a proposal. Finally, May 12th, it has passed from the parliament as a royal assent has happened.
1: Achha.
7: It's an official bill wow. number 114. Now you will get the HST Relief Implementation Act. So ab ye actually it's a bill, it's a law.
1: Okay.
7: So ab jo bhi buyers hain since April 1st, aapko wo aapki jo purchases hain uske upar HST rebate milega.
1: Ji.
7: Saath hi saath jo new home buyers the,
1: right.
7: GST to jaise maine pehle bataya tha ki wo already in play tha because of Bill 4 before, but now with this you will also get the PST rebate as well.
1: Oh, nice.
7: So this has opened up those question marks that people may have had. Now at least अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करते हैं और जो as we've discussed before, timelines जो हैं आपकी वो मीट करती हैं, साथ ही साथ अगर आपने अप्रैल 1st के बाद बाय किया हुआ है, आई मीन एट द एंड डे चाहे वो बिल्डर इन्वेंटरी थी यू नो और मूव इन रेडी होम्स जिसकी हम बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
7: सो दिस इज गोना अप्लाई टू इट and this is going to be really good for everybody because again that's a value of up to $130,000 in rebate that the buyers will get qualified for.
1: Wonderful.
7: And we're going to see a lot more coming out. You're going to see two prices coming out from builders. One is going to be inclusive of HST. And then obviously there's one that's going to be with the rebate price.
1: Okay.
7: So that is going to be very effective going forward because people will have options and buyers will have options.
1: Beautiful.
7: So we are super excited about that. So ye ek aur news thi is hafte ki. Aur saath hi saath ek aur badi news aayi hai recently. I think our listeners will remember, maine kuch hafte pehle bataya tha ki government is partnering up with a private equity firm.
1: Bilkul.
7: They're bringing in $1.3 billion.
1: That's right.
7: Because they want to scoop up these existing inventory condos.
1: Unused.
7: Right?
1: Yeah.
7: Usi ke chalte, ek aur private equity firm hai.
1: Okay.
7: Montreal based. They're called Gesta.
1: Okay.
7: और उन्होंने अभी रिसेंटली $30 million वर्थ ऑफ इन्वेंटरी पिक करी है टोरंटो के अंदर।
1: अच्छा,
7: सो अगेन देयर प्लान इज टू स्पेंड अबाउट $500 million।
1: क्या बात है, वाओ।
7: सो दैट्स अ सेपरेट from what the government is doing with the private equity firm that they have partnered up with. And the reason they have said this is because in the past year and a half, 2 years, जो कॉन्डो इन्वेंटरी है उसके जो वैल्यूज है, they have come down a lot, and this is a great opportunity for them to come in and scoop up this deal. So they have picked up these, you know, X numbers of units, valued at about $30 million. Simple math hai, guys. Agar 4 lakh ka bhi unit hai, do your math. You'll see how many units have been picked up.
1: Amazing.
7: Even if $500,000 as a discounted price point. So that's why I keep saying this is the time if you have an affordability, because look, if a bigger equity firms can come like this,
1: that's right.
7: and they can buy.
1: Right.
7: They're seeing something, right? Bilkul. Nobody's going to spend $30 million.
1: That's true. So why not you?
7: Exactly.
1: If they
7: there's
1: going
7: to be other side of the story too. People are going to say, oh, you know, there's big rich people coming in, they're buying and this and that. Yes, but they're buying it for what? They're buying it for rental.
1: That's true.
7: All this inventory is coming back to the market for rental purpose.
1: So aap bhi lekar ke usko rent out kar sakte hain.
7: Right? So again, right now, as a buyer, you're the boss. Right? You are in the commanding position.
1: That's
7: you're in
1: right.
7: the driving seat. Say what you want to say. You will have the power. You can negotiate the terms, the pricing that we're seeing, the discounts that we're seeing.
1: Yes.
7: Ab jo even inventory se pricing aane wale hain. Guys, before things change, make your moves if you can.
1: Amazing.
7: And jaise abhi aapne kaha Shanji, people have been holding on to the money, right?
1: That's right. And this is the right time. Aur jab aap hashtag homes ke saath deal karte hain, doston, koi bhi achhi si deal mein aap invest karte hain, to aapko negotiate karne ki bhi zarurat nahi hoti, because sara negotiation you know take care karte hain hashtag homes ke jo bahut hi renowned professionals hain. Aur ye jo bulk mein jaise aapne kaha Rahul ji ki wo investment firm hai jo itna paisa laga rahi hai billions of $1,000,000 क्योंकि वो बल्क में इतने सारे कॉन्डोज ले रहे हैं, इतने सारे अनयूज इन्वेंटोरी में स्पेंड कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं. वैसे ही आप लोग भी बल्क में डील करते हैं, इसीलिए द काइंड ऑफ प्राइसिंग दैट यू गेट वो बाकी एजेंट्स के साथ शायद उन्हें नहीं मिलता.
7: Absolutely.
1: तो जैसे आपने बताया कोई नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है और आपने कहा कि 20th ऑफ दिस मंथ पर आपने कल ही बात की थी कि वो साइनिंग भी शुरू हो जाएगी, हालांकि फॉर रेस्ट ऑफ द एजेंट्स एंड ब्रोकरेजेस दैट प्रोजेक्ट इज ओपनिंग नेक्स्ट मंथ
7: इन जून. सो वही एक प्रोजेक्ट, सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. साथ ही साथ आई एम गोना गिव अ बिट ऑफ मोर डिटेल्स फॉर आवर लिसनर्स.
1: नंबर आपका मैं एक बार अनाउंस कर दूं, 6479934844. ये राहुल जी का डायरेक्ट नंबर है, आप नोट डाउन कर लें, कॉल या टेक्स्ट भेजिए इस नंबर पे और सही इन्वेस्टमेंट आज और अभी कीजिए. अगर आपके लिए सही नहीं होगा देन ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर यू. सो द नंबर टू गेट द जेन्युइन एडवाइस इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज 6479934844. और स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू टॉक टू राहुल जी डायरेक्टली 416-593-0055. जी
7: जी शाह जी, सो उसी के चलते जो अभी प्रोजेक्ट की आपने बात भी करी है, दिस प्रोजेक्ट इज कमिंग इन वसेगा. सो वसेगा बीच पे आने वाला है. दिस इज वॉकिंग डिस्टेंस टू द बीच, राइट? सो इट्स वन ऑफ द वेरी यू नो प्राइम लोकेशंस ऑफ वसेगा बीच एरिया. एग्जिस्टिंग फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड है साथ में और यहाँ पे सिर्फ टाउन होम्स आने वाले हैं दो फेजेस में. जो पहला फेज है इट्स अबाउट 147 टाउन होम्स और यहाँ पे जो प्राइसिंग है. Now I'm going to talk about net of HST because it's gone. HST is gone, right?
1: That's right.
7: So net of HST price, we're looking at starting price of $449,000. Freehold townhomes, portal fee hogi, but very minimal.
1: Okay.
7: But the townhomes are absolutely freeholds.
1: Wow.
7: Again, you're going to get early access with our team. Floor plans, we already have it. हमारे पास फ्लोर प्लान्स ऑलरेडी आ चुके हैं, सो वी कैन शेयर दैट विद आवर क्लाइंट्स आवर लिसनर्स. साथ ही साथ लाइक आई सेड इट्स गोना बी एन एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, क्लोजिंग ऑफ 2027. और यहाँ पे जो प्राइसिंग है 449 इन दिस नेबरहुड, अगर आप वैसे ही यू नो गो टू realtor.ca आप गूगल कर लें, यू'ल सी द प्राइसिंग.
1: जी
7: इट्स नॉट एट 449. I can tell you this right now.
1: Oh, yes.
7: And these townhomes are going to be between 3 and 5 bedroom townhomes.
1: Beautiful. Wow.
7: Some of them with finished basement, separate dwelling as well. We're just working out the details on that, how the finished basement is going to be working
1: That's right.
7: But
1: legal basement?
7: Legal basement.
1: Oh, wow.
7: One scoop I can give you is even with the finished basement, you're probably looking at less than 600,000.
1: Oh, nice. Look at that.
7: Right?
1: And two units, so, aap usko rent out bhi kar sakte hain.
7: Absolutely.
1: People nowadays, how many cottages lete hain beach ke paas?
7: Yeah. So,
1: upar ka bhi aap rent out kar do, niche ka bhi 600,000 is nothing.
7: Less than 600.
1: Oh, my God.
7: With the finished basement.
1: Oh,
7: so,
1: wow.
7: Again, we're waiting on something. So, if that happens, then absolutely, that's the pricing we're going to go for.
1: Yes.
7: But like I said, iska jo official launch hone wala hai. That's going to be on the May 20th. We will have the finalized price point, the deposit structure, the closing dates, the lots availability. Everything will be available to our team.
1: Okay.
7: It's a hand-selected agents and brokerages that are working on this release. We are happen to be one of the lucky ones that we are part of this release. And again, Vasega, I've sold it there before. I know what the prices have gone there earlier. Like I said, it's going to be in the high 600s before. Now, with HST rebate, you will get 4.5 lakh as well as you will get. I would say, again, it becomes a no-brainer because you have to do your math. आपने कितने पे बाय कराया है, कितनी डाउन पेमेंट करेंगे, साथ में आपकी मॉर्गेज की क्या वैल्यू बनने वाली है, क्लोजिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर.
1: That's right.
7: I think when you look at the checklist, let's not go with, you know, because everybody's trying to buy. Let's go with what financially makes sense to you.
1: That's true.
7: Right? So this is what's happening in Vasega. Or साथ ही साथ, end of this month, we're also bringing you freehold townhomes in Brampton.
1: Beautiful.
7: So Brampton mein hum townhomes lekar aane wale hain jo net of rebate, like HST rebate ke baad, will be starting in the 600,000 range.
1: Oh my God, mujhe laga ab aap 800 bolenge. Mujhe laga ab aaya 800 ka figure when you said Brampton.
7: No, ye Brampton mein, and again, I'll give you the location. Mavis Road and Ray Lawson.
1: What a wonderful area.
7: We know that
1: area.
7: Neighborhood, Fletcher's Creek area. I used to live, jab pehle we moved here to Canada, that's where we have lived. So I know that neighborhood really well. Mavis Road and Ray Lawson ke wahan pe aane wali hain. And this is like one of the first developments in a very, very long time in that area.
1: Wow.
7: So again, these are freehold townhomes that are coming up. These are going to be three-story towns, different styles, back-to-back bhi honge. With the backyard bhi honge wahan pe. Again,
1: traditional and non-traditional.
7: That's right. But they're going to be three-story towns.
1: Okay.
7: So this is going to be pretty massive ones as well. So
1: it's
7: going to be hamare paas sample floor plans aa chuke hain. We can share that with our listeners, our clients. Only 10% deposit, and that too going to be extended. Closing of 2027 going into 28, depending on your closing timeline of your lots. again, very few units are going to be available in the first launch. There are going to be special incentives for the early buyers in this phase as well. It's going to be launched by the end of May, first week of June. But we have preliminary information enough for you to go ahead and say, listen, this is what we want. Ye hamare ko model pasand hai.
1: I see.
7: Ye floor plan hame achha lag raha hai. Ye elevation achhi lag rahi hai.
1: That's good.
7: We can submit our information. And like I said, we guarantee our clients that this is what you want is what you're going to get.
1: Amazing.
7: So you don't have to go for second or third option. Yeah. We're going to make sure you're going to get the first choice because we have guarantee allocations in this
1: Acha,
7: as well.
1: Yeah. That's amazing. So act first, act now. Aur aap register kar dijiye dosto hashtag homes ke saath. Aur best of the best project. सबसे पहले जैसी फ्रेश कुकिंग होकर आते हैं आपके पास पहुंचेंगे ब्रैम्पटन हो वसेका बीच हो और इसके साथ साथ और जगह भी हैं नायग्रा फॉल्स के बारे में भी राहुल जी ने बताया था नंबर सबसे पहले नोट कर लें 6479934844 6479934844
7: और शान जी जाने से पहले लास्ट वन आई थिंक दिस इज द आइसिंग ऑन द केक फॉर एवरीथिंग
1: अच्छा
7: Caledon, we all know it,
1: oh, wow.
7: right? Very prominent part of Peel. Caledon ke andar, detached homes, after net of HST rebate.
1: Theek
7: hai. Take a wild guess.
1: Okay, 1.3, 1.
7: Ye 2 saal pehle ki pricing hai.
1: That's right.
7: Aaj ki pricing thodi alag hai.
1: 9 ke paas laenge aap? Ye aur kam.
7: Thoda kam ho jaye.
1: Aur kam ho jate. Chaliye 8.
7: Yes.
1: Okay.
7: So
1: Amazing.
7: In the $800,000 wow, range. So we're looking at detached homes, freehold detached in Caledon, starting in the $800,000 range, net of HST rebate.
1: Aapko milne
7: wala hai wahan pe. These are beautiful, you know, single car garage, double car garage we have as well. And we can book units now.
1: Oh, wow.
7: So
1: Beautiful.
7: Closing of 2027 ki hai.
1: Nice.
7: Very renowned builder. It's their new release, new phases coming out. We also have some move-in ready inventory as well. Or saath hi saath Caledon mein this weekend, sorry, next week actually, we're bringing townhomes, freehold, starting in the mid 600s.
1: Oh, amazing. Wow.
7: So there's a lot happening in Caledon.
1: Beautiful.
7: So Caledon mein townhomes chahiye, will be available in mid 600s. Again, the pricing I'm giving is all net of HST now because that's what we have to go with. Detach in the 800,000 range, net of HST in Caledon. Saath hi saath, agar aapko Vasega mein dekhna hai.
1: Bilkul.
7: Mid 400s, 449,990 aapko milne wala net of HST aur saath hi saath, you know, Brampton mein aapko townhomes chahiye freehold. These are going to be starting in the 600,000 range net of HST with the closing of 27 going to 28.
1: Amazing.
7: Mavis and Ray Lawson.
1: Beautiful.
7: That's the location. Baki, aapko koi aur questions hain, get in touch with us because we have Scarboroughs, we have Oshawa's available. And one more thing is I'm working on a deal with a builder for Toronto.
1: That's
7: like you said,
1: downtown.
7: Bulk condos ki jo baat ho rahi hai. I'm bringing in a site which I'm very excited about. We're just kind of nitpicking on my end. Mujhe ye bhi chahiye, ye bhi chahiye. So once everything is ironed out, we will make an announcement very soon for those that project. And I can bet you, from the release to the pricing we're going to bring, it's going to save you close to, I would say, $100,000 to $200,000 difference.
1: Oh, my God.
7: So,
1: amazing.
7: Keeping my fingers crossed.
1: Yes.
7: I get what I want from the builder and then we can pass that on to our audience.
1: Zarur. Toh bhai, mujhe nahi lagta koi bhi area chhoda hai hashtag homes ne. Ab downtown ki baat ki hai, Brampton ki baat ki hai, iske baad Caledon ki baat ki hai, Vasega Beach ki baat ki hai. Toh ye sari jagah aisi hain jo fantastic locations hain aur aapka jo paisa hai wo sahi jagah invest hona hai. Aur yahan par bahut hi affordable townhomes hain, condos hain, detached homes hain aur सेमी डिटैच्ड होम्स है जो भी आपको चाहिए इनफैक्ट इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू मूव इन रेडी या फिर आपको चाहिए समथिंग इन रीसेल तो हैशटैग होम्स की जो टीम है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं टीम ऑफ रियल्टर्स मॉर्गेज एजेंट्स लॉयर्स एवरीथिंग अंडर वन रूफ तो नंबर बहुत आसान सा सीधा सा 6479934844 6479934844 राहुल जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस
7: थैंक यू सो मच शान जी
1: हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड फिर आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते
7: यू टू एंड हैप्पी लॉन्ग वीकेंड टू आवर लिसनर्स एज़ वेल
1: थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट दोस्तों अब जो गाने की फरमाइश आ रही थी आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है तो फिल्म तेजाब का ये गाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इससे ज्यादा ही प्रोजेक्ट्स है राहुल जी के पास सो लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल ट्रैक स्पॉन्सर्ड बाय हैशटैग होम्स एंजॉय

0: तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और अब जो 15 तारीख हो गई है दोस्तों, और अब 15 तारीख के बाद है लॉन्ग वीकेंड। ये और लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी में एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट्स एंड ज़्यादा ही गिव अवेज चाहिए अब अगले मेहमान से, जिनका नाम है राजन जी, और वो आ रहे हैं हमारे तक, पहुँच रहे हैं स्पेक्स एक्सप्रेस से, और इनके पास जो बैग है ना उसमें किटी के अंदर बहुत सारी डील्स हैं, बड़े सारे ऑफर्स हैं। लेट्स हियर इट कि आज क्या स्पेशल है। राजन जी वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
1: थैंक यू सो मच शाम जी, मस्ती की रेलगाड़ी के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
1: शालिनी जी, लॉन्ग वीकेंड है, एक्साइटमेंट सब में है कि घूमने जाना है, लेकिन अगर घूमने जाना है तो मेक श्योर दोस्तों कि आपने सनग्लासेस पहने हो,
0: और
1: सनग्लासेस भी अगर आपको चाहिए बढ़िया ब्रांडेड तो स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर बहुत बढ़िया सेल चल रही है जी। सभी किस्म के ब्रांडेड सनग्लासेस जिसमें गुची के, प्राडा के, बैलेंसियागा के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के, बर्बरी के, वर्साची के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस और ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है।
0: नाइस।
1: तो इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 10-15% डिस्काउंट होता है क्योंकि ये सब मेड इन इटली है और बड़े हाई एंड है, तो लेकिन स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर इन सब के ऊपर फ्लैट 30% ऑफ है। ऐसे ही जिनको अरमानी के सनग्लासेस चाहिए या फिर अरमानी के फ्रेम्स चाहिए, माइकल कोर्स के, केज स्पेड के, कोच के, मार्क जेकब के, ह्यूगो बॉस के, पोलो के, रॉल्स लॉरेन के, वो के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स और ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है जी। और सबसे बड़ी डील आपको कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, टॉमी हिल्फिगर के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम, वैलेंटिनो के फ्रेम, इन सब के ऊपर आपको आज फ्लैट 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है।
0: क्या बात है,
1: दिस इज द बिगेस्ट सेल। और जितने भी लिसनर्स आकर ये 30% ऑफ या 50% ऑफ या 75% ऑफ ले रहे हैं जी, इन सबको हम साथ में एक गिफ्ट स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं।
0: ओ वाओ,
1: सो अमेजिंग डील है जी। अगर आप 75% ऑफ ले रहे हो तो भी स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस फ्री हैं, अगर 50 या 30 ले रहे हो तो भी। और एक हमारा है जी वैल्यू पैकेज। वैल्यू पैकेज में तो शालिनी जी इतनी ह्यूज सेविंग होती है ना, क्योंकि हमारे लिसनर्स जो है इसमें दूर दूर से आते हैं सिर्फ इन फ्रेम्स को लेने के लिए। ये सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम है, लिवाइस के, रेंगलर के, वैन ह्यूसन के, लंडन फॉग के, ये एडी बावर के, ये $300 की कीमत का फ्रेम है जी। तो वैल्यू पैकेज में एक तो ये फ्रेम इंक्लूडेड है, दूसरा $100 की प्राइस के सिंगल विजन लेंसेज ये भी इंक्लूडेड है। सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं, सिर्फ 129। और ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाओ जी, सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है।
0: क्या बात है, वाओ।
1: और अगर कोई पर्सन आकर दो पेयर बनवा रहा है तो पहले पे कोटिंग 50% ऑफ है।
0: अच्छा।
1: और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री।
0: आउटस्टैंडिंग।
1: और अमेजिंग डील ये है कि लॉन्ग वीकेंड है, जितने भी लिसनर्स आकर ये 129 का पैकेज ले रहे हैं, कोटिंग 50% लो, सेकंड पेयर बनवाओ तो कोटिंग फ्री लो, और साथ के साथ आपको स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस ये भी बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं।
0: ब्यूटीफुल, अमेजिंग।
1: तो ये अमेजिंग डील जी हमारे लिसनर्स के लिए आज फ्राइडे हम 7 बजे तक खुले हैं और कल सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुले हैं। आप आज और कल कभी भी आकर ये डील ले सकते हो, लेकिन अगर आप बिजी हो, आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि सैटरडे को हमने घूमने जाना है और हमने वापस मंडे ट्यूजडे को आना है, तो आप सिर्फ कॉल करके अपना नाम लिखवा दें। अगर आपने अपना नाम रजिस्टर करवाया तो हम ये डील आपको नेक्स्ट 2 वीक्स तक दे देंगे।
0: अरे वाह।
1: सिर्फ आपने कॉल कर अपना नाम लिखवाना है।
0: वाओ।
1: तो कॉल करके नाम लिखवाने के लिए एक ही नंबर 905-460-8888 और जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास जी आज शाम के 7 बजे तक अवेलेबल
0: है।
1: अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल सुबह भी हमारे पास डॉक्टर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल है। तो पहुंचना कहाँ पे है जी, स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कैले या कैनेडी एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और नंबर एक बार फिर से 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन वाले सनग्लासेस। तो एक नंबर जी 905 406-088-8888-905-406-88-88.
0: क्या बात है राजन जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग ऑफर्स टू स्टार्ट द लॉन्ग वीकेंड. और हम तो लोगों से कहेंगे कि एक डील से फ़ायदा नहीं होगा, आप डबल डिप ऑफर लीजिए, उसके ऊपर से जो स्केचेस के पोलोराइड सनग्लासेस हैं वो भी फ्री मिल रहे हैं. तो आपकी पूरी फैमिली की यू नो गिफ्ट्स का इंतज़ाम हो गया. स्पेक्स एक्सप्रेस का डायरेक्ट नंबर है, आप राइट अवे कॉल कर लीजिए 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888. Rajan ji, thank you so much for joining us today. Have a great long weekend. All the best.
1: Thank you so much. You have a great, okay? great long
0: weekend. Take care. दोस्तों आपका फिर से एक बार वेलकम करते हैं. और अब जो है बहुत अच्छी बात बता दूं कि आज नेशनल चॉकलेट चिप डे है. तो आज आप खाना चाहते हैं नेशनल चॉकलेट चिप तो ज़रूर खा लीजिए. चॉकलेट चिप खाना चाहते हैं तो खा लीजिए. इसके अलावा बाइक टू स्कूल डे है. आज बहुत सारे बच्चे बाइक से गए हैं स्कूल और अब तो मौसम भी अच्छा है बाइकिंग के लिए, बहुत अच्छा मौसम है. एंड दिस इज़ आई ट्रूली लव अबाउट विच इज़ ब्रिंग फ्लावर्स टू समवन डे. आप जिसको चाहते हैं उसको आज कोई ना कोई फूल ज़रूर दे दीजिए. कस्टमर एक्सपीरियंस डे है. कस्टमर्स की खुशी ही बिजनेस की असली सक्सेस है. तो जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके कितने हैप्पी होते हैं, आपके क्लाइंट्स कितने हैप्पी होते हैं, वो कितने आपके दोस्त कितनी अपनी फैमिली की तरह रहते हैं, उससे आपकी काम की आपके बिजनेस की सक्सेस पता चलती है. और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पवन मिड्डा जी. आइए जानते हैं उनकी खुशी का राज. पवन जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक.
2: थैंक यू वेरी मच जी. और मेरी खुशी का राज है आप सब बहन भाइयों का प्यार, सहयोग और किस्मत वाले होती हैं जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है.
0: How sweet.
2: और मैं अपने आप को उनमें से मानता हूँ. और देखो जो आपकी कहते हैं ना मदर कजन बिल्कुल नेक्स्ट नेबर है, सभी बना के रखते हैं.
0: बिल्कुल.
2: लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली जब मिलती है,
0: क्या बात,
2: पूरा GTA जिसका परिवार बन जाए वो अपने, तो कितना किस्मत वाला होगा.
0: सही बात है.
2: तो मतलब किसी के 4 दोस्त होंगे, किसी के 8 दोस्त होंगे. तो मुझे याद है, मेरे डैड याद आ गए, हम गांव में रहते थे और जब उनके बच्चे नहीं थे, जब मतलब हमारे हो जन्म से पहले, तो कोई पूछता था अभी आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहते थे मैं 600 घर, मतलब हमारे गांव का 600 घर है और अगर एक एक बेटा है और एक एक बेटी हो तो आई हैव 600 सन्स एंड 600 डॉटर्स.
0: अरे वाह.
2: तो वो अब हमारा भी वही वो प्यार देखो कैसे मिला, जो हमें यहाँ के पूरे GTA से पहले तो आप बहनों से मुलाकात हुई, फिर आप लोगों ने कनेक्ट करवाया. और आपने बिजनेस तो बहुत एक्टिविटीज अभी भी करते होंगे और शायद वो भी ऐसे प्यार देते होंगे, पर हमारे साथ कनेक्टिविटी जो हुई वो बहन भाई वाले रिश्ते से हुई. और फिर उसकी जब मैंने पिछले लिंक में भी कहा था कि पौधा लगाना भी इजी है, लगा लो और पानी देते रहो, जरूरी नहीं हर पौधा हरा हो जाता है.
0: सही बात.
2: आपने हमें पानी, जब प्यार वाला पानी दिया, हम हरे भी हुए और ग्रो भी करे. और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है. 4 से 5 में लोकेशन खुलने जा रही है.
0: वेरी गुड.
2: तो उसके लिए ऋणी है आपके और ऋणी रहेंगे, जिंदगी ऋणी रहेंगे. तो रही बात डीलों की, तो ये डीलें आपके लिए ला, बिल्कुल बीइंग ए कस्टमर आपका प्यार मिलता है, वॉल्यूम डिस्काउंट तभी मिल पाता है.
0: बिल्कुल.
2: वो सेक्शन मैंने पिछले लिंक में कहा कि आपको ले जाएं, अच्छा फर्नीचर आपके घर पे चाहे, बचत भी वही है. वो जो 300 वाले में अगर मैं 30,000 कम कर दूंगा तो आई थिंक मार्कम से कोई बंदा ब्रम्पटन नहीं आएगा लेने के लिए. लेकिन अगर 3,000 में से 1,000 कम कर दूंगा तो आप आई थिंक, हमारे पास तो किंगस्टन से भी कस्टमर आते हैं, विंसर से भी कस्टमर आते हैं. तो इसीलिए हमने अभी अपने आप को फैलाना शुरू करा. देखो अभी इधर वेस्ट में आए हैं, फिर भगवान करेगा कुछ अगले सालों में ईस्ट की तरफ भी, उधर किंगस्टन वालों को.
0: वेरी गुड.
2: तो ये आपका प्यार मिलता रहे, हमें साथ साथ मिलता रहे. एशले फर्नीचर के बहुत बड़े डीलर हैं. मैट्रेस के लिए 4 मंथ्स के लिए आपको स्लीप गारंटी दे रहे हैं और मेपल वुड के बेड हमने ऐड, जो बेडरूम सेट ऐड करे हैं, लैक करके जो आजकल इटालियन लुक वाले हाइड्रोलिक स्टोरेज वाले, हर प्राइस रेंज है हमारे पास. मास्टर बेडरूम का भी है, अगर आपका आपने एक सिंपल बेड लेना है 899 का, वो भी हमारे पास है. तो हम चाहते हैं कि आप आए, अजमाएं हम, या हमारे से फोन पे बात कर ले. फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे. अगर आप पर्टिकुलर आइटम ढूंढ रहे हैं तो एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि आप हमारे से बातचीत करके देख लें. फर्नीचर मैं कंपटीशन नहीं करना चाह रहा, मैं उल्टा प्रे करता हूँ कि भगवान सभी को सभी के हिस्से का बिजनेस दे. लेकिन प्यार मांगते वक्त जरूर लालच रखता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा दे. तो आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और जी हाँ आपका वैल्यूएबल बिजनेस भी चाहिए. और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे प्राइस में आपको प्राइस मैंने पिछली बार भी कहा था, रात की बात है, इन स्टोर आके बहन भाई वाला जो बंडल डिस्काउंट बनता है वो आपको करके देंगे, क्वालिटी अच्छी निकलेगी, सर्विस अच्छी होगी, ड्रीवरी का जो वादा करेंगे
0: क्या बात है,
2: इस टाइम टाइम होगी वो पूरी होगी। सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी और प्राइस है, तो हर बंदा मांगता है कि मुझे अच्छी प्राइस मिले और बेटर क्वालिटी मिले, तो उसके लिए हम जाने जाते हैं मिड्डा फर्नीचर। मिड्डा फर्नीचर अब 4 नहीं 5 लोकेशन से आपकी सेवा करेंगे, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन नेक्स्ट वीक से वो भी आपके लिए सेवा में हाजिर हो जाएगी। एक ही फोन नंबर से आप बातचीत कर सकते हैं, 416-901-2810, middafurniture.com वेबसाइट है, info@middafurniture.com ईमेल भी है। तो आपका स्वागत है जी, और हैव ए नाइस वीकेंड,
0: थैंक यू,
2: इंतजार रहेगा आपका, कल भी आप आए, परसों भी आप आए, आज भी आप आए, तो आप लेना चाहते हैं तो बात तो वही है कि हुजमान से जिस चीज पे जो बेटर हम प्राइस कर सकते हैं बाजार से आपको कम प्राइस ही देते हैं और देते रहेंगे। ये आपका प्यार हम
0: Wonderful.
2: मिलता रहे यही आशा रखते हैं। मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: थैंक यू सो मच पवन जी हमसे जुड़ने के लिए, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी,
0: हरवेल दोस्तों अब चलते हैं एक गाने की तरफ, और ये गाना सुनते ही ना बॉडी में जो एनर्जी आ जाती है वो 1950s के बॉलीवुड की असली मस्ती और चार्म है। इस आइकॉनिक सॉन्ग को कंपोज किया था ओपी नैयर ने, और जिनका स्टाइल उस दौर में सबसे अलग था, नो हैवी क्लासिकल, सिर्फ रिदम बीट्स, फुल ऑन ग्रूव और हॉर्स कार्ट रिदम इंस्पायर्ड बीट्स इसमें डाले गए थे। और ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स आप यहां से ले सकते हैं। लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ एक साथ, नंबर नोट करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, यहां से आप फ्रेंचाइज ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, 416-732-3600।

0: जब जब जुल्फे तेरी, और बहुत प्यारा सा गाना आपकी नज़र हमने किया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और बाहर का मौसम ही इतना अच्छा है कि बाहर निकलें तो जुल्फ भी उड़ें और आप भी उड़ें, लेकिन गाड़ी चलाते टाइम ज़्यादा ना उड़ें दोस्तों, ज़रा ज़मीन पर ही चलाएं गाड़ी, आराम से चलाएं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है, जब हमारी नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम हमारे साथ है, और अंजुम कुरैशी जी रेनाउंड नेम है कम्युनिटी का। एक्सीडेंट क्लेम की जब बात आती है तो नंबर याद आता है 416-570-0157, और इनके थ्रू आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स तक पहुंचाया जाता है। अंजुम जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।
0: शुक्रिया।
1: बहुत से लोग होते हैं जो आपके पर्सनल इंजरी क्लेम को डील करते हैं, लेकिन होता ये कि लोगों को अक्सर लॉयर के साथ ये शिकायत होती है कि फोन नहीं उठाते, अपडेट नहीं देते, जवाब नहीं देते, सर्विस का प्रॉब्लम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि हम लोग इतने सालों से मैं मौजूद हूँ और हमारे लॉयर की टीम न सिर्फ आपको एफिशिएंटली डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे 29 ईयर हो गए इस फील्ड में, तो जब आप एक चीज नाम सुनते रहते हैं आपको ये पता होता है कि हम अपने काम को जानते हैं, और हमारे लॉयर कहा जाता है ना कि जिसका काम उसको सांझे, तो हमारे लॉयर की टीम जानती है कि उनको पर्सनल इंजरी की दुनिया में किस तरह लोगों को उनके कंपनसेशन लेके देने हैं, किस तरह उनके सेटलमेंट लेके देने हैं पीस ऑफ माइंड के साथ। और इतना महंगी जो हम अपनी इंश्योरेंस भरते हैं इसी ख्याल से भरते हैं कि अगर हमें कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी टेक केयर करेगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी प्लेट में रख के कुछ नहीं देती, बाकायदा उसके लिए फाइट करना पड़ता है, और फाइट करने के लिए आपको जरूरत है लॉयर की, और हमारे पास मौजूद है टीम ऑफ लॉयर्स जो न सिर्फ आपके क्लेम को प्रोसेस करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 मेरा नंबर है, किसी भी कार एक्सीडेंट में होते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
0: वंडरफुल, और बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस मिलेगी दोस्तों, प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी। ये नंबर आप भी नोट करें, अपने अपनों तक भी पहुंचाएं। अंजुम कुरैशी 416-570-0157 416-570-0157। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। एक बहुत प्यारे से गाने की फरमाइश आई है पिक्चराइज्ड ऑन माधुरी दीक्षित, मस्ती की रेलगाड़ी पर, विल बी राइट बैक।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।
3: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर, अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।

0: भाई दोस्तों, माधुरी दीक्षित का आज बर्थडे है और गानों की इतनी फरमाइशें आई हुई हैं कि बस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गाने आप तक पहुंचाएं, लेकिन एक और बहुत प्यारा सा गाना है वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरा आपसे सवाल ये था, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, अगर आप में से कोई सही जवाब देता है तो, कि आप लोगों में कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो आपके वीकेंड को बहुत ज़्यादा लेज़ी बनाती है, स्पेशली जब हमारे लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं। क्या आप सुबह सुबह सोचते हैं कि मैं जल्दी उठ जाऊँगा और फिर आप वापस हो जाते हैं? आपको लगता है 5 मिनट की स्लीप ले लूं और वो कब 5 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता। आपको लॉन्ड्री भी करनी होती है, आपको ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, और सारी चीज़ें आपकी जो है ना पीछे रखी रह जाती हैं। तो कौन सी वो एक आपकी लेजी हैबिट है दैट यू एब्सोल्युटली वांट टू अवॉइड स्पेशली ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड्स, हमें ज़रूर बताएं। या आप काउच पोटैटो बने रहते हैं, आप सोचते हैं मैं ना बनूं काउच पोटैटो, लेकिन फिर भी बन जाते हैं क्योंकि काउच भी सामने होता है, हाथ में होते हैं पोटैटो फ्राइज। तो What is that one habit that you find it कि बहुत lazy है और मैं change करूँगा इस habit को ताकि मैं अपनी weekend enjoy कर सकूँ? So well, आपसे पूछते हैं, honestly बताइएगा, just for few minutes our lines are open 4165930055 और शायद आप आज कुछ ना कुछ ज़रूर जीत सकें। वक्त थोड़ा कम है बट कोशिश करते हैं, अगर quickly आप लोग call कर सकें then definitely we will let you know कि क्या आपकी एक ऐसी lazy habit है जो आपके weekend को आप चाहते हैं ख़राब कर रही है, और ये हैबिट जो है आप हटाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं। सो आपसे हम पूछेंगे, 4165930055 पे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल बता दूं आपको, देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स कौन सी हैं। आप अगर दुनिया भर में कहीं भी जाना चाहते हैं देओल ट्रैवल से ज़रूर बात करें दोस्तों। और लेटेस्ट बेस्ट ऑफर जो हैं देओल ट्रैवल के, वो हैं टोरंटो से दिल्ली या मुंबई आप जा सकते हैं इस महीने में 1 way 820 में, अमृतसर जा सकते हैं इस महीने 1 way 960 में दो बैग्स के साथ, फिर दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक जा सकते हैं राउंड ट्रिप के साथ $1,490 में, टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,540 विद टू बैग्स। तो दोनों लोकेशन पे आप विजिट कर लें, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन देओल ट्रैवल 905-588-5100 and 905-588-4200 588-5100 and 588-4200 हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं क्या कहना है। गुड आफ्टरनून।
1: हेलो।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: सो सोच रखा था स्प्रिंग क्लीनिंग करेंगे पिछले 3 हफ्ते से, मगर वेदर का तो कुछ और ही अंदाज है।
0: अच्छा,
1: दिस वीकेंड फैमिली तो जोश में है, अभी मेरे को थोड़ा होश लाना पड़ेगा सवेरे।
0: अच्छा, क्योंकि काम आपके ऊपर तो नहीं आ रहा, सारे जोश में आ गए, काम आपके ऊपर डाले रवि जी।
1: कुछ सीक्रेट बाहर नहीं बोलते।
0: जब आपने कहा ना मुझे जोश में आना है, मैं वही समझ गई कि उन्होंने कहा यस लेट्स डू इट, ओके रवि यू डू इट, हाउ अबाउट दैट।
1: वही है ना, समझदार को एक इशारा काफी होता है। मगर हम उस टाइम पे बेवकूफ बन जाते हैं, हमें नहीं समझ आती।
0: क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो 3 हफ्ते से जो प्लानिंग हो रही है रवि जी स्प्रिंग क्लीनिंग की, वो हो क्यों नहीं पाई? मतलब जस्ट आगे आगे बढ़ता चला गया कि कल करते हैं परसों?
1: नो, बेसिकली वेदर प्लेट ट्रॉन्ट, इतने मतलब बारिश हो रही थी ना कि बाहर गैराज में सामान रख के निकालना वो सारा फिर
0: आई नो
1: काफी
0: Completely understand. I'm in the same boat. I want to do so many things for the last, I guess, so many years, and it's not happening. For you, just few months, nothing. Don't worry, you'll get there.
1: चलिए ठीक है, thank you, all the best.
0: यू टू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक्स अ लॉट। आप जुड़े हुए हैं दोस्तों शालिनी के साथ CMR FM 101.3 पर, और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जिसके साथ आपको छोड़े जाएंगे, लेकिन टाइनी सा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइन।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कैजुअल्टी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
4: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
4: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

चलिए दोस्तों, और माधुरी दीक्षित की बात रही तो घाघरे वाला डांस नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ. हैव अ वंडरफुल फैंटास्टिक लॉन्ग वीकेंड दोस्तों. मुस्कुराइए, रिलैक्स कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ प्यारे से पल बिताइए, मेमोरीज बनाइए, अपने ख्यालों में हमें हमेशा याद रखिए. आपसे मुलाकात होती है मंडे आफ्टरनून 2 से 4 CMRFM 101.3 पर. शो के बाद डायरेक्ट नंबर आप बात कर सकते हैं 416-569-7812 416-569-7812. Take care. Namaskar.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
2: जो हो आपके दिल के करीब,
1: जो मनाए आपके त्योहार,
2: रखे चुटकुले तैयार,
1: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
2: जहाँ मचे शायरी की धूम,
1: जो दे खबरें अप टू डेट
2: और दे ढेरों इनाम।
1: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
2: जतिन के संग
1: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
3: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
4: हाँ जी बहन और भाइयों, ये डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। तुम आए तो महक उठी वीरानिया दिल की, तुम आए तो महक उठी वीरानिया दिल की, धीरे धीरे तुम मेरी

घर बंदगी बन गए, सोचा न था कि यूं खो जाएंगे तुम में, सोचा न था कि यूं खो जाएंगे तुम में, कि देखते ही देखते तुम मेरी जिंदगी बन गए। हाँ जी मित्र भाइयों, जिंदगी में एक पल में कोई अपनी जिंदगी बन जाता है तो एक पल में कोई जिंदगी से दूर आ जाता है। बिनर भाइयों, इसी तो कहते हैं जिंदगी, और इसे कहते हैं जीना, इसी का नाम है। हाँ जी बिनर भाइयों, हम हैं आपके दोस्त जतीन, आइए लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की ओर, जिंदगी बन गए हो तुम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू सुइट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो या

0: फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844 दैट 6478648844
1: और विजिट teamsabarwal.com
2: योर सर्च एंड्स हियर
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545
3: हाँ जी मित्र भाइयों सेल सेल सेल कहाँ पे है सेल विक्टोरिया डे सेल है कहाँ पर रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट वेबसाइट ritzfurnitureplanet.ca उनका फ्लायर देखने के लिए और डिटेल जानकारी के लिए वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा और विक्टोरिया डे सेल लगी है फैमिली के साथ पहुंचिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट हम पहुंचते हैं सीधे हिमानी जी के पास हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रीड वॉइस में प्लीज हमारे श्रोताओं को विक्टोरिया डे प्रमोशंस के बारे में जरूर बताएं ओवर टू यू हिमानी जी
4: जी थैंक यू सो मच और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब और इसी के साथ आपको ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड जो है प्रमोशन जो हमारी शुरू हो चुकी है और इस सेल में बहुत ही स्पेशल ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें कि बेडरूम सेट सोफाज डाइनिंग्स कॉफी टेबल्स मतलब घर की हर एक चीज जो घर को चार चांद लगा देती है वो आपको रिट्ज फर्नीचर पे ही मिलने वाली है और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आपका पूरा समय मुझे लगता है मैं आपका पूरा शो कवर कर सकती हूँ हमारे पास इतना बड़ा फ्लायर रेडी हो चुका है और उसमें की बहुत सारी आइटम्स जिसमें सोफा लव सीट की बात करें या फिर रिक्लाइनर्स की बात करें सेक्शनल्स की बात करें कॉफ़ी टेबल्स की बात करें हर एक चीज़ जो है वो स्पेशल प्राइस पर लग चुकी है $498 का हमने 6-piece बेडरूम सेट लगाया है जी हाँ आप सुन के हैरान हो जाएंगे सिर्फ $498 में और वो भी 6-piece बेडरूम सेट जिसमें कि आपको क्वीन बेड ड्रेसर मिरर एंड वन नाइट टेबल मिलेगा और रिक्लाइनर सोफा लवसीट की बात करें और रिक्लाइनर सोफा लवसीट बहुत ही प्यारा कलर $898 में और साथ ही सोफा एंड लव सीट 3-seater एंड 2-seater 2-piece जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ $498 में दिखेगा और आप फ्लायर में देख सकते हैं पिक्चर्स भी लगी हुई हैं बल्कि विजुलाइज करने से बेटर मैं कहूँगी आप स्टोर पे आएं एटलीस्ट आप एक बार विजिट ज़रूर करें एड्रेस मैं आपको दे देती हूँ 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53 और वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53 पे आपने आना है देयर इज ओनली वन स्टॉप टू बाय विच इज़ रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट फ़ोन नंबर है 905-232-7489 पे आपने कॉल करनी है और बाकी के फ़ोन नंबर जो हैं वो आपको हमारे फ्लायर पे दिख जाएंगे आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारे सेल्स रेप से बात कर सकते हैं वो सोफाज में भी एक्सपर्टीज है आपको कोई कस्टमाइजेशन करवानी है सीटिंग नैरो वाइड करानी है कोई स्टड लगवाने हैं लेग्स का स्टाइल चेंज कराना है आर्म्स का साइज छोटा बड़ा करना है या फिर सीट्स ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स कम ज़्यादा कराने हैं हर तरीके से आपको रिक्वायरमेंट की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करेंगे और वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा डिक्सी एंड मैथसन के बिल्कुल पास और आपने हमारा फ्लायर देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना है विच इज रिट्ज फर्नीचर प्लैनेट डॉट सी ए RITZ फर्नीचर प्लैनेट डॉट सी ए पर जाके जो है आपने हमारा फ्लायर चेक करना है एंड वंस अगेन वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू ऑन दिस वीकेंड बहुत ही अच्छी प्रमोशन सेल है बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है एक बार विजिट कीजिए ताकि आप विजुलाइज कर सकें कि क्या कलेक्शन है कैसी क्वालिटी है प्राइस तो आपके सामने फ्लायर में है ही और वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू वंस अगेन थैंक यू सो मच
3: हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदर भाइयों अब आपकी बारी जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा कॉल भी कर सकते हैं 647-765-7657 रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट डॉट सी ए वेबसाइट डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स फैमिली डेंटिस्ट केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बिंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
5: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
8: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
9: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं जिसमें खांसी जुखाम बुखार स्लिप एंड फॉल वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस फ्यूनरल इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
10: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
11: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3 डिनर 5 to 10 वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरु लक्ष्मी डॉट कॉम गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन विक्टोरिया डे सेल रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट पर। मित्र भाइयों, लॉन्ग वीकेंड का मजा आप खुद लीजिए और खुद पहुंचिए रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट पर। दे डोंट मैच द प्राइस, दे बीट द प्राइस। रोहित जी और उनकी टीम आपके स्वागत के लिए तैयार है, जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा। आइए हम पहुंचते वहां पर और लेते हैं ज्यादा जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को विक्टोरिया डे सेल के बारे में जरूर बताएं। ओवर टू यू।
5: थैंक यू सो मच। और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिच फर्नीचर की टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और इसी के साथ फिर से एक बार आपको बता दें कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड प्रमोशन जो है वो शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बहुत ही स्पेशल आइटम्स आपको इस बार मिलने वाली हैं। स्पेशल ज़्यादा इस बात का है कि प्राइस इतनी कम मिलेगी कि आप खुद हैरान होंगे कि इतनी अच्छी क्वालिटी के सोफ़ास जो हैं, बेडरूम सेट्स जो हैं, वो इतनी कम प्राइस पे कैसे। और ख़ास बात ये होती है कि अगर अच्छी चीज़ पे कम प्राइस बंदा पे करे तो उसको इतनी खुशी होती है कि मैं सस्ती चीज़ लेकर आया हूँ, सस्ती मतलब क्वालिटी के साथ। और वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि अच्छी चीज़ भी मिल गई और दाम भी कम देना पड़ा। और साथ में एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है रिच फर्नीचर प्लानेट, विच इज एट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा। वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53, वहां पे आपको आना है और आके हमारी कलेक्शन चेक करनी है और साथ के साथ डील्स लॉक करनी है। एंड रोहित द यस मैन, ही इज ऑलवेज हियर। जिस प्राइस से कस्टमर ने आज तक यस कहा है उसी पे ही रोहित जी ने यस की है। और डिस्काउंट तो जो रोहित जी देते हैं वो तो बाकमाल होता है कि इतना अच्छा डिस्काउंट कि कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं मिलता कि और कम कीजिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स इक्वल पेमेंट प्लान या फिर डेफर्ड प्लान भी मिल सकता है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, हर परचेज के साथ हम एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। और एड्रेस आपको याद रखना है, विच इज 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53, जहाँ पे आपको आना है। और इस वीकेंड पे हम आपका इंतजार करेंगे और चाय और समोसे और मिठाई आप हमारे साथ ही खाएंगे। और रोहित जी से मिलने जरूर आइएगा क्योंकि वही हैं द यस मैन जो आपको प्राइस देंगे। और वंस अगेन मोस्ट वेलकम एट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53। थैंक यू सो मच।
4: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर भाइयों, अब आपकी बारी, फैमिली के साथ पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा, यानी कि रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट। उनके करंट फ्लायर और प्रमोशंस के लिए ritzfurniture.ca वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। कॉल भी कर सकते हैं 647-854-7489 रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट।

0: இப்பே பிரேக்கிங் நியூஸ்
1: Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
5: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 & 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
5: हाँ जी मेनर भाइयों ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं टीम अरोरा रियल्टी की ओर। नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट्स, टॉप रियल्टर्स इन ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा। जीटीए में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी हो, बेचनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर रियल एस्टेट की कोई भी एडवाइस चाहिए, एक बार टीम अरोरा के कप्तान परवीन जी से बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। नंबर टू डायल इज 416-910-8923 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें। ओवर टू यू सर।
6: जतिन जी मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिसनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि एवरी वीक हम अपने लिसनर्स को मार्केट का अपडेट देते हैं और जो जो प्रॉपर्टीज हम मार्केट में नई लेकर आते हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मैं जतिन जी जो मार्केट का अपडेट है वो देना चाहूँगा कि जो अप्रैल का महीना है उसके स्टैट्स आए हैं। ये जो 2026 का अप्रैल का मंथ रहा है ये 2025 के अप्रैल के मंथ के कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तकरीबन 7% के करीब बढ़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक्टिविटी पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल ज़्यादा हुई है। जो प्राइसेज हैं प्राइसिंग में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है जतिन जी पिछले साल के मुकाबले, और जो लिस्टिंग्स का नंबर है वो लिस्टिंग्स का नंबर भी थोड़ा कम हुआ है। मार्केट में एक्टिविटी है, लोग घर बाय कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या सेकंड थर्ड टाइम बायर्स हैं वो मार्केट का बाइंग के लिए वो उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि आज उनकी जो नेगोशिएशन पावर है बाइंग के लिए वो ज्यादा है, और जो मार्केट की एक्टिविटी है वो उनको हेल्प कर रही है प्राइसेस को नेगोशिएट करने के लिए। और अगर कोई भी हमारे लिस्नर जैसे आज की डेट में प्रॉपर्टी को अपसाइज करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो बाय करना चाहते हैं, तो वो एक बार हमारे साथ बात जरूर करें। ये जो वीकेंड है जतिन जी, ये लॉन्ग वीकेंड है, विक्टोरिया डे अपने सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन हमारा ऑफिस ओपन है। आप अगर फ्री हैं आप एक बार हमारे साथ मुलाकात कीजिए, हम आपके साथ आज की मार्केट के मुताबिक काफी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि हेल्पफुल होगी आपको डिसीजन बनाने के लिए। अब मैं जो कुछ प्रॉपर्टीज हम मार्केट में लेकर आए हैं जतिन जी उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीक भी हम मार्केट के अंदर काफी जो हमारी लिस्टिंग्स हैं वो लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे कोई भी लिस्नर लैंड के पार्सल के अंदर कोई बना हुआ घर लेना चाहते हैं जिसमें लैंड का पार्सल बड़ा हो, एक एकड़ के करीब लॉट है, ये हमारे पास है हेरिटेज रोड के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी आई है। और इसी के साथ एक हमारे पास और प्रॉपर्टी है जो कि 2 एकड़ का लॉट है, जो कि ब्रैम्पटन का काफी प्राइम लोकेशन है, 2 एकड़ का लॉट है, उसमें वो जो घर है कस्टम बिल्ट घर बना हुआ है, अगर उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं। इसके साथ ही हमने जी जो डेरी अपने सॉरी मिसिसागा रोड के ऊपर जी जो वॉलमार्ट के सामने मिसिसागा और विलियम पार्क वे के पास जो नेबरहुड है वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी है वो सेल पे लगाई है, वो है जी 51 डेरी मेड। ये जो प्रॉपर्टी है रवीन लॉट है, आप एक बार प्रॉपर्टी जरूर देखिए और इसके ऊपर हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। वहीं पे उसी नेबरहुड के ऊपर हमने मिड मॉर्निंग और ब्लू साइलो के ऊपर भी एक एक प्रॉपर्टी सेल के ऊपर लगाई है। वहां पे हमारे पास हर तरह की इन्वेंटरी अवेलेबल है अगर हमारे कोई भी लिस्नर वहां पे कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। और जतिन जी जैसे प्री कंस्ट्रक्शन में भी मार्केट में काफी एक्टिविटी है, हमारे पास कैलेडन में ऑप्शंस हैं डिटैच घरों की काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर, हमारे पास कैम्ब्रिज में है टाउन हाउस और सिंगल कार डिटैच घरों की काफी अट्रैक्टिव प्राइस है उनकी, और हमारे पास मे फील्ड के ऊपर जो ब्रैम्पटन का एरिया है वहां पे भी इन्वेंट्री है डिटैच घरों की और कुछ लिव एंड वर्क भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बाइंग के बारे में, सेलिंग के बारे में, या कोई नई कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, या आप कोई कस्टम बिल्ट घर देख रहे हैं, एक बार हमें कॉल जरूर करें। नंबर है हमारा जतन जी 416-910-8923, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं teamarora.com। थैंक यू जतन जी।
2: परवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों एक बार तो बात और मुलाकात बनती ही है। 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
7: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
2: हाँ जी बेंद्र भाइयों, अगर आपको फर्नीचर का परफेक्ट पीस चाहिए या फिर कस्टम रिक्वेस्ट है आपकी, हर रिक्वेस्ट यहीं पर पूरी होती है रेड्स फर्नीचर प्लेनेट पर। जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा। आइए हम सीधे वहीं पर चलते हैं और बात करते हैं हिमानी जी से। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। विक्टोरिया डे सेल क्या धूम मचा रहे हैं आप, प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट कीजिए। ओवर टू यू हिमानी जी।
8: जी बिल्कुल, वो जैसे गाना सबने सुना ना, धूम मचाले वाला तो फिर हमने भी पूरी धूम मचा दी है और बिल्कुल धमाकेदार प्राइसिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिच फर्नीचर, एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा। एड्रेस आप सबको याद हो चुका होगा, मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, डिक्सी एंड मैथिसन के बिल्कुल पास जो है वो आपको रिच फर्नीचर पे आना है और यहाँ पे आके आपको अच्छी अच्छी डील्स का फायदा उठाना है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी और इतनी कम प्राइसेस पे जब आपको चीजें मिलने वाली हैं तो आप मौका क्यों छोड़ेंगे। और साथ में मैं अगर सोफास की बात करूँ, सोफास में बहुत अच्छी वैरायटी और क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी, और जब बेटर प्राइस के साथ आपको ये चीज़ें मिलने लगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि मैं आपको फ्लायर में अगर बताऊं, फ्लायर हमारा रेडी हो चुका है, पोस्ट कर दिया हमने अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट है ritzfurniturplanet.ca। जी हाँ, ritzfurniturplanet.ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर चेक करना है और उसी में मिलेंगे आपको ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स। और फ्लायर में आपको एक $498 का सोफा एंड लव सीट दिखेगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन सोफा एंड लव सीट, टू पीसेस, थ्री सीटर एंड टू सीटर, वो आपको मिलने वाला है सिर्फ $498 में। और साथ में रिक्लाइनर सोफा लव सीट सिर्फ और सिर्फ $898 में। सिक्स पीस क्वीन बेडरूम सेट जिसमें क्वीन बेड, ड्रेसर मिरर, एक नाइट टेबल और सिर्फ और सिर्फ $498 में, और रिवर्सिबल सेक्शनल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, रिवर्सिबल सेक्शनल विद कप होल्डर आपको सिर्फ $198 में मिल रहा है, और इतनी कम प्राइसेस में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, और $498 में आपको सोफ़ा बेड मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सोफ़ा बेड, और विद जो पुल आउट सोफ़ा बेड होता है वो $498 में सिर्फ आपको मिल रहा है, और बहुत सारी फ्लोर मॉडल आइटम्स जो हम क्लियरेंस पे लगा रहे हैं उनकी भी इतनी अच्छी प्राइसेस चल रही है, मतलब आप खुद हैरान होंगे। पर लेकिन फ्लायर देखने से भी पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विजुलाइज करने से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, कई बार पिक्चर में आपको इतना क्लियर नहीं हो पाता है कि क्वालिटी कैसी है, वो आप फील करके ही देख सकते हैं। तो बहुत ही सारी चीज़ें हमने फ्लोर पे लगा दी हैं, ऑलमोस्ट 22,000 स्क्वायर फीट का ये शोरूम है विच इज़ फुल ऑफ फर्नीचर, घर की हर एक चीज़ रेडी है यहाँ पे लेने के लिए, और आपने यहाँ पे आना है और डील्स लॉक करनी है, एंड हमारे पास फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेट्स से आप पूरे घर का फर्नीचर लेते हैं और पूरा पे नहीं करना चाहते एक बार में, उसके लिए आपने फाइनेंसिंग अप्लाई करनी है और उसके थ्रू आप जा सकते हैं, जिसको आपने एक साल में पे ऑफ करना है विद 0% इंटरेस्ट रेट, या फिर आप 6 मंथ प्लान भी ले सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर डेफर्ड प्लान, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो है 0%, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो वंस अगैन 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, फोन नंबर है 905-232-7489 पे आपने कॉल करनी है, और कोई भी आपकी क्वेरी है हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच
2: ईमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंद्र भाइयों, अब आपकी बारी, जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, कॉल भी कर सकते हैं 647-765-7657, 647-765-7657, richthefurniturplanet.ca वेबसाइट।

टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी येड़ी भी है, पर मेरी है। हमारी फैमिली ऐसी ही होती है, बर्फी सी मीठी, इमली सी खट्टी, नट सी नटी, पर दवाई सी हीलिंग, हग सी सूदिंग, और लव से भी ज्यादा लविंग। अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी सिंपल वर्ड ऑफ आर ब्लड रिलेशनशिप्स, जहाँ से हमारी जिंदगी की होती है शुरुआत, पर प्यार जो होता है ना वो रहता है जिंदगी के भी बाद। फैवी कॉल सा एक मजबूत जोड़ जो कोई भी झगड़ा वगड़ा लड़ाई वड़ाई नहीं पाती तोड़।

यही याद दिलाता है ये इंटरनेशनल फैमिलीज डे विच इज टुडे। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लगता है कि ये परिवार ना एक वो तारा होता है जो हमेशा हमारे लिए चमकता है, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। सो ऑन दिस भाई, नो फैमिली इज नॉर्मल, बट दिस डिसफंक्शनैलिटी ऑफ ईच फैमिली is actually normal wali note. This is Swati and Hansel is on Filmy Nukar CMR at 5 saying, aap hain lucky if you are with your family. Maan lo,

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 6474535353.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 4168437600।
0: Property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
4: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: 24th Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markhamper.
1: Doing business your way.
0: A proud member of Wayne's Auto Group.
2: Movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkar's Weekend Watch.
3: वीकेंड है तो वीकेंड वॉच तो बनता है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी शो में कि क्या क्या आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिएट्रिकल हिंदी रिलीजेस. मेन बोले तो फुल ऑन रोम कॉम मासी कमर्शियल सिनेमा पति पत्नी और वो दो, बेसिकली एक और एडिशन इन पति पत्नी और वो दो एडिशन है. स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना है जो वन विभाग के सच्चे अधिकारी बने हैं, और एक बहुत ही ओबीडियंट हस्बैंड भी जो वामिका गब्बी. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो दो की एंट्री होती है, एक तो बनी है सारा और एक रकुल. सिचुएशनल कॉमेडी है, एरर्स की कॉमेडी विद लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस. बट इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट बेस्ड ऑन दैट यू नो पुअर आइडिया ऑफ इनफिडेलिटी या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स. As the title suggests, भी, you know, ऐसा लगता है कि इस बार बीवी के अलावा दो दो है ना, ऐसा नहीं है. इसमें आयुष्मान इनफैक्ट अपनी एक स्कूल फ्रेंड की मदद करते हैं सारा अली खान, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पॉलिटिशियन के एक बेटे के साथ, पर कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी मदद कर रहे हैं बाय फेकिंग अफेयर विद हर. अब वामिका है जो उनकी वाइफ है, शी स्मार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो अपना न्यूज चैनल खोलना चाहती है. जब एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए झूठों का पुलिंदा बनता चला जाता है तो बंदा फंसता भी चला जाता है. ऊपर से बीवी की एक पक्की दोस्त है रकुलप्रीत सिंह, जो कि डॉक्टर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में. देखती कुछ है, समझती कुछ है और फिर अपनी दोस्त को वही कन्वे कर देती है, तो बीवी अलग चढ़ जाती है ना. फिल्म में विजय राज भी है एज अ कॉप, और उनकी कॉमिक टाइमिंग तो हम सभी जानते हैं कितनी सुपर्ब है. ओवरऑल ट्रेलर इज फुल ऑफ क्विक्स एंड फन. मैं कह सकती हूँ कि देखी जा सकती है. प्रयागराज बैकड्रॉप में है तो डायलेक्ट भी वैसा ही है डायलॉग्स का. एंड एज पर रिव्यूज, हालांकि कुछ कह रहे हैं आउटडेटेड तो कुछ कह रहे हैं अच्छी कॉमेडी है. आई वुड से आई वुड टेक माय चांस टू वॉच इट आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर. इट मे नॉट बी दैट इंटेलिजेंट एंड वेरी यू नो नाइस सिनेमा, बट थोड़ा हंसा भी दे अगर तो अच्छा ही है ना.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com. Ya jai 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: जी हाँ, यही है होता है मोटिव और यही होता है स्लोगन कि आपको मिले बेस्ट सर्विस एट बेस्ट प्राइसेस और बेस्ट चीजें भी मिल जाएं, है ना, जैसी आप चाहते हैं वैसी ही। तो हर चीज जब बेस्ट मिल सकती है तो कहीं और क्यों जाएं, स्पेक्स एक्सप्रेस पर ही जाएं। वैसे उनका नंबर मैं बता देती हूँ, 9054608888। ये नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि क्या क्या डील्स हैं। पर कल भी हमारी राजन जी से बात हुई थी, इतनी बढ़िया डील्स हैं इस वीकेंड पे। अगर आप रुके हुए हैं वहीं शहर में तो जाके आएं और उन डील्स का फायदा उठाएं। अगर आप शहर से बाहर हैं या जाने का सोच रहे हैं इस वीकेंड पर और ये डील्स तो हम अवेल ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई आपको बता दें, आपको सिर्फ फोन करना है इस नंबर पर और ये कहना है कि आई वॉन्ट टू अवेल दीज डील्स, प्लीज मेरे लिए रख लेना। तो नाम लिखवाएंगे ना तो आप दो हफ्ते बाद भी मिलेंगे, तो आपके वो डील्स वही प्राइस पे सारा मिल जाएगा। पर वो डील्स है क्या इसके लिए राजन जी से आपकी फिर से बात करा देती हूँ। राजन जी, वेलकम।
4: थैंक यू सो मच स्वाति जी, और सभी लिसनर्स को फिर से एक बार बता दें कि दोस्तों स्पेशल स्पेशल डील्स हम लेकर आए हैं जी, फिल्मी निकोड के रेफरेंस के हिसाब से। अगर आप बाहर हैं जैसे स्वाति जी ने बताया, तो हमें सिर्फ कॉल कर अपना नाम लिखवा दें और ये हम आपको सनग्लासेस स्केचेस की पोलराइज वाली एज अ गिफ्ट देंगे हर एक परचेज के साथ। तो कॉल करने के लिए नंबर है जी 9054608888। और स्वाति जी, डील्स क्या बताऊं, इतनी बढ़िया डील्स चल रही हैं जी। जो भी हमारे लिस्ट आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, ब्रांडेड सनग्लासेस यूज कर रहे हैं और साथ में गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं। तो ब्रांडेड फ्रेम्स में अगर आपको बर्बरी के, वर्साची के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ब्लेंसियागा के, ये डॉल्ची गबाना के, प्राडा के, गुच्ची के चाहिए फ्रेम्स या सनग्लासेस, तो ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स और सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी। और ऐसे ही स्वाति जी, जिनको चाहिए रेबन के फ्रेम, अरमानी के फ्रेम, माइकल कोर्स के, केट स्पेड के, मार्क जैकब के, या फिर ह्यूगो बॉस के, या फिर कोच के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी। और इससे भी बढ़िया डील है हमारे पास, अगर आपको टॉमी हिलफिगर के फ्रेम चाहिए, या फिर कैल्विन क्लाइन के, या फिर फैंडी के, या फिर वैलेंटिनो के, तो फ्लैट 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है जिन फ्रेम्स के ऊपर। सो ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स हैं, इनको मिस मत करें। और अगर आप लेना चाहते हैं जी हमारा वैल्यू पैकेज, तो सिर्फ $129 का वैल्यू पैकेज है जी, जिसमें हम आपको सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम भी दे रहे हैं और साथ में सिंगल विजन लेंसेज भी डालकर दे रहे हैं। और अगर आपको चाहिए प्रोग्रेसिव ग्लासेस, तो एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव दे रहे हैं, साथ में सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम। और ये 600 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी लिसनर्स आकर चाहे 129 का पैकेज लें, चाहे 258 का पैकेज लें, या फिर 75% ऑफ ब्रांडेड फ्रेम लें, हर परचेज के साथ दोस्तों आपको आज इस वीकेंड सैटरडे और आज फ्राइडे स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। और अगेन दोस्तों, अगर आप शहर में नहीं हो और अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो कहीं जाने का, तो हमें सिर्फ कॉल कर अपना नाम लिखवा दें, तो यही डील्स आपको, एग्जैक्ट सेम डील्स आपको हम नेक्स्ट वीक भी देंगे, उससे नेक्स्ट वीक भी देंगे। सिर्फ आपने कॉल कर अपना नाम रजिस्टर करवाना है। कॉल करने के लिए नंबर 9054608888, और जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है बताते चलें कि डॉक्टर हमारे पास ये आज 7 बजे तक अवेलेबल हैं। अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल भी हमारे पास डॉक्टर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल होंगे जी। आप इन टाइमिंग्स में अगर आई एग्जाम करवाना चाहते हैं तो भी हमें फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं 905-460-8888। और पहुंचना कहाँ जी डिटेल्स लेने के लिए, स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कह लें या कैनेडी एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा है। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो एक ही नंबर 905-460-8888, 905-460-8888। थैंक यू सो मच स्वाति जी। हेलो।

0: Swan Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: All right, इस वक्त हम आपको वहां ले चलते हैं जहां से हम कहते हैं कि एक जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखने लग पड़ सकती है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं करियर से रिलेटेड अपनी लाइफ में. मैं देख रही थी अभी हमारे पास कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसमें अधिकतर लोगों के सवाल करियर से रिलेटेड होते हैं, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि करियर अच्छा ना होना, दुरुस्त ना होना इस वक्त कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है. और इसीलिए मुझे लगा आप लोगों की बात करा दी जाए हमारे रूहानी कॉलेज के ओम सर जी से, क्योंकि वो बताएंगे हाउ यू कैन मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग यू नो सम पॉजिटिविटी, सम गुड न्यूज़ फॉर योर करियर. तो देखते हैं क्या है कुछ खास उनके पास. ओम जी वेलकम.
2: थैंक यू जी. एक्चुअली आपने सही बोला कि यहाँ पे अभी पॉजिटिविटी काफी है. लाइक जो लाइक समबडी वांट्स टू बी डॉक्टर एंड चार साल उनके बच जाए तो एक बड़ा टाइम होता है कि एक चार साल बचाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज अचीवमेंट होती है.
1: बहुत बहुत बड़ी चीज है. चार साल में हम एक एक साल का फर्क पड़ता है देखें, और यहाँ तो चार साल की बात हो रही है. डॉक्टरी बनना, डॉक्टर बनना वैसे ही बहुत बड़ा समय लगता है, और यहाँ पे अगर आपके चार साल बच जाते हैं तो इट्स अ बिग बिग बिग थिंग यू नो. तो कैसे कर पाते हैं आप पहले तो ये बताएं.
2: चार साल पहले अर्निंग भी होती है इसका. हमारे पास प्री मेडिकल का प्रोग्राम होता है तो जिसमें आफ्टर प्लस टू यू डोंट नीड टू गो फॉर बैचलर डिग्री एमकैट, ये सब कुछ नहीं करना आपने. कोई हेडेक और बिल्कुल अनसर्टेन भी नहीं है. इट्स सर्टेन, इट्स ग्रांटेड एडमिशन है मेडिकल कॉलेजेस में. तो इसमें रूहानी कॉलेज शुरू से लेकर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक पूरा आपके साथ में होता है. हर जगह पर आपकी हेल्प करता है और जो हमारे पहले बच्चे गए भी हैं. सो यू वॉन्ट टू कि एक लड़का जो हमारे पास आया बिल्कुल सक्सेसफुल डॉक्टर बन के आए, और चाहे यूएस में बने या फिर कहीं भी वर्ल्ड में काम करें. सो हम पूरी पूरी गाइडलाइन करते हैं, पूरी पूरी जो कोर्सेज है लाइक नॉट ओनली फॉर हियर इन कैनेडा बल्कि वर्ल्ड वाइड है. लाइक कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई अलग अलग कंट्रीज में है तो वो भी इसको कर सकता है. और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक इसमें आपको पता है कि डॉक्टर कितनी डिमांड है उसमें, तो कभी कम होनी नहीं है चाहे किसी भी कंट्री.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हेल्थ में तो कहते हैं यहाँ कनाडा में इफ यू डू एनीथिंग इन हेल्थ वो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्डिंग रहेगा ही, और स्पेशली इफ यू बिकम अ डॉक्टर तो कहीं भी चले जाएं आप दुनिया में, नॉट जस्ट इन कनाडा. हमें पता है कि फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट, और इसीलिए शायद पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चे डॉक्टर बने, बच्चे भी चाहते हैं हम डॉक्टर बने, पर वो जो इतना लंबा समय होता है और कई बार वो गारंटी भी नहीं होती. कई बार वो जो एग्जाम्स देने होते हैं उससे पहले उसमें पता नहीं होता पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेहनत करते रहते हैं. तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आया कि रूहानी कॉलेज से अगर जो आप प्री मेट प्रोग्राम करते हैं तो एक तो गारंटी है विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, और फिर आप चार साल कम में डॉक्टर बन के रेडी हो सकते हैं. चार साल कम मीन्स आप चार साल पहले अपने करियर में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, चार साल पहले सक्सेसफुल हो सकते हैं, चार साल पहले कमाना शुरू कर सकते हैं, चार साल पहले एस्टैब्लिश हो सकते हैं. कितनी बड़ी बात हो जाती है सर ये. आपने बताया था कि बहुत सारे कॉलेजेस का आपके साथ एफिलिएशन रहता है यूएस में भी इधर उधर भी, तो चॉइस किस तरीके से रहती है लोगों की इफ दे वांट टू चूज?
2: देखिए इसमें हमारे पास आएंगे और हम उनको पूरा का पूरा गाइड करते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि एक बार बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और पूरी तरीके से हम समझ के उनका असेसमेंट करके और भी बताएंगे कि अगर आप करना भी चाहते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है आपको करने की, नहीं है सब कुछ आपको बिफोर हैंड मिल जाती है.
1: तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको. एक बार आप रूहानी कॉलेज जाएं, अपॉइंटमेंट लें, पहले ओम जी से मिले, जितने सवाल हैं आपके आप डायरेक्ट पूछें, क्वेश्चंस करें, बच्चों को साथ लेके जाएं जिससे क्लैरिटी हो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, और फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बनना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि यहाँ पे हमें कई बार लगता है. नंबर टू कॉल रूहानी कॉलेज, वेल वो आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा ruhanicollege.com. बाकी ओम जी प्लीज नंबर भी बताएं और ये भी बताएं कैसे आपके कॉलेज तक पहुंचा जा सकता है.
2: बिल्कुल, हमारा सेंटर में कॉलेज है ब्रैम्पटन की, और जो हमारा नंबर है 905-731-2555, और नंबर एक बार दोबारा रिपीट करूंगा मैं, 905-731-2555 और 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट है, ब्रैम्पटन के बिल्कुल सेंटर में है जी। ये
1: जी क्वीन और कैनेडी का इंटरसेक्शन है, वहाँ से अगर आप बस से भी आते हैं तो वॉकिंग क्लिनिक वॉकिंग है जो कॉलेज है, आप जा सकते हैं। नंबर 905-731-2555 नोट नहीं कर पाए मुझसे ले सकते हैं, या फिर आप रूहानी कॉलेज की वेबसाइट पे भी आपको नंबर मिल सकता है, एक बार मिलें ज़रूर, देखें आपका भविष्य जो है बच्चे का वो कैसे बदल सकता है। थैंक यू ओम जी, फिर करते हैं आपसे बात एंड गुड लक।
2: थैंक यू
1: जी।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: Ye wo time of the year hai jiska aap wait kar rahe the. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Retro in Metro, Nukkad Classics.

बैक, आप सुन रहे हैं सीएमआर 5 PM स्वाति के साथ, और साथ में आज है एक खास ही, बहुत ही खास ही हस्ती का जन्मदिन। जी हाँ, साहिबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, और अगर बैठे हैं तो बैठे रहिए, क्योंकि अब आपके कान में और याद में तशरीफ ला रही है 90s की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूरे नजर मोहतरमा, जिन्होंने हर बच्चे बूढ़े को आज भी कह सकते हैं और उस समय तो डेफिनेटली गिनती सिखाई थी, एक ना डिफरेंट ही स्टाइल। मोहिनी माधुरी दीक्षित नैने की बात कर रही हूँ। टुडे इज हर बर्थडे, सो टाइम फॉर द फैंस टू सेलिब्रेट। गिनती गिनते हुए चने के खेत में घाघरे के साथ नाचते हुए, व्हाटएवर द वे यू वांट टू सेलिब्रेट, हियर वी गो।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट फिल्मी नुक्कड़ .com।
1: Genesis Market.

0: 370 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: हम होंगे आपके साथ हमेशा.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: काव्य होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्य होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर.
6: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
7: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है. हम जब भी घूमने जाते हैं, तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो. ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो.
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
5: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.

movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच. राइट, वीकेंड वॉच पार्ट टू में आते हैं. तो पति पत्नी और वो दो वाली रोम कॉम के साथ हंसने रोने के अलावा देयर आर टू मोर थिएट्रिकल रिलीजेस एंड बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट जॉनरा. एक है आखिरी सवाल, जो ऑलरेडी सवालों के घेरे में है. इसमें सवाल भी बहुत सारे पूछे गए इनफैक्ट, और जवाब में भी बहुत सारे सवाल फिर से पूछे गए हैं. नाम होना चाहिए था सवालों पर जवाब एंड जवाबों पर सवाल. वेल, इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर विच हाइलाइट्स विचारधारा में जो मतभेद होता है, हिस्ट्री भी है, एंड वेरी वोकली टॉक्स अबाउट RSS, बोले तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. अब इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है. कहानी एक स्कॉलर की जो अपने मेंटर को चैलेंज करता है, क्योंकि मेंटर ने उसकी डॉक्टोरल थीसिस ऑन RSS रिजेक्ट कर दी है. अब ये नेशनल डिबेट बन जाता है, और उसके साथ एक पर्सनल, एक साइकोलॉजिकल और एक शतरंज का खेल भी. कहानी के फोकस में इसमें पांच मेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक तो असैसिनेशन ऑफ गांधी जी भी है. यू माइट लाइक टू वॉच इट, क्योंकि अगर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रहे हैं इन सब घटनाओं को लेके या RSS को लेके, एंड यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स अबाउट इट, देन Yeah, you might like to watch it. इसमें संजय दत्त is playing one of the lead characters. Trailer बहुत impactful है, इसका engaging भी है. And the curious George in me would definitely like to watch it. इसके अलावा एक और फिल्म है, which is Zomcom. Zomcom बोले तो zombie और comedy का combination. Indian Institute of Zombies. नाम है इसका IIZ. एक elite college है इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज, और उसमें जॉम्बीज आउटब्रेक जो हो जाता है उसके बारे में, जहाँ एक ईवल साइंटिस्ट है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है कैंपस के टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक अमृत पिलाता है, ये कह के कि भाई इससे आप सुपर पावरफुल हो जाएंगे और इमोर्टेलिटी मिल जाएगी. पर होता क्या है, वो सारे जॉम्बीज बन जाते हैं, फ्लैश ईटिंग जॉम्बीज. बैक बेंचर्स इसमें से बच जाते हैं. आइडिया उसका था कि ये पूरे देश में जॉम्बी पना फैलाया जाए, बट बैक बेंचर्स बचते हैं और इसको कैसे फेल करते हैं उसी की कहानी है. आप इसे देख सकते हैं. मुझे लगता है कि इट्स अ सटायर, एजुकेशनल रेट रेस जो होती है ना इंटेंस कैंपसेस में, उसके बारे में है. कैंपस प्रेशर, हाई स्टेक्स पे होते हैं सबका फ्यूचर, एंड हाउ बैक बेंचर्स हैंडल इट, शायद कहीं ना कहीं उस बारे में भी है. रिव्यूज इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, नॉट इनकरेजिंग एट ऑल. रिमाइंड्स मी ऑफ गो गोवा गॉन, दो वो तो हिट रही थी, इसका क्या होगा कालिए. देखते हैं और भाई देखते हैं कि साथ साथ सुन भी लेते हैं. गो गोवा गॉन की बात आई है तो एक गाना वहीं से.

0: Today's trends and trolls. कुछ सीधी बात, कुछ गोलमोल।
1: मैं ते बस फॉलो करता, मैं ते बस फॉलो करता।
0: फॉलो करती और आप लोगों से शेयर करती थी कि आज के कुछ चर्चाफुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है। तो भाई सबसे पहले लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे इज ऑन मंडे, पर फ्राइडे अपने आप एक फोर्थ वाली छुट्टी की सी फील दे जाता है ना काफी लोगों के लिए। कितना ही लोग एक्सटेंडेड ऑफ ले लेते हैं, कोई हाफ डे ले लेता है ना। और ऐसे भी कितने सारे इवेंट्स होते हैं ना, देखो फ्री फायरवर्क्स डिस्प्ले यहाँ वहाँ रहेंगे टिल मंडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एंड प्लीज प्लीज प्लीज चेक ऑन वेब फॉर दैट लिस्ट ऑफ व्हाट्स ओपन एंड व्हाट्स गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन विक्टोरिया डे। वैसे इस बार जो भी रिटेल्स खुलेंगे ऑन विक्टोरिया डे, टकफोर्ड ने कह दिया कि भाई मन हो तो खोलो एज यू प्लीज, बट डोंट प्रेशराइज एम्प्लॉइज टू कम। इट्स लाइक खोलना चाहे तो दुकान खोल लो, खुद आओ, पर एम्प्लॉइज को फोर्स नहीं करना आने के लिए। प्लस टोरंटो पुलिस ने भी बढ़ा दी अपनी गश्त, अपनी प्रेजेंस लगे हाथ, एज ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई ऑन रोड्स। बाकी जो लोग निकलेंगे गड्डी लेकर, गैस प्राइसेस उन्हें चुभेंगे भर भर कर, और हाई ही रहने वाले हैं। तो आई नो घुमाई फ्रीक्स के प्लान्स पर ये कोई असर बसर नहीं डालने वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट साई हाय अब इतनी महंगी गैस डलवाएं। बताओ ड्रेक भी ट्रेंड हो रहे हैं एज ही हैज ड्रॉप्ड यू नो आइसमैन, हबीब टी एंड मेड ऑफ ऑनर नाम की तीन एल्बम्स एट वंस। हमारा सीएनटीआर भी आइस ब्लू कलर में चमकेगा जस्ट टू ऑनर दिस आइसमैन एल्बम रिलीज। एंड देन फ्रेश बैच ऑफ टिकट्स आर आल्सो आउट फॉर फीफा फैन फेस्टिवल, तो जल्दी से रजिस्टर कर ले उन फ्री टिकट्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेदर हियर, वार्म सनी ब्राइट एंड समरी समरी, मतलब बोले तो थोड़ी सी गर्मी वाली फीलिंग। जैसे कह रहा हूँ कि देर से आई दूर से आई, पर वादा तो निभाया।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
3: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन. टेलीफोन 9057999400.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. Music charts par ye hain on top. Private studio se look kar indie pop.

0: Swan Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की Ultimate Saving Sale on May 24th. Inventory पर huge bonus offers. Deals इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street.
1: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkar's Weekend Watch.
3: सेगमेंट में फिर से स्वागत है आपका वीकेंड वॉच के. आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर विद स्वाति एंड पायस्विनी. तो थिएट्रिकल रिलीज तीन हैं जो मैंने नाम दिए जी आई आई जी और एक है पति पत्नी और वो दो और एक है आखिरी सवाल. इसके अलावा दो ओटीटी रिलीजेस भी हैं. वन इज सैफ अली खान कर्तव्य विच इज अ क्राइम थ्रिलर और इसमें सैफ इज प्लेइंग एसएचओ जो एक छोटे से कस्बे में पोस्टेड हैं और उनका डायलेमा when he has to choose between family and duty. अब ये dilemma तब आता है जब एक generalist जिसकी security ने सौंपी जाती है उनकी ही duty के time पर उस पे गोलियां चलती हैं और वो you know murder हो जाता है and 16 साल का एक बच्चा गायब हो जाता है. film में fight is against corrupt system and powerful spiritual leader भी दिखाया इसमें उनके against भी. predictable है बहुत. आपको trailer देख के भी लगेगा पर ये भी लगेगा कि अच्छी है देखी जा सकती है. trailer is promising and reviews are encouraging overall. good for one time watch I would say and it's on Netflix. साथ में inspector Avinash season 2 भी release हो चुका है with Randeep Hooda in lead role और इसमें इस बार स्पेशल टास्क फोर्स क्या टास्क लेती है हाथ में वो आप देखिएगा. 10 एपिसोड्स हैं एंड जियो हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट धुरंधर 2 द रिवेंज भी हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर रिलीज फॉर यू टू वॉच एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस आई एम श्योर यू वुड लव टू रीवॉच.

0: Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल को के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785, और visit
3: amitkurana.com। ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, May 16th तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स May 16th। विजिट DonValleyNorthLexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
0: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

राजश्री प्रोडक्शंस की अबोध फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित का आज है बर्थडे और हम उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। और जब उनके बारे में बात करते हैं तो तेजाब फिल्म का जिक्र आए बिना हम रुक नहीं सकते और 1 2 3 4 वो जो गाना है उसकी डेफिनेटली एक मेंशन बनता ही है उस गाने का। तो उस गाने के बारे में मैं पढ़ रही थी कि एज शी सेज इन हर इंटरव्यू कि 16 दिन तक सरोज खान जी के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, रिहर्सल करी थी, ताकि वो गाने के जो मूव्स हैं आजा पियाई बाहर वाले वो बिल्कुल राइट आए। और 7 डेज तक फिर शूटिंग चली तो इट वॉज वेरी एक्सटेंसिव शूट फॉर द सॉन्ग। ऑन द लास्ट डे वो कहते हैं कि उन्होंने पूरा दिन पूरी रात लग कर गाने को उन्होंने शूट कंप्लीट करी थी आखिरी दिन, तो दैट वॉज क्वाइट अ ट्रेनिंग। और जब ये गाना हिट हुआ तो शी वॉज नॉट इवन इन इंडिया एट दैट टाइम टू यू नो एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ मैडनेस एंड फ्रेंजी फॉर द सॉन्ग। उनको बाद में पता चला अरे इतना फेमस हो गया, मैं इतनी फेमस हो गई हूँ एज मोहिनी। एनीवे गाना ही फेमस नहीं हुआ, उनके साथ अनिल कपूर की जो एक पेयरिंग थी वो बहुत हिट हुई और उसके बाद देवर फिल्म्स लाइनअप था पूरा फिल्म्स का जो जिसमें पेयरिंग अनिल कपूर के साथ इनकी थी। तो ये गाना चलाए बिना आज का शो तो खैर हम खत्म नहीं कर सकते और खत्म अभी नहीं कर रहे हैं, पर ये गाना आप जरूर सुने।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: He's breaking through the midfield.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: FIFA की टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सब का मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल मई 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप में से कोई भी हंडई कार लेते हैं ना तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने हैं अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.
1: एक्सक्लूसिवली पिक्ड लुक.

was from a suspense thriller movie. Also reminds me कि recently खेल खेल में जो फिल्म थी ना 16th May 1975 को जो रिलीज हुई थी उसको हुए हैं पूरे कुछ साल ऑफ रिलीज. एंड दिस मूवी वॉज अ सस्पेंस थ्रिलर एज वेल बेस्ड ऑन इंग्लिश नॉवल गुड गाइज डोंट किल विच वॉज रिटन बाय लुई थॉमस एंड वॉज रीमेड लेटर इनटू मलयालम फिल्म टू. उसके बाद 90s के खिलाड़ी की स्टोरी एंड अभी रिसेंटली भी फिल्म आई थी खेल खेल में इसी टाइटल से उसकी भी यही स्टोरी. फिल्म की हाईलाइट वॉज म्यूजिक बाय माई फेवरेट आर डी बर्मन. आज भी फेवरेट की लिस्ट में रहता है बहुत लोगों की. एंड आई एम गोइंग टू प्ले द लीस्ट पॉपुलर फ्रॉम द फिल्म द लीस्ट अनहर्ड बट माई फेवरेट वन फ्रॉम द फिल्म.

एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare wayneautogroup.com.

since it's International Day of Families today, it reminds me of the film जिसका मेरे पापा ने पहले कई बार जिक्र किया है और फाइनली मैंने YouTube पे खुद के उसे निकाल कर देख डाला, परिवार। इस नाम से एक्चुअली 3 बार फिल्म आई है, पर मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ वो है 1956 वाली परिवार, ब्लैक एंड व्हाइट, विच वॉज नो मेलोड्रामा, नो ओवर द बोर्ड इमोशंस, नो रोना धोना एंड नो कॉन्स्पिरेसीज विद इन द फैमिली, फिर भी फुल ऑन हैप्पी गो लकी वाली फन फिल्म है जिसमें हंसते खेलते संयुक्त परिवार और प्यार की वैल्यू बता दी गई है। इट्स अ मस्ट मस्ट वॉच इफ यू हैवन सीन येट, मतलब देख डालिएगा यूट्यूब पे, रिमेम्बर 1956 वाली। इसमें ना 4 बहुरानियां मिलकर हंसी मजाक में ही ये एहसास दिला देती हैं टू ऑल द मैन ऑफ द फैमिली कि घर जोड़े रखने में कैसे सिर्फ भाइयों का प्यार ही बहुत नहीं होता, हर मेंबर ऑफ द फैमिली पेज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, घर की बहुओं का कॉन्ट्रीब्यूशन तो इनफैक्ट इज मच मोर, नौकरों तक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो अ लाइट हार्टेड फिल्म विच हैज अ राइट मैसेज इन द राइट टोन, 1956 की परिवार। एंड ऑन दिस नोट की फिल्म के गाने तो मेरे पास नहीं है, जब होंगे तो जरूर सुनाऊंगी। फिलहाल आई एम लीविंग यू विद दिस क्लासिक, एन ओल्डी गोल्डी फ्रॉम मेरे सनम।

0: 93FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर से पाबंदियां हटाने पर गौर कर रहे हैं. उनका कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हकीकी अज़्म होना चाहिए. सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी दरअसल पाकिस्तान के कहने पर की गई है. चीन ने मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात के खात्मे और देरपा अमन के क़याम में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मरहला नाकाम नहीं हुआ, मगर ये एक बहुत मुश्किल सूरतेहाल से दो चार है. नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमारे पास अमरीकियों पर एतबार करने का कोई जवाज़ नहीं है. उधर ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात की वजह से नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का इजलास मुश्तरका एलामिये के बग़ैर ख़त्म हो गया. भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के मौके पर दिफा तवानाई और सरमायाकारी के अहम माहदे तय पा गए. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी तहवील से 20 ईरानी और 11 पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई में कामयाबी हासिल कर ली है. सानहे नौमई जलाओ घिराओ केस में साबिक़ अराकीन असम्बली समेत 4 रहनुमाओं को बरी कर दिया गया. सेनेटर राना सनाउल्ला ने कहा है कि एक एक्शन अगर कामयाब हो तो इनकलाब कहलाता है, लेकिन अगर नाकाम हो तो उसके नतायज भुगतना पड़ते हैं. 9 मई का वाकया उसकी वाज मिसाल है. 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल देने के लिए मोहलत मिल गई. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है और आज रात से गैस की कीमत में 1 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 201.50 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफ़र के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. आपका अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कीजिए. gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 201.50. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. फ्राइडे इस्लामिक कदरों के प्रोग्राम रोशनी से प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं. एक्सीडेंट क्लेम के वाले संजम कुरेश साहब हमारे साथ होते हैं. मिडा फनिश से पवन मिडा साहब से आपको मुलाकात करवाएंगे. ग्लोबल ट्रेवल टूर से कामरान रशीद साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. अहमद मलिक साहब से भी कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात करवाएं. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक. मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ. प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम इस्लामी कदरों के प्रोग्राम रोशनी से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस्लामी कदरों के प्रोग्राम रोशनी में आज बहुत काम की बातें एक मकालमे के अंदाज में आपके लिए पेश कर रहे हैं. मैंने अपनी उम्र बताई और उनकी पूछी तो मालूम हुआ कि वो 95 बरस के हैं और उनकी वालिदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था. मैंने ज़रा हिचकचाहट से पूछा कि आपकी इतनी अच्छी सेहत का राज तो बताएं. कहने लगे, बस बीमार ना पड़ो. मैंने कहा, बीमार ना पड़ना तो हमारे बस की बात ही नहीं है. हंसते हुए कहने लगे, बस की बात है. मैंने कहा, आप बताएं, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा. वो मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे, मुंह में कभी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बग़ैर ना डालना, पानी का कतरा हो चाहे चने का दाना. मैं खामोश सा हो गया. फिर कहने लगे, अल्लाह ने कोई चीज़ बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई. हर चीज़ में एक हिकमत है और इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं. जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह उसमें से नुकसान निकाल देता है. हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो, और जब ख़त्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र अदा करो. कभी बीमार ना पड़ोगे. मेरी आंखें तर हो चुकी थीं. हमारी मस्जिदों के इमाम और उलमाए किराम और इन हजरत में कितना फ़र्क है. देर हो रही थी, मैं सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ. मैं जी करके फिर बैठ गया. कहने लगे, अगर किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो कभी भूल कर भी पहल ना किया करो, चाहे कितनी भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में डालो और जब तक वो लुकमा अपने मुंह में ना रख ले तुम शुरू ना करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसका फ़ायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे, ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राज़ी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, ग़िज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैंने बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेज़ी से जाने के लिए मुड़ गया कि दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी औलाद कितनी महरूम है। अगर आपकी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह का दखल हो गया तो आपकी ज़िंदगी आसान भी हो गई और कामयाब भी होगी इंशाल्लाह। कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह के विर्द आपके मुंह पर हर वक्त रहना चाहिए। आप देखिए आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। इसी तरह से मेहमान अल्लाह की रहमत है, उसकी जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। खूब पेट भर कर उन्हें खाना खिलाएं और फिर अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि खुदा रब्बे करीम ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह रब्बे करीम की नेमतों का शुमार करने लगें तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि उनका शुमार कर सकें। खुदा रब्बे करीम बहुत रहीम है, करीम है, अपने बंदों पर करम करते हैं, अपने बंदों पर रहम करते हैं। अल्लाह रब्बे करीम हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इस हवाले से आप अपनी राय 416-593-0003 पर दे सकते हैं।
0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से भी लाइक कीजिए। ट्यून इन पे हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फ़ोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 TV, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बॉल, जूम बस के साथ साथ एपल TV, अमेजन फायर TV, रोकू TV के साथ साथ ट्यूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारा निशात देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 TV। एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 TV और टोरंटो 360 इंटरनेट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन इशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तला भट्टी 647-295-7861। आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज़ करना है, साइन करना है, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना है, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे। जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस चेक कर दीजिए, तलाब भट्टी 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM।
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
1: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: That's wonderful.
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: Brampton में ये कहाँ पे है?
2: On Bovehead, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
3: सजना है मुझे
0: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
4: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: अपने प्यार

0: चलें के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्टगेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्टगेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मिठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810। इट्स 416-901-2810। या लॉग इन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
3: जी हाँ, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे आपको मिलेगा मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी से। चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, ब्रामटन लोकेशन 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो, और ब्रैम्पटन लोकेशन 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन, और स्कारब्रो लोकेशन 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज, लंदन ओंटारियो की। बहुत जल्द जो है इनकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। आपको अच्छा फर्नीचर चाहिए और पायदार फर्नीचर चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर चाहिए, तो आपको एक बार किसी एक लोकेशन पर तशरीफ़ ले जाइए। पहले अपना होमवर्क कर लीजिए, बाकी स्टोर से पता कर लीजिए। 10-30% 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट आपको मिलेगा। वजह सिर्फ ये है कि बल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर कंटेनर आते हैं, ज़ाहिर है उसको उनको क्लियर भी करना है, और बाज़ तो आपको फ्लोर मॉडल बहुत ज़बरदस्त प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप फर्नीचर की तलाश में और नई नई डील्स, आपको एवरी वीक अब विक्टोरिया डे की स्पेशल स्पेशल डील है, मेरा साहब से मजीद डिटेल पूछेंगे। मेरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको डिजाइनर फर्नीचर चाहिए, आपको हटके वाला फर्नीचर चाहिए, आपको पायबंद और लंबे चलने वाला फर्नीचर चाहिए, और प्राइस भी बाजार से सस्ती चाहिए, सस्ती कहने के लिए सस्ती नहीं, प्रूफ के साथ सस्ती। आज भी मैंने हमने एक स्पेशल लगाया हुआ है सेक्शनल ओल्टन OLTEN और एशले का ये मॉडल है।
3: सही।
4: और मुझे बहुत मान महसूस होता है बताते हुए कि जब मैंने गूगल में डाला, आप भी अगर भट्टी साहब डालेंगे ओल्टन सेक्शनल या ओल्टन सोफा, तो गूगल पे ना आप आजकल पिक्चर प्राइस के साथ आ जाती, स्टोर का नाम भी आता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा मैं बताऊं, तो जब स्टोर का नाम देखते हैं तो वो कम से कम 9-12 स्टोर लैपटॉप पे तो दिखाता है, 9-12 स्टोरों की प्राइस कंपेयर कराता है, और मिड्डा फर्नीचर की सबसे कम है।
3: वेरी गुड। उन
4: आप ऑनलाइन भी, और राज की बात ये है कि जब आप स्टोर पे आते हैं तो जो हमारी प्राइस ऑनलाइन लगी हुई है उससे भी कोई और अगर डिस्काउंट हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब 2-4% आइटम पे, लेकिन अमूमन हम कर देते हैं ऐसा डिस्काउंट भी फिर आपको करके देते हैं। ये आपका प्यार है तो ब्रांड नेम भी आपको फर्नीचर दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि प्राइस कंपेयर कर लें, ये सारी ताकत मिलती है आपके प्यार से। और जैसे आपने कोई कस्टम मेड बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट के बाद आपने कुछ लेना है, मैंने कल से मैट्रेस हम कह रहे हैं 4 महीने की, कोई भी मैट्रेस अगर 300-400 वाली जो मैट्रेस, अच्छी मैट्रेस अगर आप लेके जा रहे हैं, वो आपको स्लीप गारंटी आपको देने जा रहे हैं, और ये जो अच्छी मैट्रेस लेंगे, नेक्टर ब्रांड है यूएसए का और यूरोप का, बहुत बड़ा ब्रांड है, 365 एक साल तक की स्लीप गारंटी है। 365 दिन बाद मैट्रेस खरीद डिलीवरी के 365 दिन बाद आप कहते हैं कि मुझे नींद इस पे अच्छी नहीं आई, मैं बदलना चाहता हूँ, बिना किसी हासिल के आपको मैट्रेस आप अपग्रेड कर सकते हैं या आप मैट्रेस के कोई दूसरी मैट्रेस, क्योंकि मैट्रेस के बदले तो मैट्रेस ही चाहिए ना आपको,
3: जी बिल्कुल,
4: तो वो आप ले सकते हैं। हमने लंदन लोकेशन अगले वीक हम सॉफ्ट ओपनिंग करने जा रहे हैं, ग्रैंड ओपनिंग भी बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, और लैदर के हमने लेस वर्थ का हमें कंटेनर दोबारा आ गया है, और आपको 1499 का सोफा जेनुइन लैदर का, $800 की प्राइस कम है हमारी किसी सोफे से आप कंपेयर करते हैं। मार्बल टेबल्स हमारे पास और आई है, विक्टोरिया डे स्पेशल है, पावर सेक्शनल हमारे पास आया 1499 का आपको दे सकते हैं, कैनेडियन मेड सेक्शनल 120 इंच बाई 80 इंच की चेयर सिर्फ 1099 में आपको दे सकते हैं, कलर चॉइस भी दे सकते हैं। और एशले के हमारे बहुत सारे मॉडल भट्टी साहब नुवेला फैब्रिक बोलते हैं जिसको आप वॉश कर सकते हैं, मशीन वॉश कर सकते हैं, कुछ दाग वाग लग गया तो इवन देन कमर्शियल ग्रीस भी लग जाए जो लगेगी नहीं घर में, आप ब्लीच और वाटर सोप यूट्यूब पे दिया हुआ है कितना पानी कितना ब्लीच मिला के उसे वॉश कर सकते हैं, दाग हट जाएगा, कपड़े को कुछ नहीं होगा। तो अच्छा फर्नीचर चाहिए आपको, पाएबंद फर्नीचर चाहिए, और प्राइस बाजार से कम चाहिए। प्राइस का इतवार तो आप हमारे से कंपेयर करने के बाद करें, आप जब आपके दिल से भी आवाज आएगी कि वाकई जो बोला जा रहा है रेडियो पे भट्टी साहब के और वाकई वो सच है, तो हमें आपका प्यार पहले भी मिलता आ रहा है और मिलेगा और मिलेगा। हमारी कोशिश तो यही है कि रिश्तों की डोर और लंबी हो और स्ट्रोंग हो। तो आपको आना है मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 और middhafurniture.com से भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच,
3: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, अगले सेगमेंट में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए 416-901-2810 middhafurniture.com इनकी वेबसाइट है। कतर से एलएनजी लाने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया है। हुकाम का कहना है कि पोर्ट कासिम पर दूसरा जहाज अब नए हुमरत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचा है। चलिए अच्छी बात है, कम अज़ कम चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का भी पाकिस्तान में ऐलान किया गया है, और जो अब 5 रुपये फी लीटर की कमी की गई है, नई कीमत 409 रुपये होगी। डीज़ल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे यानी वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM लिए चलेंगे आपको आज के शायरी के सेगमेंट की तरफ।

अर्ज इससे नहीं कल क्या कहा था, मुझे तुमने कभी अपना कहा था। वो बारिश का था पहला कतरा गोया, मुझे जब तुमने फिर कहना कहा था। निगाहों ने निगाहों की जुबानी, कहा था जो भी बर्जस्ता कहा था। अभी तक सामने हैं सारी बातें, सुना क्या क्या था और क्या क्या कहा था। तुम्हारी बात ही क्या थी कि तुमने मेरी हर बात पर अच्छा कहा था। मेरे ख्वाबों की दुनिया देखते ही हंसी है कितना हर सपना कहा था। मेरी सरशारियां थी काबिले दीद, मुझे जब जान से प्यारा कहा था। मुझे अच्छी तरह है याद रूही, गजल सुनकर बहुत अच्छा कहा था। गरज इससे नहीं कल क्या कहा था, मुझे तुमने कभी अपना कहा था।

0: খবরটিকে কল মেলান।
1: Talabat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talabat 647-295-7861.
2: Are aapko achha ghar chahiye
0: to Talabat ti ko call milaye.
1: Talabat 647-295-7861.
3: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामला के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
3: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
8: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157। अंजुम कुरैशी साहब के रابطے کا نمبر। خدا خاصتا آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے، بالکل پریشان ہو، بہت رینام لا فرم ہے، بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میکسیمم کمپنسیشن آپ کو مل جائے گی، اور کیس جب سیٹل ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کلیم کی فیس اس کے بعد لی جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ کلیم کا نام آئے تو ساتھ انجم کریش صاحب کا نام بھی آتا ہے، تو نمبر پر محفوظ کریں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو 416-570-0157 پہ آپ انجم کریش صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ انجم کریش صاحب السلام علیکم۔
9: وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو بھی آداب، نمستے، ست سری اکال۔ اور سب سے پہلے تو لانگ ویکینڈ آ رہا ہے، اور جب بھی کبھی لانگ ویکینڈ آتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں ملتی ہیں، کیونکہ اس وقت اسپاٹ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ روکتے کسی اور مقصد کے لیے، اور کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے۔ کبھی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، کبھی اسپیکر آپ کا ایکسپائر ہو گیا، یا بچوں نے بیلٹ نہیں لگایا ہوا، کسی بھی وجہ سے۔ تو پلیز احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹکٹ ملتی ہے تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور ایک ٹینشن الگ ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹریفک ٹکٹ مل گیا ہے، تو ہماری ٹیم آپ کے ٹریفک ٹکٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ کار ایکسیڈنٹ کنٹینجنسی فیس ہے، ٹکٹ ایسا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو اپ فرنٹ فیس دینی ہوتی ہے۔ جو ریپرزینٹیٹو جاتا ہے وہ آپ کے کیس کے لیے ٹرائل لیتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور آپ کے ایبسٹریکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے ٹکٹ کے ٹکٹ کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ 416-570-0157 میرا نمبر ہے۔ اور کسی کار ایکسیڈنٹ میں بھی آپ انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ فالٹ ہوں یا ناٹ ایٹ فالٹ ہوں، دونوں صورتوں میں انٹاریو میں آپ کیس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا تھرڈ پارٹی کیس ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا تھرڈ پارٹی بھی خیال کرتی ہے، اور آپ کی انشورنس کمپنی سے بھی آپ کو ایک سیٹلمنٹ ملتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں جب آپ کا اپنا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157۔ 0157 और जैसे अरशद ने बताया कि कोई भी फीस आपसे अपफ्रंट नहीं ली जाएगी बल्कि इन द एंड ऑफ द डे कंटेंजेंसी फीस के तहत जब एक लॉयर आपको आपका सेटलमेंट लेकर देता है तभी वो आपसे अपनी फीस लेते हैं। और हमारी लॉयर्स की टीम पर्सनल इंजरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है हेमोफार्ट प्रिजेंस की, तो प्लीज अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट है आप हमारे पास आए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा कहती हूँ मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया।
10: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह मंडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट करें 416-570-0157 28वीं तरमीम के हवाले से बड़ी बहस हो रही है, पीपल्स पार्टी के कंसर्न हैं बहुत सारे और पीटीआई ने भी अपने मौक़ के हवाले से ये कहा है कि 28वीं तरमीम पर हुकूमत से उन्होंने अपना मौक़ वाज़े करने का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक ड्राफ्ट तो सामने नहीं रखा गया, ये असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहमल नहीं हो सकती। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास आ रहे हैं? हुकूमत तरमीम तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर नहीं ला सकती, हम इन तरमीम के खिलाफ हैं, ये मुतनाज़े हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, एन एफ सी को ना छेड़ा जाए, सुबह से एनएफसी की मद में ज़्यादा शेयर लेने की बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वाकई कुछ महकमे कहा जा रहा है कि वफाक को वापस किए जाएंगे और इसी पे इख्तलाफ़ पीपल्स पार्टी का और नून लीग का या हुकूमत का हो सकता है और उसको कोशिश की जा रही है कोई दरमियानी रास्ता निकले, लेकिन लक ऐसा रहा है कि क्योंकि अभी तक ड्राफ्ट वाजे नहीं है, जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता उस तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि मामला चल भी जाए, लेकिन हो सकता है इसी के ऊपर जो है मामला ख़राब हों और फिर जिस तरह आजकल की बातें हो रही हैं सदरदारी साहब के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले, इवन हुकूमत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसको भी ख़तरा हो सकता है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 4166710577। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्स रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600, क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya apne credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. 819-1001. License number 12374.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: The team of two, just for you.
5: Everyone that shall adjust me. The team of two, just for you, bringing you world's largest teeth festival. From May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
6: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
5: Log on to eventsmyteamof2.com.
0: अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर। सिर्फ $229 में हासिल करें 2 रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल, तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
1: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922।
7: जी हाँ, 9057831922 अहमद मलिक साहब के रबते का नंबर है। अहमद मलिक कर्जा माफ 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, ने हज़ारों की तादाद में लोग इनके सर्विसेज से फ़ायदा उठा चुके हैं और अपना मैक्सिमम कर्ज जो है माफ़ करवा चुके हैं। आपका अपना कर्ज है, ज़ाती कर्ज है, कॉपरेशन का कर्ज है, सीबा लोन है, कोई भी लोन है, आप इनसे रबता कीजिए, आपकी मुकम्मल रहनमाई करेंगे और मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे। 9057831922 इनके रबते का नंबर है। खुश आमदीद कहेंगे मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम
8: जी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को। जी मेरी तरफ से वालेकुम सलाम।
7: बहुत शुक्रिया आपका। कर्ज के हवाले से आपके इल्म है, मईशत आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है, सभी लोग परेशान हैं और कर्ज का बोझ ऐसा है कि वो अगर बढ़ जाए तो ना सिर्फ ये परेशानी बढ़ती है, सेहत भी खराब रहती है। तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे जो लोग कर्ज में आ गए हैं?
8: बिल्कुल अर्शद भाई, ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर कर्जे का चढ़ जाना ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, यानी कि जिंदगी का एक लाजमी जुज है कि आप कर्जे में आ सकते हैं क्योंकि सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है
7: जी।
8: तो अगर आप पे कर्जा आ गया है तो कुछ ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं और उन ऑप्शंस को प्रैक्टिस करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज अब तमाम सार्फिन रखते हैं, दो ही ऑप्शन हैं कि कंज्यूमर प्रपोजल फाइल कर सकते हैं या बैंकरप्सी फाइल की जा सकती है
7: जी।
8: और इन दोनों प्रोसेस में से गुजरने में हमारी कंपनी आपकी पूरी पूरी मदद कर सकती है। हमारा जो तजर्बा है वो आपके काम आ सकता है। आपके सर पे चढ़ा हुआ कर्जा 75% तक माफ करवाया जा सकता है प्रपोजल फाइल करते हुए। और अगर बिल्कुल सिचुएशन खराब हो चुकी है, आप कुछ भी अदायगी की नहीं रखते, सिचुएशन आपने बैंकरप्सी फाइल करनी है,
7: तो
8: बैंकरप्सी फाइल करने में आपको स्टेप बाय स्टेप हम पूरी आपको गाइडेंस देते हैं जब तक कि आपका डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो अगर हमारे कोई भी लिसनर है जो ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके सिर पे कर्जे का बोझ है, तो यकीनी तौर पे जैसे अर्शद भाई ने बताया कि ये कुछ और खराब करे ना करे आपकी सेहत पे जरूर अफेक्ट करता है। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे पहले ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हमें रोजाना सुबह उठते वेदर का स्ट्रेस होता है, उसके बाद ट्रैफिक का स्ट्रेस है और तरह तरह के स्ट्रेस में अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस ऐड हो जाए तो ये आपकी सेहत को बहुत जल्दी खराब कर सकता है। तो इसलिए इसे बचने के लिए आप यकीनी तौर पे मेरे साथ रब्ता कायम कर लें और मैं आपको बता सकता हूँ कि कानूनी पोजीशन आपकी क्या है, आपका कितना कर्जा माफ हो सकता है, आप जो सोच रहे हैं क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप मेरे साथ 9057831922 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है अर्शद भाई और हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की जी हम गारंटी करते हैं। तो कोई हमारे लिसनर है जिन्होंने अगर अभी तक सीबा के लोन के पैसे नहीं दिए, आपके सर पर सीबा का लोन खड़ा हुआ है, तो फिर भी आप मेरे साथ रब्ता कायम कर ले। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसके तहत हम आपको सीबा लोन से बाहर निकाल सकते हैं। द नंबर टू कॉल अगेन इज 9057831922। अच्छा भाई, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
7: बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, फिर आपसे बात करेंगे। नंबर नोट करें 9057831922 9057831922। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना ने T20 फॉर्मेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 15 गेंदों पर उन्होंने निस सेंचुरी बनाई है। इस पहले न्यूजीलैंड की बैटर थी सूफी डेऑन, उन्होंने 18 गेंदों पर निस सेंचुरी बनाई थी। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने 19 गेंदों पर 62 रन नॉट आउट स्कोर किए हैं। और तीसरे और आखिरी T20 में भी पाकिस्तान की टीम ने 133 रन से जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, क्लीन स्वीप किया है। जिम्बाब्वे वेमेंस टीम 224 रन के ताकुब में 18वें ओवर में 90 रन पर आउट हो गई और 133 रन से ग्रीन शर्ट्स के नाम ये मैच रहा। कप्तान फातिमा सना ने 19 गेंदों पर 62 की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सारा जमीन 50 रन नॉट आउट और आयशा जफर ने 45 रन बनाए। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। कॉमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में वापस आते हैं।
9: पाकिस्तान टोरंटो आवाज का सफर दिल से दिल तक
10: विशाल त्रिवेदी वही जाना पहचाना नाम अब विशाल ही से लीजिए कमर्शियल इंश्योरेंस अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मोटेल एंड होटल एनी फ्रेंचाइज शॉप फूड रेस्टोरेंट कन्वीनियंस स्टोर्स हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक फार्मेसीज फ्लीट ट्रकिंग एंड वेयर हाउसेज गैस स्टेशंस स्ट्रिप प्लाजा एंड मोर फॉर अमेजिंग डिस्काउंट विद प्रॉपर लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज कॉल विशाल त्रिवेदी 6477679852 6477679852 That's 6477679852 9852.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: रेडियो पाकिस्तान
4: पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। एक बार फिर आपके लिए चलेंगे मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन ओंटारियो में। बहुत जल्द इनकी ग्रैंड ओपनिंग 5th लोकेशन की होने वाली है। 4169012810 चारों पांचों लोकेशन के लिए नंबर होगा। मीठा फर्नीचर .com इनकी वेबसाइट है। विक्टोरिया डे स्पेशल डील्स आपके लिए मेरे साहब लेकर आए हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मेरे साहब। वेलकम योगेन सर।
5: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिडा फर्नीचर की चारों लोकेशंस, पांचवी लोकेशन खुलने जा रही है अगले वीक से, और विक्टोरिया डे है और आपका हक बनता है जब भी कोई सेलिब्रेशन आती है तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम ला के देते हैं। आज भी मैंने पिछले लिंक में कहा था, ओल्टन सेक्शनल, ओल्टन सोफा, एशले का मॉडल कलर चॉइस के साथ आते हैं
4: जी।
5: फर्म सीटिंग है, एशले के बहुत सारे मॉडल होते हैं जो हमारे साउथ एशियन बहन भाई कुछ बहुत पसंद करते हैं और कुछ नहीं पसंद करते।
4: अच्छा,
5: जो जिनका ना पसंद करने का रीजन है उन्हें वो सॉफ्ट लगता है, तो एशले ने भी जब हमारे फीडबैक लेते रहते हैं तो अब वो मीडियम फर्म बनाने शुरू करें कुछ मॉडल जैसे, सारे नहीं कुछ मॉडल जैसे, तो वो कुछ मॉडल जो है वो शायद आपको, अगर आपका वो कम्फर्ट था कि एशले के पास सॉफ्ट वाले तो बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन अगर आपका कंफर्ट था कि थोड़े फर्म भी चाहिए और 40 इंच डीप भी चाहिए तो वो फिर लेके आए हैं, तो उसके लिए आप आए। प्राइस हमारी बाजार से सबसे सस्ती आपको दे रहे हैं, और मिड्डा फर्नीचर जो है ब्रांड नेम फर्नीचर बेचता है। मार्बल टेबल्स हमारे पास हैं, सिंटर स्टोन की टेबल हमारे पास है, एशले के बहुत सारे मॉडल हमारे पास हैं, और जो डील्स लगाते हैं हम हर प्राइस पे आपको बाजार से कंपेयर करने के बाद हम अपने आपको प्राइस सस्ती देते हैं, तो आपको आना पड़ेगा मिड्डा फर्नीचर पे। आज हमने एक लेकर वाला बेड है हमारा, लेकर जो है जो इटालियन लुक वाला जो बेड होता है, तो उसके आपको देने जा रहे हैं सिर्फ ओनली 1499 का, पूरा बेडरूम सेट, बेड, ड्रेसर, मिरर, नाइट टेबल, क्योंकि हमारे पास चार पांच ही रह गए हैं तो हम चाहते हैं कि वो डिसकंटिन्यू कर दें उस मॉडल को, क्योंकि बहुत सारे, तो इसीलिए वो पहले 2499 का था, हमारी कॉस्ट ही 2000 है, बिलो टू कॉस्ट अगर कहें तो आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जगह भी चाहिए हमें नए मॉडल रखने के लिए, तो इसीलिए कई बार इंटेंशनली लूज करके आपको आपका फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप कभी आपको लगा कि वो 2500 का आपको महंगा लग रहा था तो आज वो आपको 1500 में मिल रहा है, तो उन बहन भाइयों के लिए ज्यादा वो अच्छा सूट करता है, तो आपको आना पड़ेगा मिड्डा फर्नीचर पे। ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, स्कारब्रो में, कैम्ब्रिज में कैनेडियन मेड बेड की बहुत सारी सिलेक्शन आपको मिलेगी, एशले की तो होती है हमारे पास, इसके अलावा माइकल मिनी, फ्लास्की, जो ब्रांड नेम लिबर्टी, या आप कस्टम मेड कुछ बनाना चाहते हैं, रिक्लाइनर सोफा लव सीट एक फैब्रिक में लेके आए पावर रिक्लाइनर, तो आपको बहुत पसंद आएगा, तो एक बार आप चक्कर जरूर लगा लें हमारे स्टोर पे, निराश हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको आना पड़ेगा मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810,

0: थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए 416-901-2810, mithafanisha.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 24 घंटे हमारे छात्र रेडियो पाकिस्तान .fm सुन सकते हैं। हमारे टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25, 26 तारीख को कैपिटल बैंक हॉल में सागा में होने जा रहा है। एवरी डे गोल्ड के प्राइसेज हैं, इनाम घर के प्राइसेज हैं, फैशन शो, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, कपल्स कॉम्पिटिशन, सीनियर्स के प्रोग्राम और शानदार प्रोग्राम होंगे। और अगर आप, इन्होंने स्पेशल डील लगाई है रेडियो पाकिस्तान का हवाला देने पे, तो चारों दिन के लिए जो आप स्टॉल बुक कराते हैं उस पर बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। शम्स रहमान साहब से भी रब्ता कर लें 416-710-6777, 416-710-6777। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए, ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, ताला भट्टी 6472957861, 6472957861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3।
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
1: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 दिन के दौरे के बाद वतन रवाना हो गए हैं। चीनी सदर के साथ 2 दिन की मुलाकातें किसी ठोस माहदे के बगैर ख़त्म हो गईं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत से मसाइल तय पा गए हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर से पाबंदियां हटाने पर गौर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीन से बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान करने के ख़िलाफ़ ताइवान को मुतनब्बी किया और कहा कि मैं नहीं देख रहा कि कोई आज़ादी का ऐलान करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हकीकी अज़्म होना चाहिए। उनका कहना था कि ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी है, मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी का फ़ैसला दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। उनका कहना था कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी का हामी नहीं था, लेकिन दीगर ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान की अपील पर अमेरिका ने यह कदम उठाया। उधर चीन का कहना है कि वो मशरक़ वस्ती में तनाज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है और उसे उम्मीद है कि वो अमन मुज़ाकरात की मज़ीद हिमायत करते हुए देरपा अमन के क़याम में तामीरी किरदार अदा करेगा। चीन के बयान में कहा गया कि ये तनाज़ा कभी होना नहीं चाहिए था और इसके जारी रहने की कोई वजह नहीं है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबनाए हुरमुस की बंदिश का ज़िम्मेदार ईरान नहीं, बल्कि ख़त्ते में कशीदगी पैदा करने वाले अनासिर हैं, जबकि समंदरी गुजरगाह सिर्फ उन ममालिक और क़ुव्वतों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मरहला नाकाम नहीं हुआ, मगर ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो अस्करी कार्रवाई से हासिल नहीं हो सका वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम मदद की ख्वाहिश